जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ये तो मेरे लिए एक जरा सी बात है, आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूं जबकि तू कोई चीज न था। जकरिया ने कहा, परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया, तेरे लिए निशानी ये है कि तू पै हम 3 दिन लोगों से बात न कर सके। चुनांचे वो मेहराब से निकलकर अपनी कौम के सामने आया और उसने इशारे से उनको हिदायत की कि सुबह शाम तस्बीह करो।

بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائر.

شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद

0: लेकिन FM 107 आपको इसका सॉल्यूशन भी देता है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने स्मार्ट होम को सिक्योर रखने और इस एक्सटॉर्शन फ्रॉड से बचने के लिए आपको नेटवर्क सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला कदम ये है कि अपने वाईफाई राउटर का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड बदलकर एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाएं। अपने मेन इंटरनेट राउटर पर एक गेस्ट नेटवर्क बनाएं और अपने सारे स्मार्ट होम डिवाइसेस, कैमरा, लॉक्स, टीवीज को इसी गेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट करें। इससे अगर कोई हैकर किसी डिवाइस को हैक कर भी लेता है तो वो आपके मेन कंप्यूटर या मोबाइल फोन तक नहीं पहुंचेगा। जहां आपका फाइनेंशियल डेटा होता है, किसी भी स्मार्ट डिवाइस को खरीदते वक्त सिर्फ उन ब्रांड को चुनें जो रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स और फर्मवेयर पैचेस प्रोवाइड करती हैं। हर डिवाइस के डिफॉल्ट एक्सेस क्रेडेंशियल को सेटअप करते वक्त ही चेंज कर दें और उनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करें। दोस्तों ये था नए जमाने के स्कैम से बचने का तरीका। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नए जमाने के नए स्कैम पर बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर

0: अमीता, फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का FM 107 पर। और हम आज एक बड़े ही खूबसूरत और शानदार सफर में चलने वाले हैं, हमारे शो कतर ग्रीन बीच पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो हफ्ता अब तक चल रहा है ये बड़ा ही शानदार गुजर रहा होगा। और हमारे कतर की जो गर्मी है ना वो बढ़ती जा रही है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस गर्मी को इंजॉय करते हुए अपना ख्याल रखें। और अभी क्या करें, अभी अपने हाथ में कॉफी ले लें या फिर करक ले लें या फिर जूस ले लीजिए और थोड़ा रिलैक्स कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो सफर कतर ग्रीन बीट्स का हम शुरू करने वाले हैं, आपको इससे जुड़कर इसमें रहकर हमारे साथ बड़ा मजा आएगा।
2: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट।
1: तो पिछले एपिसोड में हमने इको लग्जरी पर काफी गहरी बातचीत की। हमने देखा था कि कैसे कतर के बड़े बड़े होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 5-स्टार कंफर्ट के साथ हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, उसका भी ख्याल रख रहे हैं। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि लग्जरी और एनवायरमेंट दोनों हाथों हाथ चल रहे हैं। लेकिन आज का जो मिजाज है वो थोड़ा सा ना अलग होने वाला है। आज हम थोड़ा और करीब आने वाले हैं, हम बात करेंगे उस फैब्रिक की जो हमारी जिंदगी का एक अनोखा हिस्सा है। हम बात करेंगे उन लेबल्स की जो हमारी पहचान बनते हैं और उन फैसलों की जो हम हर बार लेते हैं जब हम किसी मॉल के ड्रेसिंग रूम में खड़े होते हैं। सोचिए, जब हम कोई नया लिबास खरीदते हैं, कुछ नए कपड़े खरीदते हैं, तो क्या हम सिर्फ उसकी चमक धमक देखते हैं या हम ये भी सोचते हैं कि वो आया कहाँ से होगा? फैशन का नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है बताएं? वही ग्लिटरी रनवेज, बड़े बड़े ब्रांड्स और हमारे मनपसंद मॉल्स में चलने वाले लेटेस्ट ट्रेंड्स, है ना, यही दिमाग में आता है ना। हम सबको स्टाइलिश दिखना बहुत पसंद है, लेकिन जनाब हमारे इस शौक के पीछे एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रही है, एक ऐसी क्रांति जो फास्ट फैशन की रफ्तार को थोड़ा कम करके हमारे प्लैनेट को तवज्जो दे रही है। जी, हम अक्सर फास्ट फैशन के चक्कर में ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं जो शायद 2-3 बार पहनने के बाद कचरे में चले जाते हैं, मगर अब वक्त बदल रहा है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे थ्रेडिंग द फ्यूचर सस्टेनेबल फैशन एंड रिटेल की। आज हम इस पर गहरी चर्चा करेंगे कि कैसे कतर खर्च करो और फेंक दो वाली तहजीब को छोड़कर संभाल कर रखो और संवारो यानी चेरिश एंड सस्टेन की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आपने कभी सोचा है कि जो पुराने धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, या जो प्लास्टिक बॉटल्स हम फेंक देते हैं, क्या उनसे हाई एंड आर्ट बन सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमारे कतर के लोकल डिजाइनर्स यही मैजिक कर रहे हैं। हमारा जो फ्यूचर है वो इनकी बारीकियों में छुपा है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हम फैशन को भूल जाएं। इसका मतलब ये है कि हम अपने लिबास और नेचर के बीच एक बैलेंस बनाए रखें। कतर नेशनल विजन 2030 का भी यही मकसद है, एक जिम्मेदार समझ का निर्माण, ये यूं कहें एक जिम्मेदार समझ की इम्पोर्टेंस। और इस इम्पोर्टेंस में आपका और हमारा दोनों का बराबर का, जो कहते हैं ना, कॉन्ट्रीब्यूशन है। हर वो कपड़ा जो हम सोच समझ कर चुनते हैं हमारी अर्थ, हमारी धरती के लिए एक तोहफा है। तो जनाब मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट की सैर करेंगे, हम स्केल 7 जैसे इंक्यूबेटर्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपका वार्डरोब ना सिर्फ फ्रेंडली दिखेगा बल्कि इको फ्रेंडली भी बन जाएगा। आज हम सिर्फ कपड़ों की बात नहीं करेंगे, हम उन कहानियों की बात करेंगे जो हर एक रेशम के धागे में छुपी है, It's time to look beyond the labels. It's time to thread our better future. किसके लिए? हमारी आने वाली जनरेशन के लिए. तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ सुनते हुए कतर ग्रीन बीट्स. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता.
2: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
1: कतर ग्रीन बीट. वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स. मैं हूं आपकी अमिता, आपके साथ कतर ग्रीन बीट्स सुन रहे हैं आप. तो आपको बता दूं कि आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पर, या यूं कहें सब्जेक्ट पर, सस्टेनेबल फैशन. लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे सबसे पसंदीदा सेगमेंट का. एंड व्हाट इज दैट? द ग्रीन वायर सेगमेंट. ये वो सेगमेंट है जहां हम आपको देते हैं हमारे शहर यानी कि हमारे कतर के वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हमारी जिंदगी और हमारे फैमिलीज या हमारे एनवायरमेंट को बेहतर बना रही है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी अपडेट के साथ. तो आपको पता है या फिर आपको मालूम है कि कतर ने अब ऑफिशियली रिटेल स्टोर्स में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. जी हाँ, ये सिर्फ एक मशवरा नहीं था, अब ये एक कानून भी है. आपने शायद महसूस भी किया होगा कि जब आप पिछले कुछ दिनों में शॉपिंग के लिए गए होंगे, अब वो पतले वाले प्लास्टिक बैग्स आपको नजर नहीं आते. उनकी जगह अब हमें पेपर बैग्स, वोवन बैग्स या बायोडिग्रेडेबल ऑप्शंस मिल रहे होते हैं. तो जनाब, ये एक बहुत बड़ा कदम है. हम अक्सर सोचते हैं कि प्लास्टिक बैग से क्या होता है, लेकिन सोचिए कतर में हर साल कितने मिलियंस बैग इस्तेमाल होते हैं. वो सब कचरा हमारे समुंदर में जाता है. यस, और अब तक जाता रहा है. हमारी मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचता है और ये सब हम समझते हैं. लेकिन अब

ये करना काफी टाइम पहले शुरू कर दिया है. वैसे जनाब ये सिर्फ प्लास्टिक बैग्स ही नहीं, हमारे कतर के बड़े बड़े मॉल्स और रिटेल जायंट्स ने एक और कमाल की ना

वहां कई इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अब बड़े-बड़े बिन्स रखे हैं जहां आप अपने पुराने कपड़े ड्रॉप कर सकते हैं हम सबके पास ऐसे कपड़े होते ही हैं जो शायद अब हमें फिट नहीं आ रहे या फिर हमारा मन ऊब गया है अब हमको उनको नहीं पहनना है और जिन्हें हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं तो हमें क्या करना है उन्हें घर के किसी कोने में फेंकने से अच्छा हम

इस बॉक्स में इस बिन में डालते हैं तो बहुत से ब्रांड्स आपको बदले में स्टोर डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं. यानी कि आपने अर्थ की, अपने एनवायरनमेंट की मदद की है.

बड़ा मतलब निकलता है. कतर फैशन सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, फैशन अब हरा भरा भी हो रहा है, यानी गोइंग ग्रीन. हमें सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहना है. कंज्यूमर वो होता है जो सिर्फ खरीदता है और इस्तेमाल करके फेंक देता है. हमें बनना है कॉन्शियस क्यूरेटर्स. कॉन्शियस यानी होशमंद, जो जानता है कि उसका हर फैसले का असर क्या होगा. और क्यूरेटर वो होता है जो अपनी चीजों को बहुत सोच समझ कर चुनता है और उनकी हिफाजत करता है. तो जनाब, अपने वार्डरोब को एक म्यूजियम की तरह देखिए. वहाँ वही चीजें होनी चाहिए जो वाकई कीमती हो, जो लंबे समय तक चले और जिन्हें पहनते वक्त आपको नाज हो, आपको प्राइड फील हो. वैसे वो कहते हैं ना कि सस्टेनेबिलिटी में सेंटिमेंट्स भी जुड़ जाते हैं. सो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पर. आई रिपीट द नंबर 666-22-107 पर. ऐसे जनाब, यहाँ इस अपडेट की हमने बात की और एक सवाल है जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं जब मैं उनसे मिलती हूँ या सोशल मीडिया पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि फैशन और सस्टेनेबिलिटी ये दोनों साथ कैसे चल सकते हैं. क्योंकि फैशन तो नए ट्रेंड्स के बारे में होता है, हर महीने नई चीज़ें खरीदने के बारे में होता है, तो यहाँ सस्टेनेबिलिटी की जगह कहाँ आती है? वेल, ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि हमारी नज़रों में फैशन का मतलब है चेंज. लेकिन आज हमें ये समझना होगा कि वो बदलाव

नेचर की भी किस्मत को बदलने की कोशिश की है। वैसे आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, आपको बताना चाहूंगी कि जो फैशन इंडस्ट्री है उसका दुनिया में सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो है वाटर। हाँ, हम जो एक सिंपल कॉटन टी शर्ट पहनते हैं उसे बनाने में कितना पानी लगता होगा, कभी आपने सोचा? नहीं। वल जनाब, एक सिंगल कॉटन टी शर्ट बनाने में ऑलमोस्ट 2700 लीटर्स पानी लगता है। जस्ट इमेजिन कि इतना पानी एक इंसान के 2 से 2.5 साल तक पीने के लिए काफी होता है। जस्ट इमेजिन इतना बड़ा सैक्रिफाइस सिर्फ एक टी शर्ट बनाने के लिए। और बात सिर्फ पानी की नहीं है जनाब, हर साल लाखों टन कपड़े लैंडफिल्स में फेंक दिए जाते हैं। फास्ट फैशन ने हमें एक ऐसी आदत डाल दी है कि हम सस्ता खरीदते हैं, 2 बार पहनते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन वो कपड़ा कभी खत्म नहीं होता। वो हमारे नेचर या यूं कहें हमारे एनवायरनमेंट, हमारी अर्थ पर एक बोझ बनकर रह जाता है।

फील कर रहे हो या सैड फील कर रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कतर इज चेंजिंग द नैरेटिव. हाँ जी, हम यहाँ सिर्फ पुराने तरीकों पर अफसोस नहीं कर रहे बल्कि हम नए रास्ते बना रहे हैं. अब कतर में हम सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, हम ट्रेंड्स सेट कर रहे हैं और वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. आज का कतर एक कॉन्शियस कतर है, मतलब ये तो आप और हम मानते ही हैं. हमारा जो नौजवान है, यूथ है, अब ये पूछते हैं कि ये कपड़ा कहाँ बना है. मतलब इस तरह के सवाल हमारी आज की जनरेशन पूछती है. हमने कभी ऐसे सवाल शायद अपने बचपने में या अपने यंग एज में पूछे ना हो. इसमें कौन सा रंग इस्तेमाल होता है, ये सारा नॉलेज आज की जनरेशन के पास होता है. मुशर्रफ डाउनटाउन से लेकर लुसेल की चमकती गलियों तक अब एक नई वाइब महसूस हो रही है. यस, लोग अब स्लो फैशन की कद्र कर रहे हैं. वो ऐसे ब्रांड ढूंढ रहे हैं जो हमारी धरती को नुकसान ना पहुंचाए. कतर ने दिखा दिया है कि लग्जरी और एनवायरमेंट दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में फिट हो सकते हैं.

मटेरियल्स का इस्तेमाल करके हाई फैशन क्रिएट करते हैं। ये देखकर बहुत प्राइड फील होती है कि हमारे लोकल डिजाइनर्स इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर ये कह सकते हैं कि हम सुंदर भी दिखेंगे और हम जिम्मेदार भी बनेंगे। ये एक तरह की तहजीब या कल्चर दोबारा लौट कर आ रहा है, जैसे हमारी दादी

0: quality, not about quantity.
1: हम explore करेंगे हर green corner of Qatar. मतलब simple tips, cool hacks, inspiring stories from Qatar.
0: Qatar Green Beat. वेलकम बैक, मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ और अब हम बात करेंगे ऐसी जगह की जो मेरे दिल के बहुत करीब है. ये हमारे शहर की क्रिएटिविटी की धड़कन है. मैं बात कर रही हूं दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट की एंड दैट इज मुशर्रफ डाउनटाउन. अगर आप कभी मुशर्रफ डाउनटाउन गए हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप गए ही होंगे, तो आप जानते होंगे कि वो जगह अपने आप में ही सस्टेनेबिलिटी की एक बेहतरीन मिसाल है. वहाँ की इमारतें, वहाँ का आर्किटेक्चर, सब कुछ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है. लेकिन मुशर्रफ के दिल में यानी दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत ही अनोखा और स्पेशल कुछ हो रहा है. यस, वहाँ लोकल डिजाइनर्स अब फास्ट फैशन की अंधाधुंध दौड़ को छोड़कर स्लो फैशन को गले लगा रहे हैं. स्लो फैशन का मतलब सिर्फ धीरे धीरे काम करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ईमानदारी से काम करना. वहाँ ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जो सदियों पुरानी वीविंग टेक्निक्स यानी बुनाई के तरीकों से बनते हैं. वहाँ ऐसे रंगों का इस्तेमाल होता है जिन्हें हम ऑर्गेनिक डाइज कहते हैं, यानी पेड़ पौधों से निकाले गए

आर्ट में बदल सकता है लेकिन इस पूरे मूवमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है एक इंजन और उस इंजन का नाम है स्केल 7 स्केल 7 कतर का सबसे पहला फैशन एंड डिजाइन इंक्यूबेटर है

वैसे ही एक नए डिजाइनर को सही रास्ता दिखाने के लिए इस चीज की जरूरत है. स्केल 7 हमारे कतर के ग्रीन स्टार्टअप्स को वो सारे टूल्स और मेंटरशिप देता है जो उन्हें चाहिए. ये उन्हें सिखाते हैं कि कैसे एक एथिकल विजन को एक कामयाब बिजनेस बनाया जा सकता है. उनका सबसे बड़ा फोकस है सर्कुलर फैशन. सर्कुलर फैशन का सीधा सा मतलब ये है कि कपड़े ऐसे बनाए जाएं जो लंबे वक्त तक चलें और जिन्हें आसानी से रिपेयर किया जा सके और जब उनका वक्त खत्म हो जाए तो उन्हें दोबारा रिसाइकल करके नया बनाया जा सके. तो आज हमारे कतर के डिजाइनर्स दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम जिम्मेदार भी हैं और स्टाइलिश भी. आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट्स. मैं हूं अमिता आपके साथ और मेरे सारे प्यारे लिसनर्स. आज का सफर हमारे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. यस, लेकिन अब वक्त है कुछ एक्शन का. अक्सर लोग सोचते हैं कि सस्टेनेबल बनना बहुत मुश्किल है. क्या मुझे नए कपड़े खरीदना छोड़ना चाहिए? ये सवाल एक्चुअली में बड़ा डिप्रेसिंग है. फैशन तो एक एक्सप्रेशन है. यस, इट्स एन आर्ट. सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम थोड़े और स्मार्टर बन जाएं. तो चलिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. तो 30 वेयर रूल, ये रूल क्या है? इट्स एक्चुअली अ गेम चेंजर. अगली बार जब आप किसी मॉल में जाएं या आपको कोई आउटफिट बहुत पसंद आए तो उसे तुरंत खरीदने की बजाय खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं इस आउटफिट को कम से कम 30 बार पहनूंगी या पहनूंगा या नहीं. देखो, अगर जवाब हाँ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जवाब नहीं है कि आप सिर्फ एक पार्टी में पहनकर इसे साइड में रखने वाले हैं, वन टाइम आउटफिट है, तो मुझे लगता है कि आपको उस आउटफिट को नहीं खरीदना चाहिए. हमें फास्ट फैशन की दौड़ से निकलकर क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए. एक ऐसा लिबास चुनिए जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बने, जो बार बार पहनने पर भी पुराना ना लगे. और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी गाइस, इसका हमें ख्याल रखने की बहुत जरूरत है. दूसरी चीज, बीट द ह्यूमिडिटी. हम सब जानते हैं कि कतर की गर्मी और ह्यूमिडिटी हमारे कपड़ों के लिए कितनी टफ हो सकती है. ह्यूमिडिटी की वजह से फैब्रिक्स जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है. टू मेक योर क्लोथ्स लास्ट लॉन्गर, एक बहुत जरूरी मशवरा सुनिए. उन्हें कभी भी प्लास्टिक ड्राई क्लीन बैग्स में स्टोर मत कीजिए. प्लास्टिक बैग्स मॉइस्चर को लॉक कर देते हैं और जिससे कपड़ों के फैब्रिक्स कमजोर हो जाते हैं और उनमें अजीब सी ना स्मेल आने लगती है. कॉटन गार्मेंट बैग्स के इस्तेमाल कीजिए या पुराने पिलो केस को एक कवर की तरह इस्तेमाल कीजिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प. और इसके बाद गिफ्ट ऑफ गिविंग. तो अगर कोई कपड़ा आपको लगता है आप यूज नहीं करने वाले हैं तो उसे घर में स्टोर करने की जगह जो चैरिटी बॉक्सेस होते हैं उसमें जाके डोनेट कर दीजिए. तो जनाब, आज का जो ये हमारा खासम खास शो कतर ग्रीन बीट्स, ये अब खत्म होने जा रहा है. यस, हमने इतनी बातें, इतनी टिप्स आज डिस्कस की हैं. मुझे लगता है कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो पार्ट है एक बहुत बड़े सपने का, द कतर नेशनल विजन 2030, जो कि हमारे कतर के इस ख्वाब को पूरा करने जा रहा है, जहाँ पर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट पर पूरा पूरा फोकस किया जाएगा. कल कतर ग्रीन बीट्स का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FM 107 के जरिए या 666-22-107 के जरिए. और आप अपनी अमिता को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढ सकते हैं. अब अगले हफ्ते कतर ग्रीन बीट पर एक नए एपिसोड, एक नए सब्जेक्ट के साथ आपकी मुझसे मुलाकात होगी. सो डोंट गो एनीवेयर. मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिए. स्टे ट्यून्ड टू FM 107. दिल से देसी.

0: एनीवेयर।
1: यस, एनीटाइम, एनीवेयर।
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। लिसनर्स, हमारे जॉइंट्स जो कि बहुत ही अहम हैं, और जॉइंट्स की सेहत और उन्हें मजबूत रखने के लिए बहुत ही आसान तरीकों से हम उन्हें अच्छा रख सकते हैं, यानी सही आदत और जो एक्सरसाइजेस हैं वो हमारे जॉइंट्स को दर्द और बीमारी से बचाती हैं। जैसे कि स्ट्रेचिंग है और जो मोबिलिटी है, यानी डेली स्ट्रेचिंग, तो उससे हमारी जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से हमारी नेक है, शोल्डर्स हैं, बैक है या नीज हैं, वहाँ की तमाम जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं वो आप ज़रूर कीजिए। सिंपल स्ट्रेचेस मॉर्निंग में और फिर इवनिंग में आप कीजिए। और इसी तरह से ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि वेट बेरिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो भी करनी बेहद ज़रूरी हैं अपनी जॉइंट्स की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। उसमें वॉकिंग है या बहुत ही लाइट जॉगिंग है वो आप कर सकते हैं। बॉडी वेट स्क्वाट्स हैं या फिर लेजेंजीज हैं। स्ट्रेंथन जो ट्रेनिंग है वो जॉइंट्स को सपोर्ट भी करती हैं। इस तरह जो हमें अपनी डाइट पर भी ख़ास तवज्जो देनी है, और जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, उसमें ओमेगा 3 है, उसमें फिश है, वॉलनट है, फ्लैक्स सीड्स हैं, वो अपनी खुराक में शामिल कीजिए। टर्मरिक है,

रहती है और शुगर तो आपको कम करनी ही करनी है। और अपने जो पोस्चर है, जैसे आप बैठते हैं, वो आपने बहुत ही सही रखना है, यानी करेक्ट पोस्चर जो है वो आप रखिए। उसमें ये कि जब आप बैठे हों या आप खड़े हों तो आपके

0: लिए बैठना वो सही नहीं है। आप कुछ कुछ देर के लिए आप उठ सकते हैं, हर घंटे के बाद अगर आप 2 मिनट भी उठते हैं तो वो आप देखेंगे कि आपके हेल्थ के लिए, स्पेशली जो जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो आम जो बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें नी पेन है और ये है कि आर्थराइटिस है, मगर इसमें सबसे अहम ये है कि डायग्नोस हो और ये है कि जो रेगुलर चेकअप्स हैं वो हों। इसी तरह मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी वो आप ज़रूर कीजिए। तो रोज़ाना छोटी छोटी बातें अपना कर यानी एक्सरसाइजेस करके और सही आदत जो है वो आप अपनाइए, तो फिर उससे होगा हमारे जो जॉइंट्स हैं वो मजबूत होंगे और आप और हम दर्द से महफूज रहेंगे। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: टेक इनोवेशन शो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो मेरी तरह हैं। गैजेट को देखते ही हमें कुछ हो जाता है। मैं बता रहा हूं, ये ऐसा खर्चा है कि कंपनीज ने डिसाइड किया है कि हम आप पे बिल्कुल रहम नहीं खाएंगे। आगे आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे गैजेट्स आने वाले हैं ना भाई साहब, कुछ तो मैं आपको बता दूंगा जो आ चुके हैं और आप बोलेंगे भाई ये तो खर्चा करना पड़ेगा। खैर अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, वेलकम टू टेक इनोवेशन, वो दुनिया जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है, जहां पर गेमिंग की बात होती है, जहां पर गैजेट्स आते हैं, जहां पर एप्स आती हैं। पिछले हफ्ते लोगों ने बोला भाई एंड्रॉयड को ही सब देते रहोगे, हम iOS वाले को तो भला करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हमारा फॉर्म बड़ा सिंपल है, पहले एप्स आएंगी, देन गैजेट्स, देन इन टेक न्यूज। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ऐप से, एप्स दिस वीक,
1: ट्रेंडिंग एप्स।
0: देखो ये जितनी भी ऐप्स हैं ये बिल्कुल भी रैंक्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि 1, 2, 3 बता रहा हूँ तो ऐप नंबर 1, तो ओहो इससे बढ़िया तो कोई ऐप ही नहीं है। नहीं, रैंक्ड नहीं है, बट मैं इन ऑर्डर बता रहा हूँ विदाउट रैंकिंग। तो नंबर 1 जो ऐप है ऑन द लिस्ट टुडे इज अ वेरी सिंपल ऐप, और ये एप्पल की ही है, ये iOS ही दे रहा है लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। ये ऐप जो है इसका नाम है फाइनल कट कैमरा। एक है फाइनल कट प्रो, एज वी ऑल नो, एक है फाइनल कट कैमरा। अब अगर आपने ये ऐप कभी डाउनलोड करी है इससे पहले, मेरे बताने से पहले, तो आप शायद जानते होंगे कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो भाई साहब एक नंबर ऐप है। आप अपने वीडियोस पे पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, एडिट करना बेहद आसान है, प्रोफेशनली यू कैन एडिट योर वीडियोस, एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसमें जब आप फाइल सेव करते हैं तो वो ऐप के अंदर सेव होती है, ना कि आपकी फोन की गैलरी में। That makes a lot of sense because जब कोई ऐप चीजें सेव करती है और आपकी गैलरी को भर देती है तो आपकी गैलरी में आप डिलीट कर करके थक जाएंगे या आप भूल जाएंगे, फोन आपको बोलेगा स्टोरेज फुल है मालिक, आगे नहीं चल सकता मैं। बट इन दिस केस ऑफकोर्स आपका फोन हो सकता है कि स्टोरेज तब भी भरे क्योंकि ऐप भी हैवी होती है, बट देन अगेन एवरीथिंग इज ईजी टू डिलीट, ओमिट, एडिट इन साइड द ऐप इटसेल्फ। तो ये जो ऐप है ये आपको पूरा कंट्रोल देती है आपके फोटोग्राफी के लिए और स्पेसिफिकली आपकी वीडियोस के लिए, एडिट करने के लिए, शूट करने के लिए। एक इसका ड्रॉबैक है, मैक्रो शॉट्स नहीं ले पाता है, विच इज ओके, अगर आपको मैक्रो शॉट लेना है तो आप एनीवे अपने फोन के जो जनरल ऐप है उससे ले सकते हैं, मगर आपको थोड़ा सा इन्हांस करना है iOS, थोड़ा बढ़ाना है, घटाना है, शेडोज पे आपको बहुत टेंशन होती है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, दिस इज समथिंग टू डाउनलोड टू एंड ऑल्सो टू लर्न। इस ऐप के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज फाइनल कट कैमरा, अगेन इट इज बाय एप्पल ऑन द iOS। हम पढ़ते हैं आगे। अगली ऐप अगेन फ्रॉम iOS और ये मेरी फेवरेट ऐप है बिकॉज आई यूज इट ऑन डेली बेसिस। इसका नाम है डैज कैमरा, DAZCAMERA, डैज कैमरा। अब ये क्या करता है, ये आपको बहुत बेहतरीन फिल्टर्स देता है। देखो आप कहेंगे फिल्टर्स का जमाना भाई सब चला गया, आप कौन यूज करता है फिल्टर, आई कैन यूज एन AI, सिंपल। बट देन आपको AI के लिए प्रॉम्प्ट श्रॉम्प्ट देते रहो, उसमें AI के लिए आप भरेंगे, मगर जो एक सीमिंगली एक इजी नॉस्टैल्जिक आपको जो पिक मिलेगी एडिट होगी तो सामने आएगी, वो इस ऐप से बहुत बढ़िया आती है। आई हैव टेस्टेड टू मोर AIs अगेंस्ट दिस ऐप और सच बता रहा हूँ ये AI एक्चुअली में इसके आगे थोड़े फीके पड़ जाते हैं बिकॉज दिस डज अ ग्रेट जॉब विदाउट चेंजिंग और altering anything in your photo. तो इसका नाम है डैज कैमरा। आप नॉस्टैल्जिक फिल्टर्स लगा सकते हैं, वो अर्ली 2000s वाले क्या कैमरा के वो आते थे फिल्टर्स यार उस जमाने में, मतलब ऑटोमेटिकली कैमरा वैसे ही फोटो खींचता था। आई नो उस टाइम पे हमें लगता था ओहो काश और ज्यादा क्लीन अप हो सकता, लेकिन अभी फोटोज इतने ज्यादा क्लीन आने लगे हैं कि उनका वो जो नॉस्टैल्जिक फील है, वो जो थोड़ा सा रेट्रो फील है, वो चला गया है। आई एम फीलिंग टू ओल्ड राइट नाउ, मैं अर्ली 2000s को रेट्रो कह रहा हूँ, क्या जमाना आ गया। बट एनीवे डाउनलोड दिस ऐप फॉर योर ओन गुड, ऐप का नाम है डैज कैमरा, DAZCAMERA। ऑलराइट द नेक्स्ट वन, अब नंबर 3 ऑन द लिस्ट, ये बहुत बहुत काम आने वाली ऐप है मेरे फोन में जमानों से और अपडेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा अपडेट हुई है, बहुत कमाल की। इसका नाम है डॉक्यूमेंट्स। iOS यूजर्स इसे जरूर डाउनलोड करें, जरूर, मैं ये कह रहा हूँ ये हर किसी काम आने वाली है, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग ये ऐप आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके फोन में कभी डिलीट नहीं करेंगे। मैं उसकी वजह देता हूँ आपको, सारी की सारी मेजर ड्राइव्स, चाहे आपके फोटोज आपके डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव पे हों, आई क्लाउड पे हों, किधर भी हों, आई क्लाउड तो आपके फोन के अंदर ही है, कोई सी भी ड्राइव हो, है ना, सारे के सारे पोर्टल, सारी की सारी ऐप एक ही जगह पर इस ऐप के अंदर. यू कैन एक्सेस ऑल योर फोटोज, ऑल योर वीडियोज, वन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, कहीं पर भी हो. और ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यू विल फील कि हाँ मैं काफी ऐप जगल कर रहा था. क्योंकि क्या होता है जब आपको गूगल ड्राइव से फोटोज चेक करने होते हैं, निकालने होते हैं, डाउनलोड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, यू गो एंड डाउनलोड गूगल ड्राइव सेपरेटली एंड देन यू चेक. इसमें सब कुछ है, सब कुछ है. इंटरेस्ट भी, ये बहुत काम की ऐप है. ये आपने एक मरतबा डाउनलोड कर ली, आई डोंट थिंक सो आप इसे डिलीट करने वाले. आई रियली डोंट थिंक सो. सो डॉक्यूमेंट्स इसका नाम है, DOCUMENTS. iOS यूजर्स के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत कमाल की ऐप है. एंड ये भाई साहब आपके फोन के साथ चिपकी रहेगी, ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिए. ये तो हो गई ऐप्स, अब बढ़ते हैं जरा गैजेट्स की तरफ. इन गैजेट्स दिस वीक,
1: गैजेट्स.
0: ऑलराइट, सो गैजेट नंबर वन, मुझे बहुत मजा आया भाई ये गैजेट देख के, मैं सही बता रहा हूँ. सिंपल सटीक काम की चीज, आप इसे गैजेट कह रहे हैं, फर्नीचर के लिए किसी में फर्नीचर मान लीजिए, आपकी मर्जी है. बट लेट मी टेल यू, इसका नाम है डॉक सेफ चेयर. डॉक सेफ चेयर, ये एक चेयर है. आप बोलेंगे गैजेट थोड़ी हुआ है तो फर्नीचर बता रहा है. नहीं नहीं नहीं, ये चेयर है, इसके अंदर स्टोरेज है, ये फायर और वाटर रेजिस्टेंस है, और इसको इजिली इधर से उधर मूव किया जा सकता है. इट इज अमेजिंग. मुझे कभी नहीं लगा था, अगर दो तीन साल पहले भी आप पूछते कि कोई चेयर की तारीफ करेगा, मैं इतनी तारीफ तो नहीं करता, वो भी टैग शो के अंदर. बट डॉक सेफ चेयर सच में बहुत बहुत सही है. इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बड़ी कमाल की है, एंड उसके ओपन करने का तरीका भी अच्छा, और ऊपर से फायर और वाटर रेजिस्टेंस है. यू कैन मूव इट एनी वेयर यू वॉन्ट, टेक इट ऑन अ बीच, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. और इसके साथ आप घर में रखें, लिविंग रूम में रखें, एंड इवन आप गिफ्ट करें. भाई ये भी गिफ्ट दिए जाते हैं, ऐसी चीजें दिया करें, ये बड़ी काम की चीजें हैं जो लोगों को पता लगती हैं. भाई ये तो बड़ी काम की चीज दे दी इसने, पर लोग ये ऐसी चीजें गिफ्ट करते नहीं है. बट आई वुड सजेस्ट गिफ्टिंग के तौर पे भी ये बड़ी कमाल की चीज है. डॉक सेफ चेयर प्लस स्टोरेज, आप देखिएगा अमेजोन पे जाके अवेलेबल है, एंड ऑफर्स में मिल जाएगी आपको, बहुत सही है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो आपके सीधा किचन में जगह बनाएगा. अगली जो ऐप, सॉरी गैजेट है, मैं ऐप्स पे टिका हूँ, गैजेट की तरफ आ चुके हैं हम. अगला गैजेट है, इसका नाम है फेपो फूड वार्मिंग मैट, FEPPO फूड वार्मिंग मैट. सच में मैट ही है, आपको लगेगा कि छोटा सा दस्तरखान है, मगर ये छोटा और कमाल का दस्तरखान जो है आपके खाने को गर्म रखेगा, घंटों तक गर्म रखेगा. ठंडा खाना है तो उसे ठंडा रखेगा, खराब नहीं होने देगा. इसके अंदर 6 एडजस्टेबल डायल्स के जरिए टेम्परेचर्स हैं, आप उन्हें सेट कर सकते हैं, और आप इस पर खाना रख दीजिए, भाई ताज़ा गर्म रहेगा, घंटों तक गर्म रहेगा. ये ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि घरों में होनी चाहिए. ऑफकोर्स बच्चों से थोड़ा दूर रखिएगा इन्हें, बट बहुत बहुत कमाल की चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खाना रखा रहता है और वो नहीं खाते. मुझे डांट पड़ चुकी है इसलिए मेरी टोन नीचे हो गई. ये घर में रखने वाली चीज है भाई, इसको लाके रखिए, आपके काम आएगी सीरियसली. सो फेपो फूड वार्मिंग मैट जरा से ही दिखने वाला है, इसमें 6 एडजस्टेबल टेम्परेचर है, जैसे मैंने कहा. इवन आपका खाना ठंडा भी है तो उसको ठंडा रखिएगा, टेम्परेचर सेट कर दीजिए, बिल्कुल माइनस में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं. खाना गर्म रखना है, गर्म रखो. कुछ लोगों को ये होता है ना, कह देते हैं बस मैं आया आया आया, फिर आने में एक घंटा लग जाता है. सो इस पे खाना रख दिया, छुट्टी हो गई आपकी, वापस इसे हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आप घर में आराम से रख सकते हैं, और जैसे मैंने कहा बच्चों से दूर रखिएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अगर हाथ लगा देंगे तो ओह हाथ जल गया, ऐसा भी कुछ नहीं है. बहुत बहुत अच्छे कंट्रोल्स हैं इसके, एंड ये ऐसा गैजेट है जो एक बार आप घर ले आए, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी यूजिंग इट एवरी नाउ एंड देन. और मेहमान आते हैं उन्हें भी तो कूल लगता है ना, अरे भाई क्या चीज़ है उनके घर में. तो अगर शोबाजी के लिए भी आप लेना चाहें तो गो फॉर इट, फेपो फूड वार्मिंग मैट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगला बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट गैजेट है, इसका नाम है YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर. YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर. अब ये एक छोटी सी, हम हिंदी में कहते हैं ना डबिया है, डबिया. इस पे इसके अराउंड पूरा का पूरा एक वो लगा हुआ है साफ करने के लिए, और अंदर इसके मिस्ट क्लीनर, आपने स्प्रे किया और स्प्रे करके इसी से साफ कर लिया. बहुत बहुत इजी टू यूज, एंड आपको एक्स्ट्रा कोई भी कपड़ा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली अरे मेरी स्क्रीन खराब हो जाएगी नहीं जी इससे आप कर लीजिए ये चीज को मैं हल्के में लेता था बट आई हैव रियलाइज्ड कि भाई फोन की स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन आजकल आधी चीजें स्क्रीन पर हैं एंड यू वांट टू क्लीन देम अप इट्स जस्ट दैट आपको लगता है अरे कौन स्प्रे लाए लाए बुलाए ये आप अपने बैग में रखिए आपको कहीं भी लगे फोन गंदा हो गया कुछ हो गया लैपटॉप की स्क्रीन साफ करनी है ये बेस्ट चीज है मैं आपको बता रहा हूँ दिस हैज टू बी इन योर बैग ऑल द टाइम और जरा सा यार बहुत जरा सा स्प्रे है और स्प्रे से ही सबको साफ हो जा रहा है ये बहुत काम की चीज है आई एम गोइंग टू बाय दिस फॉर श्योर एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड कि ये आप जरूर रखें अगर आपके पास एन नंबर ऑफ गैजेट्स हैं जिन पे स्क्रीन हैं तो YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर बजट फ्रेंडली क्लीनर है और बहुत अच्छे से साफ करता है ओके बड़े हम खबरों की तरफ सब आइए इन टेक न्यूज की तरफ देखो खबरों में सबसे पहले गूगल छाया हुआ है गूगल ने नेक्स्ट पिक्सल ड्रॉप कर दिया था उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी उसमें बहुत सारे अर्ली एड्स दिए थे एक टीजर दिया था उन्होंने कहा था कि नाउ स्क्रीन रिएक्शंस विद जेमिनाई ओमनी पॉड फीचर्स ये अगली अपडेट का हिस्सा होगा तो ये लास्ट पिक्सल ड्रॉप जो उन्होंने किया था वो मार्च की 2026 में किया था मतलब इसी साल में किया था और अब गूगल जो है वो आगे बढ़ रहा है दे आर मूविंग ऑन विद अदर स्टफ इन देयर इकोसिस्टम सो इसमें म्यूजिक जनरेशन एंड स्क्रीन रिएक्शंस ये उनका नेक्स्ट पिक्सल ड्रॉप अपडेट होने वाला है विच इज ह्यूज आई बिलीव गूगल पिक्सल के जो फोन्स हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे सैमसंग और एप्पल की लड़ाई के बीच में आगे आके कहीं जीत ही ना जाए रेस यू नो स्लो एंड स्टडी विन द रेस आई वुड रियली वॉन्ट समबडी एल्स टू टेक द थ्रोन और प्रोबेबली बी इन द रेस एंड गूगल पिक्सल बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नजर आ रहा है ये जो वीडियोज अभी आ चुके थे बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं एंड यूट्यूब पर स्पेशली अवेलेबल हैं एंड गूगल हैज बीन अपडेटेड हैज बीइंग बीइंग अपडेटिंग अपडेटिंग क्या हो गया मेरी इंग्लिश को तो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द पास्ट टू और थ्री इयर्स और उन्होंने बहुत अच्छे अपडेट्स दिए हैं अपने फोन्स के साथ स्पेसिफिकली जो गूगल पिक्सल्स आते रहे आई एग्री उनकी प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हैं बट देन उस प्राइस में जो आपको चीज मिल रही है वो बड़ी कमाल की है एंड आई थिंक एक बग एक फीचर जो है फिक्स करें जहाँ पे स्क्रीन अपने आप को लॉक कर लेती है एंड देन यू रिक्वायर कि उसको आप पीसी से कनेक्ट करें और एक सॉफ्टवेयर रन करें वो परेशानी दूर हो जाए बाकी गूगल पिक्सल बहुत सही फोन है और अपडेट्स जो है बड़ी कमाल की सो यू कैन एडिट योर वीडियोस इन रियल टाइम एज यू शूट उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख सकते हैं उसका एआई बहुत स्ट्रॉन्ग है फिर अभी आने वाले वक्त में दे आर ड्रॉपिंग म्यूजिक जनरेशन सो आई थिंक इंडस्ट्री इज गोइंग टू चेंज एंड गूगल पिक्सल बहुत कमाल करने वाला है ऑलराइट नाउ द गेम गेमिंग न्यूज क्योंकि अगली और लास्ट चीज पे ध्यान देंगे पेपर के बाद आइए ये पेपर आपके लिए पलट रहा हूं मैं
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट
0: अगली खबर बड़ी मेन है अगली खबर जो है वो गेमिंग की दुनिया से आती है सीधा उस गेम से जुड़ी हुई जो कि तहलका मचा सकता है इस साल सबको इंतजार है नवंबर में GTA 6 आएगा एवरीबॉडी नोस दैट और नवंबर में कोई भी गेमिंग कम्युनिटी कोई भी गेमिंग डेवलपर राजी नहीं है रिलीज करने के लिए सबको डर लग रहा है लेकिन एक गेम है जो तहलका मचा सकता है वो है फैंटम ब्लेड जीरो जब इसका टीजर ट्रेलर आया था हमें लगा भाई ये क्या कर रहे हैं उन्होंने असली मोकैप जो मोकैप आर्टिस्ट हैं जो रिकॉर्ड करते हैं पूरे सीन्स को उसके लिए असली मार्शल आर्ट आर्टिस्ट और कंगफू फैंस को लिया है जो कंगफू जानते हैं देन दे हैव डेवलप्ड द गेम्स एंड दे आर सेइंग कि जो भी हमने आपको दिखाया है ये तो साइड कॉन्टेंट है समझ रहे हैं फ्लैग साहब Phantom Blade Zero can be the next contender जो GTA 6 से पंगा ले सके बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ ठीक है ये अपने दिमाग में रखिएगा let this sink in especially gamers on that note social media handles FM107 Qatar FM107 Qatar और शो के बिल्कुल इख्तिताम पहुंच चुका हूं तो आपसे बहुत प्यार आप भी भेजिएगा मुझे कोई भी ऐप गैजेट आपको नजर आए और मुझे दीजिए इजाजत दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद zaruri hai maasalam innovation
2: aap sun rahe hain fm 107 dil se desi

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे सेहतमंद वजन बरकरार रखने के बारे में। बहुत से अफराद वजन कम तो कर लेते हैं, लेकिन उसे बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। मगर अच्छी बात यह है कि चंद आसान और मुश्किल आदत अपनाकर हम और आप सेहतमंद वजन को बरकरार रख सकते हैं। सेहतमंद वजन सिर्फ अच्छी शख्सियत ही नहीं, बल्कि दिल की बीमारियों, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कई दीगर बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। बैलेंस डाइट अपनाइए, क्योंकि सेहतमंद वजन बरकरार रखने के लिए मतवाजन गिजा बहुत जरूरी है। अपनी रोजाना की खुराक में फल, सब्जियां, दालें, अनाज, दूध और प्रोटीन वाली गिजाएं शामिल कीजिए। बहुत ज्यादा चिकनाई, बहुत ज्यादा नमक और जो चीनी वाली अशियाएं उन्हें कम कीजिए। खाने की मकदार पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाना वजन बढ़ने का सबब बन सकता है। छोटी प्लेट इस्तेमाल कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता खाइए। एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपको बहुत पसंद है वो आप ज़रूर कीजिए, और इस तरह जो अपना वजन है वो बरकरार रखने में आपको वो मदद दे सकते हैं। जिस्म जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, इतनी ही कैलोरीज जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। पानी वो तो ज़रूर पीना है। पानी ना सिर्फ जिस्म को हाइड्रेट रखता है, बल्कि गैर ज़रूरी भूख को भी कम करने में मदद देता है। अच्छी नींद लीजिए। ना काफ़ी नींद जिस्म के भूख से जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें मुतासिर करती है, जिससे ज़्यादा खाने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। मेंटल हेल्थ वो बहुत अहम है। इसी तरह से डिप्रेशन है या कोई परेशानी है, बाज़ औक़ात जज्बाती खाने का भी बायस बनते हैं। तो फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन जो है या इबादत जो है वो आप ज़रूर कीजिए। और अपने वजन पर नज़र रखिए। हफ्ते में एक बार अपना वजन ज़रूर चेक कीजिए, और अगर बढ़ने लगे तो फौरन अपनी गिज़ा और जो एक्टिविटीज़ हैं उनका जायज़ा लीजिए। बहुत ही आसान सी टिप्स हैं कि नाश्ता रोज़ाना ज़रूर कीजिए, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम कीजिए, घर का बना हुआ खाना तरजीह दें, लंबे वक्त तक बैठने से गुरेज कीजिए, रोज़ाना कुछ वक्त वॉक के लिए ज़रूर निकालिए। तो लिसनर्स, सेहतमंद वजन बरकरार

0: रखना किसी मुख्तसर मुद्दत की डाइट का नतीजा नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल है, एक तर्ज जिंदगी है। छोटी लेकिन मुस्तकिल मुस्बत आदत आपको लंबे अरसे तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकती हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक सेहतमंद रहिए, बैलेंस डाइट लीजिए और एक्टिव जो लाइफस्टाइल है वो अपना लीजिए।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: Maximum music, maximum fun
2: on FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी. One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया. One Step to 2030. आज मैं बात करूंगी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट की. दोस्तों, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट किसी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बैकबोन होता है. इसका मतलब ये है कि रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेल सिस्टम्स और सप्लाई चेन सिस्टम का स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होना. जब एक कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो गुड्स और सर्विसेज आसानी से मूव होते हैं और बिजनेसेस ऑपरेशन स्मूथ हो जाती है. आज के ग्लोबल वर्ल्ड में ट्रेड और बिजनेस कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है. एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जल्दी और कम कॉस्ट पर डिलीवर कर सकती है. जब ट्रांसपोर्टेशन फास्ट और रिलायबल होता है तो मार्केट एक्सेस इंप्रूव होती है और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं. इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है. जब प्रोडक्ट्स ईजली मूव करते हैं तो ट्रेड बढ़ता है, इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. लॉजिस्टिक कंपनीज और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जॉब्स भी क्रिएट करते हैं और सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. कतर जैसी इकोनॉमी में जो ग्लोबल ट्रेड और बिजनेस हब बन रही है, लॉजिस्टिक का रोल और भी इम्पोर्टेंट है. पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, मेट्रो सिस्टम ऑलरेडी इनके एग्जाम्पल्स हैं भाई. ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इन्वायरमेंट का या बिजनेस इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है. तो कहने का मतलब ये है कि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंजन है. जब कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी तो बिजनेस एक्सपैंड करेगा और इकोनॉमी फास्ट ग्रो करेगी. और कतर का नेशनल विजन 2030, जी हाँ, कतर का नेशनल विजन 2030 में ये एक स्टेप है जो कतर को ग्लोबल हब बनाता है और बना रहा है. फिलहाल दोस्तों, अब मेरा वक्त हो गया है कि मैं आपसे इजाजत ले लूँ. ठीक है, इतना आज के लिए, इतना ज्ञान काफी है. कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक पे हम बात करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और वेरी प्रैक्टिकल एपिसोड। भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट पर जो ट्रैफिक, फ्यूल कॉस्ट और पोल्यूशन तीनों को एक साथ रिड्यूस कर सकती है, यानी कि कार पूलिंग ट्रेंड। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करती हूँ। जरा सोचिए, सुबह का टाइम है, ऑफिस या स्कूल जाने की जल्दी है आपको या आपके साथ वालों को। आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सेम रूट पर आपके कुलीग्स, फ्रेंड्स या नेबर्स भी अलग अलग कार्स में जा रहे होते हैं। साथियों ट्रैफिक में हर गाड़ी में सिर्फ एक से दो लोग होते हैं, लेकिन हर गाड़ी अपना फ्यूल भी यूज कर रही होती है और रोड स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही होती है। और यहीं से आइडिया आता है कि अगर ये सफर शेयर हो जाए तो कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है कि नहीं। देखिए अब थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी के साथ समझते हैं इस चीज को। देखिए कार पूलिंग का मतलब होता है एक ही गाड़ी में मल्टीपल लोगों का ट्रैवल करना जो सेम डायरेक्शन या सेम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। इससे गाड़ियों की टोटल नंबर जो होता है वो कम हो जाता है और सेम डिस्टेंस कवर होता है, लेकिन रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंटली यूज होती हैं। अब इसमें इस सिचुएशन में इको स्विच क्या है? आइडिया बड़ा सिंपल है, जब पॉसिबल हो अपने ट्रेवल शेयर करें। मतलब हर इंसान अलग अलग गाड़ी यूज करने के

0: बजाय एक साथ ट्रैवल प्लान कर सकता है। साथियों, बात करते हैं कि कार पूलिंग ट्रेंड फॉलो करने से क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा है फ्यूल सेविंग। जब एक गाड़ी में 3 से 4 लोग ट्रैवल करते हैं तो मल्टीपल व्हीकल्स के फ्यूल का यूज अवॉइड हो जाता है। दूसरा फायदा है ट्रैफिक रिडक्शन। कम कार्स का मतलब है रोड पर ट्रैफिक जैम और कंजक्शन नहीं होगा, ट्रैफिक स्मूथ होगी। तीसरा फायदा है पोल्यूशन कंट्रोल। कम व्हीकल से कार्बन इमिशन रिड्यूस होती है और एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट शेयरिंग। देखिए, फ्यूल और पार्किंग कॉस्ट सब लोग मिलकर शेयर कर सकते हैं, इससे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। तो भाई सोचिए, 4 दोस्त हैं या 4 ऑफिस वर्कर्स हैं जो सेम ऑफिस या सेम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अगर हर कोई अपनी अलग अलग गाड़ी ले जाए तो भाई क्या होगा, 4 गाड़ियां रोड पर आ पहुंचेंगी। लेकिन अगर वही 4 लोग एक ही गाड़ी में कार पूलिंग करें तो सिर्फ एक गाड़ी ही यूज होती है। रिजल्ट क्या होता है, फ्यूल भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगी और पार्किंग की टेंशन भी कम होगी। लेकिन दोहा जैसी सिटी में कार कल्चर बहुत स्ट्रांग है और डिस्टेंसेस कंपैरेटिवली मैनेजेबल है, इसीलिए यहाँ कार पूलिंग इजिली अडॉप्ट की जा सकती है, स्पेशली ऑफिस रूट्स या स्कूल रन्स और कम्युनिटी ट्रेवल्स के लिए। कई वर्क प्लेसेस ऑलरेडी इनफॉर्मल कार पूलिंग सिस्टम एनकरेज करते हैं। अब आपको वो टिप्स दे देती हूँ जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। भाई देखिए, ग्रुप प्लान बनाएं, ऑफिस या स्कूल कोलीग्स के साथ सेम टाइमिंग फिक्स करें, फिक्स्ड स्केड्यूल सेट करें। देखिए, कारपूलिंग तब सक्सेसफुल होती है जब रूटीन कंसिस्टेंट हो। अच्छा भाई, इसी के साथ तीसरा हमारे पास टिप है, फ्यूल कॉन्ट्रीब्यूशन अग्री करें। पहले से कॉस्ट शेयरिंग क्लियर रखें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सेफ्टी और कम्फर्ट इंश्योर करें, ट्रस्टेड लोगों के साथ ही कारपूलिंग करें, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्टरनेट ड्राइविंग सिस्टम रखें, हर दिन सेम पर्सन ड्राइव ना करें, रोटेशन सिस्टम अडॉप्ट करें। भाई दुनिया के बहुत सारे अर्बन सिटीज में कार पूलिंग एप्स और सिस्टम्स ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं। ये ट्रेंड सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन भी बन चुका है। देखिए, एक रिलेटेबल सिचुएशन ये है कि भाई अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई मेरी गाड़ी है, मैं अकेले ही ट्रैवल करूंगा। लेकिन जब हम कार पूलिंग अडॉप्ट करते हैं ना, तो रियलाइज होता है कि भाई एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट से कितना बड़ा एनवायरमेंट और फाइनेंशियल बेनिफिट हमें मिल सकता है। जब आप कार पूलिंग अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को ज्यादा कम्युनिटी ओरिएंटेड बना लेते हैं। आप सिर्फ इंडिविजुअल ट्रैवलर नहीं रहते बल्कि कोलैबोरेटिव कम्यूटर बन जाते हैं। तो भाई हमारा इको स्विच बड़ा सिंपल है, जब पॉसिबल हो अपनी जर्नी शेयर करें और कारपूलिंग अडॉप्ट करें। तो भाई आज का चैलेंज ये है कि आज अपने फ्रेंड्स, कुलीग्स या नेबर्स में से कम एक पर्सन, एक किसी इंसान को आइडेंटिफाई करें जो आपके रूट पर ट्रैवल करता हो और कारपूलिंग के आइडिया उसके साथ डिस्कस करें। और अगर आप ऑलरेडी कारपूलिंग कर रहे हैं तो किसी और को भी इस ट्रेंड में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, क्या पता उनको अच्छा लगे। तो साथियों, हर गाड़ी का एक एक्स्ट्रा पैसेंजर सिर्फ सीट नहीं भरता बल्कि एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। जब हम कारपूलिंग अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ सफर शेयर नहीं करते बल्कि अपनी जमीन का लोड भी कम ही करते हैं, हल्का ही करते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
1: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: तो पोटाशियम जो ही कम होगा तो क्रैम्प्स होंगी
1: जी।
0: तो बॉडी क्रैम्प्स होते हैं वो, और पता नहीं चल रहा होता उनको कि किस वजह से हो रहे हैं
1: जी।
0: और उस टाइम में अगर साथ में उनको वॉमिटिंग भी शुरू हो गई है
1: जी।
0: तो और ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब होता क्या है कि जो ही वो कंसल्ट करते हैं बाहर प्राइवेट
1: जी
0: या हेल्थ सेंटर में, तो उनको मेडिसिन दी जाती है जो कि एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो उस टाइम में एंटीबायोटिक्स चाहिए नहीं चाहिए, तो कुछ एंटीबायोटिक उस टाइम वो भी अफेक्ट करती हैं, तो वो किडनी को फेलियर को वर्सन करती हैं। तो उस कंडीशन में मेडिसिन भी आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें
1: जी। ठीक,
0: अगर बहुत ज़रूरी है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे, अगर नहीं है तो बेसिकली वॉमिटिंग डायरिया ये ऐसे फैक्टर हैं जिनका कॉमन पता चल जाता है लेकिन लोग कंसल्ट नहीं करते, उसको लाइट लेते हैं और खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं और जिससे किडनी फेलियर वर्सन हो जाता है। तो अब ये गल्फ का जो जैसे आपने जिक्र किया कि
1: एक्यूट के बहुत
0: तो वो ये 30% तो इन्फेक्शन से ही हो जाता है।
1: अच्छा, और इसमें भी गर्मी का जब हम जिक्र करते हैं या समर में किडनी प्रॉब्लम, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ से आपने कहा इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है क्योंकि गर्मी है या ह्यूमिड जो कंडीशंस हैं तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, स्किन की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, और फिर वही चीज़ आ जाती है कुछ लोग यूटीआईज होती है। अब यूटीआईज का जो ही आप जिक्र करते हो तो फिर वो फीमेल्स को उसमें जो है ना ज़्यादा रिस्क पे होते हैं वो लोग, तो इन्फेक्शन होती हैं उसके साथ रीनल फेलियर हो जाता है। तो उसमें भी हाइड्रेशन अपनी प्रॉपर रखें
1: जी,
0: टाइमली कंसल्ट करें और टेस्ट ज़रूर कराएं कि क्या वजह हो रही है। और ये मैं बताता चलूं कि शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो रिस्क फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो शुगर का जैसे HbA1c जिसको कहते हैं
1: जी,
0: वो उसको टारगेट में रखें, कंट्रोल में रखें, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं।
1: ठीक ठीक बिल्कुल, और क्योंकि वैसे भी अगर जब डायबिटिक की बात करते हैं तो उसमें जो इन्फेक्शन हैं ज़्यादा होती हैं, तकरीबन स्किन की ले लें, लंग्स, तो कोई भी इन्फेक्शन, तो यूटीआई तो बहुत ज़्यादा है
0: जी। अब डिहाइड्रेशन से हार्ट के इश्यूज भी आ जाते हैं, जैसे अरिथमियाज है और शॉक है
1: जी,
0: कोलैप्स हो गए, तो हार्ट की सप्लाई अगर कम हुई है तो बॉडी ऑर्गन दूसरे भी उसके साथ अफेक्ट होंगे
1: जी। ठीक,
0: तो ये एहतियात हैं जिनको ज़हन में रखना
1: है जी। डॉक्टर साहब, इसमें जो हैं अलामतें भी आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या क्या तो हमें नज़र आ रहा है मगर पेशेंट क्या जो है वो फील करता है, क्या क्या अलामतें हो सकती हैं, कि हमें ज़्यादा केयरफुल होना है
0: जी
1: या डॉक्टर को कंसल्ट करना है
0: जी। बिल्कुल, अब उसमें एक तो आप देखें कि यूरिन की अमाउंट है जिसको आप रफली आप डेली देखें कितने टाइम आप यूरिन करते हैं
1: जी,
0: तो क्वांटिटी जब कम होगी उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, और यूरिन कम हो जाए तब भी। और उसके साथ उसका कलर इम्पोर्टेंट है, कलर देखते रहें, कलर चेंज हुआ स्पेशली जब आप बाहर काम कर रहे हैं और कलर आपका डार्क यूरिन आ रहा है तो उसको देखें। अब कुछ लोग में इसके साथ पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो उसको हम कहते हैं कि हीट स्ट्रोक की एक अलामत है, साथ में वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, तो उस फौरन उसमें कंसल्ट करें। अब जो ये रीनल फेलियर बढ़ता है तो फिर पाँव पे सूजन भी शुरू हो जाती है, तो अब वो सूजन देखना है कि किडनी की वजह से हो रही है या हार्ट की वजह से हो रही है या लिवर की वजह से हो रही है। तो फौरन जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि उसमें किडनी फेलियर अगर है और उसके साथ प्रोटीन भी लीक हो रही हैं तो दूसरी चीज़ें भी देखी जाती हैं, शुगर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है,
1: ठीक है,
0: इन्फेक्शन तो नहीं है। तो फौरन ब्लड टेस्ट के साथ साथ स्कैनिंग भी की जाती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है, किडनीज क्या देखा जाता है कि अल्ट्रासाउंड साइज़ कैसा है, पहले से किडनी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको इश्यू तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से अब जो कि ज़्यादा हो गया।
1: डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ी जैसे अलामतें हैं उसमें वो दर्द का पूछना चाहूँगी कि क्या किस तरह की पेन जो है वो हो सकती है, कि दर्द किस तरह का जो है वो महसूस करते हैं या होता है या खाली यूरिन आप देखते हैं क्या इसमें
0: जी। पेन अब मुख्तलिफ होता है हर
1: पर्सन टू पर्सन,
0: हर पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा, लेकिन अलामात जैसे आप कहें कि

0: स्टोन की वजह से अगर पेन है तो
1: जी
0: जो फ्लैंक्स हैं आपके जो साइड में पेट के साइड पे राइट और लेफ्ट होंगे पेन और नीचे यूरिन वाली साइड पे जाएगा
1: जी ठीक।
0: तो ये तो आपको आइडिया होगा कि स्टोन है और वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है और उसकी वजह से फौरन से टेस्ट होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन इसके साथ जो जनरल पेन होता है, जैसे कुछ लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो गई, पेन शुरू हो गया, वो हॉस्पिटल आएंगे तो उसमें ऐसे लगेगा कि जैसे अपेंडिक्स का पेन है
1: जी।
0: तो उसको पेशेंट भी परेशान होता है कि कहीं मुझे अपेंडिक्स है, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया कि ज़रूरी कि अपेंडिक्स हो
1: जी,
0: तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, मसल डैमेज है, उससे उनको पेन हो रही होती है
1: जी।
0: साथ में वॉमिटिंग होती है। लेकिन
1: है।
0: अभी कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जिनमें उनको पेन के साथ स्टूल भी नहीं आ रहा, तो अच्छा। स्टूल अगर नहीं आ रहा तो फिर हम देखते हैं कि एब्डोमेन का मसला तो नहीं है, सर्जरी तो नहीं चाहिए।
1: ठीक ठीक जी। और लिसनर्स, हम इसी पर जो है बात डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि क्या क्या अलामतें हों तो फिर कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107 दिल से देसी,
3: दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: एलसेस हेल्थ गाइड, और आज हम बात कर रहे हैं कि किडनी की, गुर्दों के मसाइल गर्मियों में क्या क्या हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी डिटेल में बता रहे हैं। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर इकबाल, क्योंकि नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट हैं जी। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि जो अलामतें हैं वो आपने हमें बताई, इसके अलावा और कौन सी हो सकती हैं वो भी ज़रूर पूछना चाहूँगी। कि कोई जो है यूरिन का तो आपने बता दिया मसला, पेन की हम बात कर रहे थे, और स्पेशली आपने कहा कि ये जो है वो ये भी हो सकता है कि गलत फहमी हो कि जो है अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस जो है वो हो सकता है, तो उसमें कुछ डिफरेंशियल डायग्नोस या डिफरेंशिएट
0: कैसे
1: किया जा सकता है।
0: तो अलामत के साथ, लेकिन वो टेस्ट उस टाइमली होना ज़रूरी है, उससे पता चलता है। जैसे सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड हम करते हैं तो वहाँ से हमें क्लियर
1: होता है।
0: जो एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, उसमें पता चलता है कि अगर अपेंडिक्स का पेन है तो वो एक राइट साइड पे लोअर एरिया में होगा, बहुत स्वेयर होगा, वॉमिटिंग होगी, फीवर होगा, और उसके साथ अगर रीनल कॉलिक जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन का है, तो वो जैसे मैंने बताया कि आपके राइट और लेफ्ट साइड पे होगा
1: जी।
0: तो एक उसमें होता है पैंक्रियाज लबलबा का पेन, जो कि लोग फैटी अगर उन्होंने चीज़ें ली हैं और वो स्फेयर खाने के बाद आपको पेन होगा और बिल्कुल सेंटर एब्डोमेन के दरमियान में होगा।
1: ठीक।
0: और फिर आ जाता है जनरलाइज पेन। तो जनरलाइज में पूरे पेट में पेन हो रहा है और उनको समझ नहीं आ रही, कभी वो बता रहे हैं कि राइट पे है, लेफ्ट पे है, और लेकिन उसमें जब स्कैन करते हैं तो वो भी बास औकात बहुत सारे केसेस में नॉर्मल आता है
1: जी।
0: तो फिर बाकी टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें पता चलता है और कि क्रिएटिनिन कितनी है। जैसे क्रिएटिनिन एक किडनी पैरामीटर है जिससे हमें पता चलता है रीनल फेलियर हो रहा है
1: जी
0: और कितना स्वेयर है। और उसके साथ यूरिन का टेस्ट करते हैं, यूरिन में हमें पता चलता है कि उसमें ब्लड आ रहा है, प्रोटीन आ रहे हैं, या ऐसा नहीं हो रहा, या इन्फेक्शन की वजह से है। और उसके साथ ही बाकी लिवर के टेस्ट देखे जाते हैं, मसल एंजाइम देखे जाते हैं
1: जी।
0: तो इन टेस्टों के बाद आइडिया होता है कि अब इनको कौन सा पेन है
1: जी।
0: तो अलामात के साथ एग्जामिनेशन और टेस्ट से हम फिर कंफर्म करते हैं इसका कि पेन किस वजह से हो रहा है। तो जो ही आपको ये अलामत हों, प्रॉब्लम हो, तो फौरन से आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपको सही बता सकेगा कि पेन की वजह क्या है।
1: ठीक। डॉक्टर साहब अपने स्टोन्स जैसे उसके दर्द में और ये कुछ डिफरेंस जैसे आपने बताया तो इसमें क्या ये डिहाइड्रेशन से या गर्मी की वजह से स्टोन्स जो हैं वो भी बन सकते हैं या अगर कुछ हैं तो वो एग्रीवेट मतलब ज़्यादा हो सकते हैं इसका कोई रिलेशन है
0: जी कुछ लोगों में स्टोन पहले से होते हैं
1: जी
0: जिनको खुद भी नहीं पता होता या फैमिली में स्टोन है या जहाँ पे उनकी डाइट हैबिट ऐसी है कि उससे सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं और यूरिक एसिड हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो उससे स्टोन जैसे बनते हैं छोटे स्टोन हैं तो उनको पता नहीं होता अल्ट्रासाउंड भी नहीं हुए टेस्ट भी नहीं हुए तो जब वो किडनी फेलियर के साथ आते हैं तो मिक्स पिक्चर होती है
1: जी
0: तो फिर उसमें यही हम अल्ट्रासाउंड और टेस्ट से हमें पता चलता है और सीटी कंफर्म करते हैं सीटी स्कैन से कि स्टोन है या नहीं है अब स्टोन देखें कि अगर स्मॉल है तो उसके चांसेस होते हैं कि लेस देन 5 मिलीमीटर कह लें
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: वो मेडिसिन से और हाइड्रेशन से निकल जाता है खुद बहुत लेकिन वजह देखनी होती है किस वजह से बन रहे हैं कौन से स्टोन है फिर स्टोन एनालिसिस जिसको हम कहते हैं स्टोन का कंप्लीट टेस्ट होते हैं वो हम करते हैं
1: जी.
0: तो उसे देखते हैं कि अब सोडियम ज़्यादा लिया जा रहा है उसकी वजह से बन रहे हैं बस लोगों में कैल्शियम और ऑक्सलेट ज़्यादा होता है बॉडी में और
1: स्वेटिंग से भी
0: जी स्वेटिंग से एग्रवेट हो जाती हैं चीज़ें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि स्वेटिंग जब होगी तो स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी डिहाइड्रेशन तो जो स्टोन पहले कम बन रहे थे वो ज़्यादा बनने के चांसेस होंगे तो इसलिए एडवाइस ये किया जाता है कि हाइड्रेशन अपनी दो से तीन लीटर रखें इतना अच्छा। पानी पिएं तो स्टोन का अगर पता चल जाए तो फिर तो आप उसके एहतियात करें स्पेशली डाइट में हाइड्रेशन में और स्टोन कौन से हैं कैल्शियम ऑक्सलेट हैं यूरिक एसिड स्टोन है अब कुछ लोगों में यूरिक एसिड हैं तो यूरिक एसिड आपको पता है हाई प्रोटीन डाइट से यूरिक एसिड बढ़ता है
1: ठीक
0: तो यूरिक एसिड
1: रेड मीट वगैरह से
0: जी रेड मीट तो अपना डाइट का ख्याल रखें और साथ में चेकअप कराते रहें फ्रीक्वेंटली के उसके लेवल लिमिट के अंदर हों अगर ज़्यादा हैं तो वो किडनी फेलियर करेगा और इसलिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है और कुछ जहाँ पे आप देखें कि डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के साथ हम भूल जाते हैं कि ओबेसिटी जो है
1: जी
0: जो कि जिसको आप मोटापा कह लें सिंपल लैंग्वेज
1: जी बिल्कुल और ये कि है भी बहुत ज़्यादा और जैसे ही हर एक हम बात करते हैं जब किसी भी डिजीज़ की तो उसमें मोटापा ओबेसिटी जो है वो भी नंबर वन या टू थ्री इस तरह से उसके जो वजूहात हैं उसमें आती
0: है तीसरा फैक्टर बहुत बड़ा है तो उस पर हम तवज्जो कम देते हैं
1: जी
0: तो हमारी कैलोरी इनटेक ज़्यादा है जितना कि हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि लोग 10 साल पहले उनका वेट क्या था 10 साल कतर में रहे फिर वेट क्या है तो इसलिए हैबिट बना लेनी चाहिए कि जब आप 5 साल पहले का वेट देखें और अब क्या है तो अब उसमें वेट जो ही बढ़ता है तो आपके शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ में ही किडनी फेलियर भी
1: क्योंकि स्ट्रेस उस पर ज़्यादा आ जाता है
0: स्ट्रेस ज़्यादा है
1: ठीक है
0: बिल्कुल तो ये हमें डाइट का ख्याल रखना है डाइट जितनी हमें चाहिए उतनी और अबव 40-50 की एज में जो लोग जा रहे हैं तो उनको मज़ीद ख्याल रखना चाहिए हमारे यहाँ इन चीज़ों को बड़ा लाइट लिया जाता है
1: जी
0: कि डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं की जाती वेट का ख्याल नहीं किया जाता
1: ठीक है और बिल्कुल इस तरह लिसनर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पर हमें कॉल ना कीजिए आपने कॉल कर आप पूछना है कोई भी सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434347 पर आप कॉल करके कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिए कोई भी सवाल आप पूछिए जी डॉक्टर साहब इसमें जैसे आपने कहा और सारी जो अलामतें हैं वो डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में हमें बताई हैं और जो टेस्ट हैं वो तो आपने बताए हैं कि उसमें जो
0: यूरिन के टेस्ट करें ब्लड के टेस्ट कराएं
1: ज़रूरी है
0: तो जी उसमें कुछ लोग हेजिटेट करते हैं टेस्ट कराने से
1: जी
0: तो उनसे यही एडवाइस है कि मशवरा है कि ज़रूर टेस्ट करा लें जब ज़रूरी है तो बास औकात होता है कि उनके मल्टीपल फॉलोअप्स चल रहे होते हैं तो मैंने देखा है कि वो बहुत परेशान होते हैं तो ज़ाहिर है एंग्जाइटी फैक्टर बहुत होता है तो हर डॉक्टर टेस्ट उसमें कुछ एडवाइस करता है लेकिन वो थोड़ा डॉक्टर से कम्युनिकेट करें कि उनके फॉलोअप्स कितने हैं
1: जी.
0: तो ज़्यादा फॉलोअप्स भी इंसान को परेशान कर देते हैं
1: जी.
0: तो लेकिन जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो उसमें डराने चाहिए और कराने चाहिए. कुछ लोग हमारे जो एशियन कल्चर में हैं वो कहते हैं कि पता नहीं टेस्ट करते जा रहे हैं और ट्रीटमेंट जो सिंपल चल रहा
1: जी.
0: तो इस चीज़ से उन परेशान नहीं होना चाहिए.
1: टेस्ट होंगे तो उससे से वो सही डायग्नोसिस जो है वो सामने आएगा
0: जी. बिल्कुल
1: जी.
0: तो क्योंकि कुछ स्टेज में किडनी फेलियर अगर शुरू में है तो कुछ अलामत नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं. लेकिन जब जो ही टेस्ट करेंगे तो टेस्ट से पता चलेगा ये प्रॉब्लम आ रही है
1: जी.
0: तो टाइमली उसका तशखीस हो जाएगी, डायग्नोसिस हो जाएगा और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी
1: जी.
0: तो अगर टेस्ट ही नहीं करेंगे तो एडवांस स्टेज पे पेशेंट आएंगे, कुछ अपनी ट्रीटमेंट्स करते रहेंगे जिससे उनको खुद भी पता नहीं चलेगा रीनल फेलियर कितना हुआ या और कोई प्रॉब्लम हो रहा है.
1: ठीक.
0: तो प्लीज़ यही है कि टेस्ट ज़रूर कराएं
1: जी
0: और उससे डरे नहीं.
1: ये डरने की वजह से आप जैसे प्रैक्टिस में हैं, आते हैं जैसे पेशेंट्स हैं तो ये वजह होती है और उससे भी ये है कि जो डिले हो जाता है और उनका ट्रीटमेंट भी.
0: बिल्कुल बिल्कुल. बहुत सारे जब पेशेंट हैं उनका मैसेजेस चले जाते हैं कि आपने इस टाइम पे आपका फॉलोअप है 6 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद
1: जी.
0: तो लेकिन देखा गया आधे से ज़्यादा टेस्ट नहीं कराते. तो फिर वो आएंगे चेकअप कराएंगे फिर दोबारा आप देखें उसमें वो टाइम लूज़ कर रहे हैं
1: जी.
0: कि टेस्ट अगर टाइमली करा लें तो उसी टाइम जब आए हैं तो उनकी जो मेडिकेशन चेंज होनी है उसमें जो एडवाइस उनको मिलनी है
1: जी
0: टाइमली मिल जाएगी. लेकिन वो टेस्ट उस टाइम नहीं कराएंगे फिर 2 माह बाद कराएंगे तो फिर वो जो ट्रीटमेंट उनको पहले होना था कुछ मेडिसिन शुरू होनी थी
1: जी
0: तो वो डिले हो जाएंगी.
1: ठीक.
0: तो ये टाइम फैक्टर बहुत ज़रूरी है. अब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग यहाँ पे हेल्थ जो स्टेटस है बड़ा अच्छा है, हेल्थ अवेयरनेस बहुत है और एजुकेशन बहुत अच्छी है. तो लोग इससे मैक्सिमम एडवाइस ये कि फ़ायदा उठाएं
1: जी.
0: तो जब उनको एडवाइस मिल जाती है पता चल जाता है तो उसको फॉलो करें
1: जी. डॉक्टर साहब हमारे लिसनर हैं अहमद, उनका नाम है, तो पूछ रहे हैं कि आप क्या जो क्रिएटिनिन लेवल है वो भी गर्मी की वजह से ज़्यादा हो सकता है
0: जी. उसमें कुछ चीज़ें वो ख्याल रखना ज़रूरी हैं कि एक तो पहली चीज़ तो है कि गर्मी से क्रिएटिनिन बढ़ गया. अब वेट का हम जैसे बात कर रहे थे वेट आप देखें कि पहले लास्ट ईयर या 2 साल पहले कितना था
1: जी.
0: तो क्रिएटिनिन डायरेक्ट आपके मसल मास से भी रिलेटेड है. कुछ लोग का वेट बढ़ जाता है तो क्रिएटिनिन थोड़ा ज़्यादा लेवल आ रहे होते हैं.
1: अच्छा ठीक.
0: तो लेकिन मेक श्योर यही करना होता है कि बाकी उसमें चीज़ें उनको नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है जैसे, हाइपरटेंशन नहीं है, ओबेसिटी नहीं है. तो फिर भी अगर क्रिएटिनिन थोड़ा सा हाई है फिर वो देखना चाहिए कि उनका मसल मास कितना वज़न बढ़ा है. अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिम फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं और उनके जो क्रिएटिनिन यूजुअल रूटीन से थोड़ा सा हाई आता है.
1: अच्छा ठीक.
0: तो लेकिन उनके लिए वो लेवल नॉर्मल समझ लें कि उनका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा.
1: ठीक है.
0: तो ये ऐसी चीज़ें हैं. लेकिन ऑफ़ कोर्स अगर शुरू में आपको पता चलता है हाई है तो ज़रूर उसके एडवाइस लें, चेकअप कराएं, कंप्लीट चेकअप हो जाए तो फिर पता चलता है कि ये हाई किसी रीज़न की वजह से है या फिजोलॉजिकल उसमें फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हाई आ रहा है
1: जी. जेनेसिस आपको बताते चलूं कि अगर आप व्हाट्सएप पर हमें वॉइस मैसेज ना कीजिए, टेक्स्ट मैसेज आप कीजिए, जो भी सवाल होगा तो डॉक्टर साहब उसका जवाब ज़रूर देंगे जी. डॉक्टर साहब इसमें फिर डिहाइड्रेशन वगैरह से हो सकता है, ये आपने कहा कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी
0: जी. बिल्कुल डिहाइड्रेशन मेन है. जैसे लोग आजकल अपना ख्याल नहीं कर रहे तो हाइड्रेशन उनकी प्रॉपर नहीं है. तो उसका ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को हाइड्रेट करें, 2 हफ्ते पानी और लिक्विड्स प्रॉपर लें, फिर उसके बाद टेस्ट रिपीट कर लें तो फिर देखें कि उससे कितना लेवल उनका बेहतर हुआ है.
1: ठीक है.
0: तो और मेडिसिन मेक श्योर कर लें, उसका चेक कर लें कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं ले रहे और कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, वो मैं कहना चाहूँगा कि सप्लीमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं उनको खुद भी नहीं पता वो किडनी पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, उन सप्लीमेंट्स

0: से अवॉइड करें जब आपने टेस्ट करने, तो फिर आपको उसका यकीन हो, पता चले कि ये सप्लीमेंट्स आपके लिए फ़ायदा कर रहे हैं या उसके लिए आपकी बॉडी पे अफेक्ट कर रहे हैं, क्रिएटिनिन हाई हो रहा है और बाकी आपके सिस्टम जो है उनसे मुतासर हो रहे हैं।
1: ठीक ठीक, कि जो कुछ सप्लीमेंट हैं वो भी अफेक्ट कर सकते हैं।
0: जी कुछ लोग जैसे आपने
1: मतलब कौन से, थोड़े से मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आमतौर पर ओवर द काउंटर ही सब लेते हैं और देख के कोई भी अट्रैक्टिव हैं तो वो हम ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है।
0: जी उसमें जैसे मेल्स के लिए डिफरेंट हैं, फीमेल्स के लिए डिफरेंट हैं।
1: जी जी,
0: अब कुछ मेल्स के लिए जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, लोग जिम करते हैं और उनको सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं, जो वो सप्लीमेंट्स एक स्पेशल किसी का नाम तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल उनको दिए जाते हैं कि उनका मसल बढ़ जाए, उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाए
1: जी।
0: तो वो ऐसे सप्लीमेंट। अब फीमेल्स के लिए कुछ जो मेडिसन्स हैं वो तो ठीक हैं, कुछ अननेसेसरी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉस्मेटिक्स में आती हैं।
1: अच्छा,
0: तो जिनको वो यूज़ करते हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है, तो वो स्किन एब्जॉर्प्शन से भी उनकी किडनी पे अफेक्ट हो सकता है।
1: जी ठीक,
0: तो इसलिए ज़रूर चेक कर लें कौन सी ऐसी हैं कि, तो आजकल जैसे नेट के थ्रू, गूगल के थ्रू आप फौरन से चेक कर सकते हो।
1: जी ठीक, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और लिसनर्स, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे गुर्दे हैं उन पर वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो विटामिंस हैं वो हम लेते चलें। इंशाल्लाह हम इस पर भी एक बात करेंगे कि जो विटामिंस हैं वो किस हद तक और कब किस कंडीशन में ज़रूरी हो सकते हैं या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि उसका जो इलाज है वो कैसे मुमकिन है, मैनेजमेंट जो हमें करनी चाहिए या किस तरह। डॉक्टर्स जो हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, वह हमें बताएंगे। जी डॉक्टर साहब,
0: तो जैसे कहा जाता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, पहले तो ये हमारे सब बात करने का मकसद यही है कि हमें ये आइडिया हो कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है या हो चुकी है तो उससे बचना क्या से है। तो दूसरा स्टेप पे आ जाता है कि उसके तशखीस हो गई, पता चल गया। तो जब रीज़न आपकी पता चल गई, एक्यूट किडनी इंजरी है और उसमें आपने बेसिकली फॉलोअप करते रहना है। फॉलोअप के अंदर इनिशियली 2 से 3 माह का होता है टाइम फ्रेम, उसमें आपको अपॉइंटमेंट मिलते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, तो उससे आप फॉलोअप करें।
1: जी ठीक,
0: लेकिन साथ में अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट इश्यूज़ हैं, तो उनको ज़रूर आप फॉलोअप करें, क्योंकि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो किडनी इम्प्रूव नहीं होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो किडनी इम्प्रूव नहीं होगा, हार्ट फेलियर चल रहा है तो किडनी इम्प्रूव नहीं होगा
1: जी।
0: और जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम वेट है, वेट पर ज़रूर ध्यान करें, अपना वेट डाइट से, एक्सरसाइज से। और इसमें देखा गया है कि वॉक जो है बहुत ज़रूरी है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स वॉक करें
1: जी,
0: और अपने वेट को रिड्यूस करें, तो ये फैक्टर्स हैं जिनसे हम बचा जा सकते हैं। अब मेडिसिंस हैं
1: जी,
0: रीनल फेलियर में मेडिसिन कम से कम लेनी चाहिए और दी जाती हैं, सिर्फ ज़रूरी मेडिसिन हम देते हैं जो कि उनके लिए प्रोटेक्टिव है।
1: ठीक है,
0: फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है तो वो किडनी को भी प्रोटेक्ट करेंगी, शुगर की मेडिसिन है तो वो किडनी को भी प्रोटेक्ट करेंगी।
1: जी ठीक,
0: और पेन किलर फिर मैं कहूँगा उनसे अवॉइड करें जितना कर सकते हैं, स्पेशली पेन किलर जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है, अननेसेसरी। और जो हमारे वर्कर हजरात हैं काम कर रहे हैं
1: जी,
0: जाहिर है वो थक जाते होंगे, पेन किलर जो ही उनको पता है कि ये पेन किलर ले लें, ऐसे नहीं लेने चाहिए, उसमें एहतियात करने चाहिए कि जो उनके लिए नुकसानदेह हैं वो बिल्कुल ना लें।
1: जी जी डॉक्टर साहब, हम चलेंगे अपने लिसनर्स की तरफ, सुनते हैं कि हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं महमूद बोल रहा हूँ।
1: जी जी
2: जी डॉक्टर साहब से ज़रा बात हो सकती
1: है? जी ज़रूर
0: आप जी, वेलकम जी जी, बताएं
2: जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी।
0: वालेकुम सलाम,
2: और बड़ा मालूमती प्रोग्राम, वेरी इंफॉर्मेटिव जी।
1: बहुत शुक्रिया आपका जी, पूछिए क्या पूछना चाहिए।
2: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अभी आपने फरमाया कि सप्लीमेंट जो है इनका भी कोई इफेक्ट होता है किडनी पे, तो ये مثلا عام طور پر جو ہے میں 75

0: फाइव प्लस हो, तो वाइटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स बी ट्वेल्व में लेता हूँ एज पर प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है किडनी पे?
1: जी आपने बड़ा अच्छा पूछा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है हमारे लोगों में, और एज ठीक है थोड़ा अगर 70s में भी हैं, लेकिन यंग लोगों में भी है, ये बहुत कम होती है विटामिन डी तो, और धूप में सन एक्सपोजर बहुत ही कम है, तो विटामिन डी लेने से कोई किडनी फेलियर और किडनी पे अफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके लेवल्स आप 6 माह बाद साल बाद ज़रूर चेक कर लें, तो वो जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा नहीं लें। कुछ लोग ये ले रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं, तो जब आप एक लेवल अचीव कर लें फिर देखें कि उसी को मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा सा ले दें, और बी ट्वेल्व भी इसी तरह, जैसे अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, आप यहाँ पे चिकन मटन और ये फूड्स अच्छी ले रहे हैं, तो विटामिन बी ट्वेल्व कुछ टाइम के लिए लें, तो उसके बाद उसको स्टॉप कर दें। अगर आप देखें आपका कम हो रहा है, लेवल लो है, तो फिर आप ले सकते हैं, उसका किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता।
0: इसी तरह बी कॉम्प्लेक्स जो है उसका भी यही है?
1: जी बी कॉम्प्लेक्स का ही इसी तरह बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि बी कॉम्प्लेक्स जैसे उसमें आप विटामिन्स की बजाय अगर आप प्रोटीन्स ले रहे हैं, चिकन मटन और ये चीज़ें, तो आप वो डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं।
0: अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने बताया, वरना यह है कि आदमी वैसे भी खुराक इस्तेमाल करता रहे साथ में सप्लीमेंट ले, तो उसके फिर वो
1: ओवरडोज हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो साइकोलॉजिकल भी जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे हमें मल्टीविटामिन लिख दें, तो अगर तो उनको चाहिए कुछ शॉर्ट टाइम के लिए लें, फिर अच्छा सेफ साइड यही है कि उसके बाद उसको बंद कर दें, तो कंटिन्यूस नहीं लें।
2: डॉक्टर साहब, कितनी देर तक कंटिन्यूस लेनी चाहिए? जैसे कि हम मल्टीविटामिन्स की बात करते हैं, तो कोई गैप, जाहिर सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, तो मैंने कहा मैं भी उसको ज़रा उसमें ऐड कर लूँ और पूछती चलूँ आपसे।
1: जी तो कुछ तो मल्टीविटामिन कम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है, तो वो 1 माह 2 माह मैक्सिमम 3 माह इस तरह लें
2: जी।
1: अब उसमें वो देखें कि आप विटामिन ए बी सी
2: जी
1: और बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन्स हैं, तो एज सच वो ठीक हैं, लेकिन आप उसके सब्स्टिट्यूट में देखें क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं। विटामिन सी फॉर एग्जांपल आप किस में न्यूट्रिशन से पूरा कर सकते हैं
2: जी,
1: सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, चेरीज, तो ऑरेंजेस
2: जी,
1: तो आपको उसकी इतनी ज़रूरत है, क्योंकि विटामिन सी आपको रेगुलरली चाहिए, तो वो डाइट से आप कंपनसेट कर सकते हैं। तो
0: विटामिन सी
1: जी, विटामिन सी तो आप और बाकी जैसे विटामिन ए है, कैरेट्स हैं
2: जी,
1: ठीक है, एप्पल है, तो उससे कंपनसेट कर सकते हैं, और बी बी की आपकी जो कैटेगरी आ गई वो उसमें जो डाइट है जैसे हाई प्रोटीन डाइट है, उससे अगर आपका किडनी फेलियर नहीं है तो आप हाई प्रोटीन डाइट लें, अपनी प्रोटीन ठीक रखें, तो उसे बैलेंस रहेगा। और विटामिन ई भी, विटामिन ई बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किया जाता है, तो दैट्स ए सर्टन लिमिट ठीक है, लेकिन विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी आप डाइट सप्लीमेंट भी, डाइट जैसे फ्रूट्स हैं कुछ वो ले सकते हैं, तो उससे आप वो कुछ टाइम के लिए लें, उसके बाद उसको बंद कर दें।
2: ठीक।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये किडनी का खुदा ना खासा किडनी फेलियर या इसका इफेक्ट जो है, उसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं?
1: जी बिल्कुल, सिम्टम्स यही हैं कि अगर आपके यूरिन की अमाउंट कम हो रही है, लेग्स पे स्वेलिंग हो रही है, और कुछ लोगों को भूख नहीं लगती, तो ज़रूर आप चेकअप कराएं कि किडनी फेलियर तो नहीं चल रहा साथ में।
0: अच्छा
2: ठीक।
0: मेरा जो है ना रिसेंटली चेकअप हुआ था, क्रिएटिनिन जो है 98 UMOL है, यूरिया 5.4 UMOL है, और इसी तरह टोटल प्रोटीन 65 GM है,
1: तो ये नॉर्मल रेंज में आपके तो फिर जी,
0: नॉर्मल रेंज में
1: जी जी, तो माशाल्लाह।
0: किडनी के लिए तो
1: जी, जी ये बड़ा अच्छा आपने पूछा, EGFR थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आम लोग उसके पे फोकस करते हैं, तो इस प्रोग्राम की वजह से मैं बताना चाहूँगा कि 40 ईयर्स के बाद EGFR पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि
0: अच्छा।
1: जब आप 60 और 70s रेंज में पहुँचते हैं तो आइडली आपकी

0: अगर 60 to 70 ml आ रही है, मैक्सिमम 80 ml आएगी GFR, तो 80 ml नॉर्मल है, क्योंकि एज से 40 के बाद हर साल 1 ml क्लियरेंस कम होती है किडनीज़ की, तो ये नॉर्मल है। तो इसलिए 60 और 80 के दरमियान अगर आ रही है तो उसको नॉर्मल लें। लेकिन कुछ लोग वो चूँकि ऐप अवेलेबल है उस पर जो ही लैब देखते हैं तो ई एफ आर जैसे थोड़ा सा कम उसमें अगर शो होता है तो उससे वो डर जाते हैं। तो एज को उसको शामिल रखें, तो एज के लिहाज से अगर आपकी 60-70 एज लिहाज से अगर 70 ml 80 ml में आ रही है तो दैस ये नॉर्मल है। तो लेकिन वो ये है कि आप साल बाद एटलीस्ट अपना एक चेकअप करा लें।
1: अच्छा, तो ये कितने अरसे के बाद करवाना चाहिए?
0: जी साल,
2: एक साल के
0: एक साल बाद चेकअप कर लें।
1: अच्छा, और अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो आपने यूरिन के कलर के बारे में कुछ बताया था कि डार्क येलो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है।
0: जी बिल्कुल, डिहाइड्रेशन से होता है अगर आप प्रॉपरली अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर लें, पानी नहीं पी रहे तो वो कलर चेंज होगा। तो वो ये एक सिंपल टूल है जिससे आपको पता चल सकता है कि हाइड्रेशन मैंने बेहतर करनी है।
1: मैं तो तकरीबन 12 से 14 ग्लास जो है पानी पीता हूँ, लेकिन बीच में मेरा वही जो है डार्क येलो जो है यूरिन आता है काफ़ी।
0: तो फिर डाइट में आप चेक करें कि कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो कि आपके हाई प्रोटीन डाइट है और कुछ ऐसी चीज़ें उससे भी कलर चेंज होता है, लेकिन 8 से 10 ग्लास बहुत हैं। अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो एसी के अंदर हैं घर में,
1: बाहर भी जा रहा है गाड़ी में आदमी,
0: हाँ गाड़ी में होता तो इतना काफी है। बिल्कुल
2: अपना ठीक है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर
2: जी,
1: थैंक यू सो वेरी मच, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, गॉड ब्लेस यू बोथ,
2: थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह,
1: थैंक यू,
2: अल्लाह हाफिज,
0: थैंक यू
2: जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अपने बॉडी उसमें ट्रीटमेंट के हवाले से बताए, एक और प्रिवेंशन जो है बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में जैसे हाइड्रेशन का आपने हमें बताया, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकती हैं दरखास्ता अगर हम केयर ना करें या जो अपनी अलामतें बताई हैं उनको इग्नोर कर दें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं?
0: जी देखें, अब एक वही चीज़ है कि जैसे हमें जानकारी है, टेस्ट करा लिया तो कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं
2: जी,
0: लेकिन कुछ कंडीशन में अगर 6 माह तक किडनी फेलियर क्रिएटिनिन हाई रहती है तो फिर उसके चांसेस कम होते हैं ठीक होने के
2: जी,
0: लेकिन उससे भी डरना नहीं चाहिए, फॉलोअप कराएं प्रॉपरली
2: जी, जी।
0: तो कुछ लोग उसी को मेंटेन रखते हैं, तो मेन कॉम्प्लिकेशन तो यही है जिसे हम कोशिश करते हैं कि बच जाएं हमारे सारे लोग, कि वो क्रॉनिक में ना चले जाएं
2: जी, ठीक,
0: क्योंकि क्रॉनिक स्टेज में जो ही चले जाते हैं तो उनकी रिकवरी चांसेस नहीं होते, तो क्रॉनिक की आपको पता है कि फिर फॉलोअप क्लोजली करना होता है
2: जी,
0: 3 से 4 माह और कभी 6 माह में भी अगर स्टेबल चल रहे हैं तो फॉलोअप ज़रूर कराएँ। तो ये ऐसी चीज़ है जैसे आप 70% चीज़ को बचा सकते हैं तो बाकी अगर 20-30% हो गया तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि रीनल फेलियर एडवांस हो जाए और आप डायलिसिस पे चले जाएं, तो उससे पहले जो स्टेजेस हैं तो साल लोग फॉलोअप करते रहते हैं
2: जी,
0: और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी के टेस्ट होते हैं जैसे रूटीन में वो करते रहते हैं और नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं
2: जी। तो जी डॉक्टर साहब, हमारे लिसनर है, नाम इन्होंने लिखा, मैं पूछ रहे हैं कि बाज़ औक़ात पानी कम पीने के लिए भी कहा जाता है तो ऐसा क्यों है?
0: जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा पूछा इन्होंने। तो अब ये देखें कि जो कुछ हार्ट के पेशेंट हैं हमारे और लिवर की डिजीज हैं उनमें, तो उनमें कहा जाता है कि पानी कम पिए, तो अब उसमें देखा जाता है कि उनके सांस तो नहीं उखड़ रहा, जिसको कहते हैं कि सांस ख़राब हो रहा है चलते हुए, सोते हुए, लेटे हुए, तो ये एक सिंपल मेजर है जिससे आप देख सकते हो कि पानी मैंने कितना लेना है, और यूरिन आपको रेगुलर आ रहा है
2: जी,
0: तो 1 लीटर 1.5 लीटर इस तरह आप कम करें
2: ठीक,
0: तो वो अपने हार्ट डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करते रहें कि कितना पानी मुझे चाहिए। तो हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है, स्पेशली जो हार्ट पेशेंट हैं, लिवर के पेशेंट्स हैं,
2: वो
0: तो उनमें ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा पानी पिए, 1 लीटर 1.5 लीटर तो उनकी कंडीशन के मुताबिक उनको लेना चाहिए,
2: और ये कि डॉक्टर के मुताबिक जितना वो बताएं आप उसके
0: मुताबिक
2: ठीक है।

0: पाने लें।
1: बिल्कुल, लिसनर्स आप दोबारा ये प्रोग्राम सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, जुमे को सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम पेश किया जाता है तो आप रिपीट में सुन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कोई मैसेज?
0: जी बिल्कुल, ये आपके प्रोग्राम की निस्बत से यही मैसेज है कि आजकल के मौसम में अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें, अननेसेसरी मेडिकेशन पेन किलर स्पेशली यूज़ ना करें, और स्पेशली जो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे
1: तो वो उसमें भी केयरफुल
0: उसको हाँ केयरफुली मॉनिटर करें।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर जफर इकबाल जो कि न्यूफोलॉजी कंसल्टेंट हैं, फौजे शफीक और हमारे साथ रहे असली भंडारा, उन्हें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
4: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं, और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो,
5: And he's hooked that away. That's 4 runs.
4: फुटबॉल हो, Goal! या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
6: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
4: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
6: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की,
7: स्पोर्ट्स की। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
8: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
9: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ اور قطر ریڈ کریسنٹ کے تعاون سے وینزویلا کے لیے تعاون کا فوری سلسلہ شروع کیا ہے. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر سے کینیڈا کے وزیر برائے عمومی سلامتی نے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت سے کروشیا کے وزیر برائے امور خارجہ و امور یورپ نے ملاقات کی ہے. آج بروز ہفتہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عرب پارلیمنٹ اور عرب ممالک کی کونسلز و پارلیمان کے سربراہان کا 8th اجلاس منعقد ہوگا جس میں مجلس شورا کے اسپیکر کی قیادت میں مجلس شورا کا وفد شرکت کرے گا. خلیج کے عرب ممالک کی تعاون کونسل نے سلطنت عمان کی طرف سے بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن IMO کے ساتھ مل کر بحری جہازوں کے لیے ایک عارضی میری ٹائم کوریڈور کھولنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

0: hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों. 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है. और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है. मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं. आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है. FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए.
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
6: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में. हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए. अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं. हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं. माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है. इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं. तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे मोहम्मद सुलेमान के बारे में। मोहम्मद सुलेमान कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं कि कतर की खेल की तारीख के सबसे अजीम एथलीट्स में से एक हैं और कतरी एथलेटिक्स के असल पायनियर अगर कोई है तो मोहम्मद सुलेमान है। उनकी पैदाइश 23 सितंबर 1969 को हुई और बता दूं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों पायनियर है कतरी एथलेटिक्स में। उन्होंने 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में कतर के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतकर तारीख कायम। सो दैट्स द रीजन मोहम्मद सुलेमान इज सो इम्पॉर्टेंट इन कतरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री। मेंस 1500 मीटर दौड़ में मोहम्मद सुलेमान ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और कतर को पहली मर्तबा ओलंपिक मेडल टेबल पर जगह दिलाई। So that was occasion when Qatar पहली मरतबा ओलंपिक प्लेटफॉर्म में पहला अगर कोई मेडल लेके आया होगा तो यही बंदा था, इनका नाम है मोहम्मद सुलेमान। ओलंपिक कामयाबी से पहले भी सुलेमान एशिया के बेहतरीन मिडिल डिस्टेंस रनर्स में शुमार होते थे। उन्होंने एशियन गेम्स और

0: एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप समेत कई इलाकाई और काफी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के मुकाबलों में मेडल जीते। वो अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी, जबरदस्त स्टैमिना और दौड़ के आखिरी लम्हों में तेज रफ्तारी के लिए मशहूर थे। 1990 की दहाई में उन्होंने दुनिया के बेहतरीन रनर्स को सख्त मुकाबला दिया। मोहम्मद सुलेमान ने कई ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कतर की नुमाइंदगी की, जिससे गल्फ रीजन में एथलेटिक्स को फरोग मिला। उनकी कामयाबियों ने कतरी नौजवान एथलीट्स को इंस्पायर किया और साबित किया कि कतर दुनिया के बेहतरीन खेल मुकाबलों में मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, आज मोहम्मद सुलेमान को सिर्फ कतर का पहला ओलंपिक मेडल विनर नहीं, बल्कि मुल्क के खेलों की तरक्की की बुनियाद रखने वाले हीरो के तौर पर भी याद किया जाता है। उनकी विरासत आज भी कतर के लिए फख्र का बायस है और नए एथलीट्स को कामयाबी के लिए मोटिवेट करती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन्स के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम बात करेंगे कि ख्वातीन की जो सेहत है वो किस तरह से बरकरार रखी जा सकती है या उसमें जो बाकायदा तिबी मुआयना है उसकी अहमियत क्या हो सकती है। बहुत सी बीमारियां इब्तदाई मराहल में अलामत अपनी जाहिर नहीं करती, इसलिए बाकायदा जो मेडिकल चेकअप है वो बहुत अहम है। वक्त पर डायग्नोसिस बहुत सी बीमारियों के मौसर इलाज में मदद देती है। खवातीन को ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वजन की बाकायदगी से जो जांच है वो करवानी बेहद ज़रूरी है और ये इकदाम दिल की जो बीमारियां हैं और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचाव में मददगार साबित होते हैं। माँ बनने की उम्र में खवातीन के लिए हमल से पहले और दौरान हमल तिबी मशवरा और चेकअप इंतहाई ज़रूरी हैं। इससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत बेहतर रहती है। इसी तरह बोन्स की जो हेल्थ है या हड्डियों की सेहत पर तवज्जो देनी बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर गिज़ा और मुनासिब एक्सरसाइज बोन्स को मजबूत बनाने में मदद देती है। ख़वातीन को अपने जिस्म में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों पर भी नज़र रखनी है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए और बीमारी की जो बरवक्त तशखीस इलाज को आसान और मौसर बना देती है, तो इसके लिए आपने सालाना जो मेडिकल चेकअप है वो ज़रूर कराइए। ब्लड प्रेशर और शुगर के टेस्ट जो हैं वो रेगुलर करवाते रहिए। हड्डियों की सेहत का खास ख्याल रखिए। हमल के दौरान बाकायदा चेकअप करवाइए। किसी भी गैर मामूली अलामत को कभी भी नज़रअंदाज ना कीजिए। तो ख़वातीन, एहतियात इलाज से बेहतर है, अपनी सेहत को तरजीह दीजिए और बाकायदा तिबी मुआयने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। सेहतमंद ख़वातीन सेहतमंद मुआशरे की जमानत हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: FM 107 दिल से देसी।
4: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
5: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में।
6: MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में
5: वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
6: कुछ मिलेगा यहाँ।
5: और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट,
6: MOI वीकली अपडेट
5: आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर,
6: विद आरजे सरवर।
4: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद होने वाली खलीजी ताउन काउंसिल की सिक्योरिटी मीडिया विनेस टेक्निकल कमेटी के 12वें इजलास में रियासत कतर ने शिरकत की। वजारत दाखला के वफ्त की कयादत असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट कर्नल डॉक्टर जबर हमूद जबर अल नईमी ने की। इजलास के दौरान एजेंडा में शामिल मुख्तलिफ मौजूदात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरका ने सिक्योरिटी मीडिया के मैदान में GCC ममालिक के दरमियान राबते, हम आहंगी और मुश्तरका तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के तरीकों का जायजा लिया। इजलास के अख्तिताम पर कई अहम सिफारिश मंजूर की गईं, जिनका मकसद खलीजी ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी मीडिया कोऑर्डिनेशन को फरोग देना और मीडिया अवेयरनेस के मुश्तरका प्रोग्राम और पहलुओं को मजीद मुअस्सर बनाना है। ये इजलास सिक्योरिटी मीडिया के जरिए अवाम में शऊर उजागर करने और GCC ममालिक के दरमियान तजुर्बात और बेहतरीन अमल के तबादले को मजबूत बनाने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा था। ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। वज़ारत दाखला के अंडर सेक्रेटरी अब्दुल्लाह बिन खलफ बिन हत्ताब अल काबी ने मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दाखला के अंडर सेक्रेटरी मेजर जनरल स्टाफ खलीफा बिन हरीब अल खुबैली से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी तआवुन और हम आहंगी को मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद दोनों जानिब से रियासत कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमतों के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में तबादला की जाने वाली मालूमात और डेटा के तहफ्फुज़ से मुतालिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन को मुस्तहकम बनाना और सिक्योरिटी और रेगुलेटरी जरूरियात के दरमियान मुअस्सर तवाज़ुन कायम करना है। इस मौके पर दोनों बरादर ममालिक के वज़ारत दाखला के अंडर सेक्रेटरीज ने बायलेटरल ट्रैफिक सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड डिपोर्टी फिंगरप्रिंट एक्सचेंज सिस्टम प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। तकरीब में दोनों जानिब से सीनियर ऑफिसर्स और मुतालिक

0: और वाज़े पर्सनल फोटोग्राफ अपलोड करें। तमाम मालूमात अपलोड करने के बाद ज़ाती डेटा का एहतियात से जायजा लें और यकीन कर लें कि तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा करते ही अमल मुकम्मल हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए मुतालिक अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। ये डिजिटल खिदमात वीजा के इजरा के अमल को मजीद आसान, तेज और मौसर बनाती हैं और मुस्तफीद अफराद को घर या दफ्तर से ही अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करती हैं। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने में नए स्कैम्स हो रहे हैं, और इस तरह के स्कैम से बचना आसान नहीं है जब तक आप इन स्कैम्स के बारे में ना जानते हो। और इसीलिए FM 107 की पूरी कोशिश है कि आपको नए जमाने के नए स्कैम से या फ्रॉडस्टर्स से बचाए। दोस्तों, घरों में स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज, स्मार्ट लॉक्स और AI असिस्टेंट्स का यूज बहुत बढ़ गया है, और यहीं से शुरू होता है हाईजैकिंग फ्रॉड। हैकर्स आपके होम वाईफाई नेटवर्क के जरिए इन अनसिक्योर्ड स्मार्ट डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद वो आपके घर के अंदर की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्डिंग्स और पर्सनल फोटोज निकाल लेते हैं। फिर शुरू होता है एक्सटॉर्शन यानी ब्लैकमेलिंग का खेल, जहां आपसे डिजिटल करेंसी में बड़ी रकम मांगी जाती है, और पैसे ना देने पर आपकी प्राइवेट लाइफ को इंटरनेट पर लीक करने की धमकी दी जाती है। कुछ केसेस में तो क्रिमिनल्स स्मार्ट लॉक्स को लॉक करके लोगों को उनके ही घर में कैद कर देते हैं जब तक रैंसम ना मिले। इस सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड से बचने के लिए अपने हर स्मार्ट डिवाइस का डिफॉल्ट पासवर्ड बदलें और राउटर पर स्ट्रॉन्ग फायरवॉल लगाएं। 2026 में ये हैकर्स एडवांस्ड ऑटोमेटेड स्कैनर्स का यूज करते हैं जो वीक इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस को ऑटोमेटिक ढूंढ निकालते हैं, जिससे हर वो घर निशाने पर होता है जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन FM 107 आपको इसका सॉल्यूशन भी देता है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने स्मार्ट होम को सिक्योर रखने और इस एक्सटॉर्शन फ्रॉड से बचने के लिए आपको नेटवर्क सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला कदम ये है कि अपने वाईफाई राउटर का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड बदलकर एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाएं। अपने मेन इंटरनेट राउटर पर एक गेस्ट नेटवर्क बनाएं और अपने सारे स्मार्ट होम डिवाइसेस, कैमरा, लॉक्स, टीवीज को इसी गेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट करें। इससे अगर कोई हैकर किसी डिवाइस को हैक कर भी लेता है तो वो आपके मेन कंप्यूटर या मोबाइल फोन तक नहीं पहुंचेगा। जहां आपका फाइनेंशियल डेटा होता है, किसी भी स्मार्ट डिवाइस को खरीदते वक्त सिर्फ उन ब्रांड को चुनें जो रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स और फर्मवेयर पैचेस प्रोवाइड करती हैं। हर डिवाइस के डिफॉल्ट एक्सेस क्रेडेंशियल को सेटअप करते वक्त ही चेंज कर दें और उनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करें। दोस्तों, ये था नए जमाने के स्कैम से बचने का तरीका। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नए जमाने के नए स्कैम पर बात करते हुए। सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राब्ता करें.
3: आज ही राब्ता करें.
2: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और वाइब्रेंट और फेस्टिव एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी को पसंद होता है, यानी कि फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस और खुशियों के मौके। लेकिन इस बार हम इसे थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं साथियों। सोचिए ईद है या कोई नेशनल डे है या कोई बड़ा फेस्टिवल, घर डेकोरेट हो रहा है, लाइट्स लग रही हैं, बलून्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, प्लास्टिक डेकोरेशंस और गिफ्ट्स का सिलसिला चल रहा है। सब कुछ बहुत कलरफुल और एक्साइटिंग होता है ना फेस्टिव सीजन में। लेकिन फेस्टिवल के बाद जब डेकोरेशन उतारी जाती है तो एक बड़ा सा पाइल ऑफ वेस्ट नजर आता है। हमारे टोन बलून्स, प्लास्टिक रैप्स, लेफ्ट ओवर फूड एंड डिस्पोजेबल आइटम्स, और ये सब सिर्फ कुछ दिन की खुशी के बाद एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं साथियों। देखें, फेस्टिव्स का एनवायरनमेंटल इंपैक्ट अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। डेकोरेशंस, पैकेजिंग, फूड वेस्ट और एनर्जी यूजेज मिलकर एक सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सेलिब्रेशंस स्टॉप कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम स्मार्टर सेलिब्रेशंस क्रिएट करें। अब इको स्विच क्या है सिचुएशन में? भाई आइडिया बड़ा सिंपल सा है, फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली तरीके से सेलिब्रेट करना, मतलब खुशी भी हो और एनवायरनमेंट का ख्याल भी रखा जाए। सुनने में भी अच्छा लग रहा है ना। देखिए, अब बात करते हैं कि इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है साथियों, इसका मतलब होता है कि रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करना, फूड वेस्ट कम करना, प्लास्टिक से बचना और सस्टेनेबल चॉइसेस अडॉप्ट करना, यानी सेलिब्रेशंस का मजा भी रहे और वेस्ट भी मिनिमम हो। अच्छा, अब बात करते हैं कि इको फ्रेंडली फेस्टिवल से क्या फायदा होता है। भाई सबसे पहला फायदा है वेस्ट रिडक्शन। कम डिस्पोजेबल आइटम्स यूज होंगे तो कम लैंडफिल प्रेशर होगा। दूसरा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए भाई, प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम होने से पोल्यूशन रिड्यूस होता है ना। तीसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। देखिए, रीयूजेबल डेकोरेशंस और प्लान्ड शॉपिंग से अननेसेसरी खर्चा कम होता है, आपकी जेब ज्यादा भारी नहीं पड़ता जेब पे ही। चौथा फायदा है अवेयरनेस स्प्रेड होना। जब आप इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस करते हैं तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। साथियों, आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देती हूँ। जरा सोचिए, आप अपने घर में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स और बलून्स यूज करते हैं तो पार्टी के बाद एक बड़ा सा वेस्ट पाइल बन जाता है। लेकिन अगर आप रीयूजेबल प्लेट्स, क्लॉथ डेकोरेशंस और मिनिमल वेस्ट अप्रोच यूज करें तो सेलिब्रेशन सेम रहती है लेकिन क्लीन अप बहुत इजी हो जाता है। साथियों, दोहा जैसे सिटी में फेस्टिवल्स और कम्युनिटी इवेंट्स बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किए जा सकते हैं। यहाँ मॉल्स, पार्क्स और रेजिडेंशियल एरियाज में डेकोरेटिव सेटअप्स कॉमन है, जो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देती हूँ जो आप इजिली फॉलो कर सकते हैं। नंबर वन, रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करें। फैब्रिक बैनर्स हो गए, एलईडी लाइट्स हो गई और रीयूजेबल डेकोर आइटम्स प्रेफर करें। दूसरी चीज, प्लास्टिक से अवॉइड करें ना। डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी के बजाय रीयूजेबल आइटम्स कभी यूज करके देखें। नंबर थ्री पर आता है हमारे पास फूड प्लानिंग करें। देखें, एक्स्ट्रा खाना बनाने की बजाय एक्यूरेट एस्टिमेशन करें ताकि वेस्ट कम हो। नंबर फोर पर है गिफ्ट रैपिंग सिंपल रखें। न्यू प्लास्टिक रैपिंग के बजाय न्यूज़पेपर या क्लॉथ रैपिंग यूज करें। अच्छा, पांचवें नंबर पर हमारे पास आता है वेस्ट सेग्रीगेशन। देखिए, करना ये चाहिए कि फेस्टिवल के बाद वेस्ट को प्रॉपरली सेपरेट करके डिस्पोज करें। अच्छा, इसका एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताऊं आपको। दुनिया भर में अब ग्रीन सेलिब्रेशंस का ट्रेंड बढ़ रहा है, जहां लोग इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स को प्रमोट कर रहे हैं। कई इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स अब सस्टेनेबिलिटी को अपनी प्लानिंग का मेन पार्ट बना रहे हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं साथियों कि फेस्टिवल एक ही दिन का होता है, इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल में उस एक दिन का इम्पैक्ट कई दिनों तक एनवायरमेंट में भरा पड़ा रहता है। अब थोड़ा सा अगर बिहेवियर चेंज एंगल से देखें ना, तो भाई जब आप इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी सेलिब्रेशन स्टाइल को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं। आप सिर्फ एंजॉय नहीं करते बल्कि कॉन्शियसली सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई इसी नोट के साथ आज का इको स्विच सिंपल सा है, अपनी फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाएं। आज का चैलेंज ये है कि भाई आज या नेक्स्ट अपकमिंग सेलिब्रेशन में कम अज कम एक इको फ्रेंडली चेंज इंट्रोड्यूस करें, जैसे रीयूजेबल डेकोर या प्लास्टिक फ्री सेटअप। और अगर आप ऑलरेडी इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस कर रहे हैं तो किसी और को भी इंस्पायर करें भाई। साथियों, खुशी का मकसद सिर्फ एंजॉय करना नहीं होता बल्कि लम्हों को यादगार बनाना होता है। जब हम इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स क्रिएट करते हैं तो हम सिर्फ खुश नहीं होते बल्कि अपनी जमीन को भी खुश कर रहे होते हैं। इसी नोट के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का FM 107 पर, और हम आज एक बड़े ही खूबसूरत और शानदार सफर में चलने वाले हैं हमारे शो कतर ग्रीन बीट्स पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो हफ्ता अब तक चल रहा है ये बड़ा ही शानदार गुजर रहा होगा, और हमारे कतर की जो गर्मी है ना वो बढ़ती जा रही है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस गर्मी को इंजॉय करते हुए अपना ख्याल रखें। और अभी क्या करें, अभी अपने हाथ में कॉफी ले लें या फिर करक ले लें या फिर जूस ले लीजिए और थोड़ा रिलैक्स कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो सफर कतर ग्रीन बीट्स का हम शुरू करने वाले हैं, आपको इससे जुड़कर, इसमें रहकर हमारे साथ बड़ा मजा आएगा।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट। तो पिछले एपिसोड में हमने इको लग्जरी पर काफी गहरी बातचीत की। हमने देखा था कि कैसे कतर के बड़े बड़े होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 5-स्टार कंफर्ट के साथ हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, उसका भी ख्याल रख रहे हैं। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि लग्जरी और एनवायरमेंट दोनों हाथों हाथ चल रहे हैं। लेकिन आज का जो मिजाज है वो थोड़ा सा ना अलग होने वाला है। आज हम थोड़ा और करीब आने वाले हैं, हम बात करेंगे उस फैब्रिक की जो हमारी जिंदगी का एक अनोखा हिस्सा है। हम बात करेंगे उन लेबल्स की जो हमारी पहचान बनते हैं, और उन फैसलों की जो हम हर बार लेते हैं जब हम किसी मॉल के ड्रेसिंग रूम में खड़े होते हैं। सोचिए, जब हम कोई नया लिबास खरीदते हैं, कुछ नए कपड़े खरीदते हैं, तो क्या हम सिर्फ उसकी चमक धमक देखते हैं, या हम ये भी सोचते हैं कि वो आया कहाँ से होगा? फैशन का नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है बताएं? वही ग्लिटरी रनवेज, बड़े बड़े ब्रांड्स और हमारे मनपसंद मॉल्स में चलने वाले लेटेस्ट ट्रेंड्स, है ना? यही दिमाग में आता है ना? हम सबको स्टाइलिश दिखना बहुत पसंद है, लेकिन जनाब हमारे इस शौक के पीछे एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रही है, एक ऐसी क्रांति जो फास्ट फैशन की रफ्तार को थोड़ा कम करके हमारे प्लैनेट को तवज्जो दे रही है। जी, हम अक्सर फास्ट फैशन के चक्कर में ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं जो शायद 2-3 बार पहनने के बाद कचरे में चले जाते हैं, मगर अब वक्त बदल रहा है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे थ्रेडिंग द फ्यूचर, सस्टेनेबल फैशन एंड रिटेल की। आज हम इस पर गहरी चर्चा करेंगे कि कैसे कतर खर्च करो और फेंक दो वाली तहजीब को छोड़कर संभाल कर रखो और संवारो, यानी चेरिश एंड सस्टेन की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आपने कभी सोचा है कि जो पुराने धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, या जो प्लास्टिक बॉटल्स हम फेंक देते हैं, क्या उनसे हाई एंड आर्ट बन सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब

कि हम फैशन को भूल जाएं। इसका मतलब ये है कि हम अपने लिबास और नेचर के बीच एक बैलेंस बनाए रखें। कतर नेशनल विजन 2030 का भी यही

0: जो कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन है हर वो कपड़ा जो हम सोच समझ कर चुनते हैं हमारी अर्थ हमारी धरती के लिए एक तोहफा है तो जनाब मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट की सैर करेंगे हम स्केल 7 जैसे इंक्यूबेटर्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपका वार्डरोब ना सिर्फ फ्रेंडली दिखेगा बल्कि इको फ्रेंडली भी बन जाएगा आज हम सिर्फ कपड़ों की बात नहीं करेंगे हम उन कहानियों की बात करेंगे जो हर एक रेशम के धागे में छुपी है इट्स टाइम टू लुक बियॉन्ड द लेबल्स इट्स टाइम टू थ्रेड आवर बेटर फ्यूचर किसके लिए हमारी आने वाली जनरेशन के लिए तो आप कहीं ना जाएं बने रहें हमारे साथ सुनते हुए कतर ग्रीन बीट्स मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर मतलब सिंपल टिप्स कूल हैक्स इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर
0: कतर ग्रीन बीट वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ कतर ग्रीन बीट्स सुन रहे हैं आप तो आपको बता दूं कि आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पर या यूं कहें सब्जेक्ट पर सस्टेनेबल फैशन लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे सबसे पसंदीदा सेगमेंट का एंड व्हाट इज दैट द ग्रीन वायर सेगमेंट ये वो सेगमेंट है जहां हम आपको देते हैं हमारे शहर यानी कि हमारे कतर के वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हमारी जिंदगी और हमारे फैमिलीज या हमारे एनवायरमेंट को बेहतर बना रही है तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी अपडेट के साथ तो आपको पता है या फिर आपको मालूम है कि कतर ने अब ऑफिशियली रिटेल स्टोर्स में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है जी हाँ ये सिर्फ एक मशवरा नहीं था अब ये एक कानून भी है आपने शायद महसूस भी किया होगा कि जब आप पिछले कुछ दिनों में शॉपिंग के लिए गए होंगे अब वो पतले वाले प्लास्टिक बैग्स आपको नजर नहीं आते उनकी जगह अब हमें पेपर बैग्स वोवन बैग्स या बायोडिग्रेडेबल ऑप्शंस मिल रहे होते हैं तो जनाब ये एक बहुत बड़ा कदम है हम अक्सर सोचते हैं कि प्लास्टिक बैग से क्या होता है लेकिन सोचिए कतर में हर साल कितने मिलियंस बैग इस्तेमाल होते हैं

सिटीजन की पहचान होगी, क्योंकि मैंने भी ये करना काफी टाइम पहले शुरू कर दिया है। वैसे जनाब, ये सिर्फ प्लास्टिक बैग्स ही नहीं, हमारे कतर के बड़े बड़े मॉल्स और रिटेल जायंट्स ने एक और

यह मॉल ऑफ कतर है, वहाँ कई इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अब बड़े बड़े बिन्स रखे हैं जहाँ आप अपने पुराने कपड़े ड्रॉप कर सकते हैं। हम सब के पास ऐसे कपड़े होते ही हैं जो शायद अब हमें फिट नहीं आ रहे, या फिर हमारा मन उब गया है, अब हमको उनको नहीं पहनना है, और जिन्हें हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें घर के किसी कोने में फेंकने से अच्छा हम इस पर्टिकुलर बॉक्स में ड्रॉप कर दें। अब आप उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं, यस। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, जब आप अपने पुराने कपड़े इस बॉक्स में, इस बिन में डालते हैं, तो बहुत से ब्रांड्स आपको बदले में स्टोर डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। हाँ, यानी कि आपने अर्थ की, अपने एनवायरनमेंट की मदद की है।

बड़ा मतलब निकलता है कतर फैशन सिर्फ बढ़ नहीं रहा है फैशन अब हरा भरा भी हो रहा है यानी गोइंग ग्रीन हमें सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहना है कंज्यूमर वो होता है जो सिर्फ खरीदता है और इस्तेमाल करके फेंक देता है हमें बनना है कॉन्शियस क्यूरेटर्स कॉन्शियस यानी होशमंद जो जानता है कि उसका हर फैसले का असर क्या होगा और क्यूरेटर वो होता है जो अपनी चीजों को बहुत सोच समझ कर चुनता है और उनकी हिफाजत करता है तो जनाब अपने वार्डरोब को एक म्यूजियम की तरह देखिए वहाँ वही चीजें होनी चाहिए जो वाकई कीमती हो जो लंबे समय तक चले और जिन्हें पहनते वक्त आपको नाज हो आपको प्राइड फील हो वैसे वो कहते हैं ना कि सस्टेनेबिलिटी में सेंटिमेंट्स भी जुड़ जाते हैं सो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पर आई रिपीट द नंबर 666-22-107 पर वैसे जनाब यहाँ इस अपडेट की हमने बात की और एक सवाल है जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं जब मैं उनसे मिलती हूँ या सोशल मीडिया पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि फैशन और सस्टेनेबिलिटी ये दोनों साथ कैसे चल सकते हैं क्योंकि फैशन तो नए ट्रेंड्स के बारे में होता है हर महीने नई चीज़ें खरीदने के बारे में होता है तो यहाँ सस्टेनेबिलिटी की जगह कहाँ आती है वेल ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि हमारी नज़रों में फैशन का मतलब है चेंज लेकिन आज

नेचर की भी किस्मत को बदलने की कोशिश की है. वैसे आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, आपको बताना चाहूंगी कि जो फैशन इंडस्ट्री है उसका दुनिया में सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो है वाटर. हाँ, हम जो एक सिंपल कॉटन टी शर्ट पहनते हैं उसे बनाने में कितना पानी लगता होगा, कभी आपने सोचा? नहीं. वेल जनाब, एक सिंगल कॉटन टी शर्ट बनाने में ऑलमोस्ट 2700 लीटर्स पानी लगता है. जस्ट इमेजिन कि इतना पानी एक इंसान के 2 से 2.5 साल तक पीने के लिए काफी होता है. जस्ट इमेजिन इतना बड़ा सैक्रिफाइस सिर्फ एक टी शर्ट बनाने के लिए. और बात सिर्फ पानी की नहीं है जनाब, हर साल लाखों टन कपड़े लैंडफिल्स में फेंक दिए जाते हैं. फास्ट फैशन ने हमें एक ऐसी आदत डाल दी है कि हम सस्ता खरीदते हैं, 2 बार पहनते हैं और फिर भूल जाते हैं. लेकिन वो कपड़ा कभी खत्म नहीं होता, वो हमारे नेचर या यूं कहें हमारे एनवायरनमेंट, हमारी अर्थ पर एक बोझ बनकर रह जाता है.

फील कर रहे हो या सैड फील कर रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कतर इज चेंजिंग द नैरेटिव. हाँ जी, हम यहाँ सिर्फ पुराने तरीकों पर अफसोस नहीं कर रहे बल्कि हम नए रास्ते बना रहे हैं. अब कतर में हम सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, हम ट्रेंड्स सेट कर रहे हैं और वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. आज का कतर एक कॉन्शियस कतर है, मतलब ये तो आप और हम मानते हैं. हमारा जो नौजवान है, यूथ है, अब ये पूछते हैं कि ये कपड़ा कहाँ बना है. मतलब इस तरह के सवाल हमारी आज की जनरेशन पूछती है. हमने कभी ऐसे सवाल शायद अपने बचपने में या अपने यंग एज में पूछे ना हो. इसमें कौन सा रंग इस्तेमाल होता है, ये सारा नॉलेज आज की जनरेशन के पास होता है. मुशरफ डाउनटाउन से लेकर लुसेल की चमकती गलियों तक अब एक नई वाइब महसूस हो रही है. यस, लोग अब स्लो फैशन की कद्र कर रहे हैं. वो ऐसे ब्रांड ढूंढ रहे हैं जो हमारी धरती को नुकसान ना पहुंचाए. कतर ने दिखा दिया है कि लग्जरी और एनवायरमेंट दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में फिट हो सकते हैं.

जैसे प्लेटफॉर्म्स अब उन डिजाइनर्स को प्रमोट कर रहे हैं जो इको कॉन्शियस हैं, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स और रिसाइकल्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करके हाई फैशन क्रिएट करते हैं। ये देखकर बहुत प्राइड फील होती है कि हमारे लोकल डिजाइनर्स इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर ये कह सकते हैं कि हम सुंदर भी दिखेंगे और हम जिम्मेदार भी बनेंगे। ये एक तरह की तहजीब या कल्चर दोबारा लौट कर आ रहा है।

0: अबाउट क्वालिटी नॉट अबाउट क्वांटिटी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. और अब हम बात करेंगे ऐसी जगह की जो मेरे दिल के बहुत करीब है. ये हमारे शहर की क्रिएटिविटी की धड़कन है. मैं बात कर रही हूँ दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट की, एंड दैट इज मुशर्रफ डाउनटाउन. अगर आप कभी मुशर्रफ डाउनटाउन गए हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप गए होंगे, तो आप जानते होंगे कि वो जगह अपने आप में ही सस्टेनेबिलिटी की एक बेहतरीन मिसाल है. वहाँ की इमारतें, वहाँ का आर्किटेक्चर, सब कुछ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है. लेकिन मुशर्रफ के दिल में, यानी दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक बहुत ही अनोखा और स्पेशल कुछ हो रहा है. यस, वहाँ लोकल डिजाइनर्स अब फास्ट फैशन की अंधाधुन दौड़ को छोड़कर स्लो फैशन को गले लगा रहे हैं. स्लो फैशन का मतलब सिर्फ धीरे धीरे काम करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ईमानदारी से काम करना. वहाँ ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जो सदियों पुरानी वीविंग टेक्निक्स यानी बुनाई के तरीकों से बनते हैं. वहाँ ऐसे रंगों का इस्तेमाल होता है जिन्हें हम ऑर्गेनिक डाइज कहते हैं, यानी पेड़ पौधों से निकाले गए रंग जो हमारी स्किन और हमारी मिट्टी दोनों के लिए परफेक्टली सेफ है. और जनाब, सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि हम हमेशा प्लास्टिक बॉटल्स को कचरे में फेंक देते हैं, बट उनसे हाई एंड फैशन भी बन सकता है. जी हाँ, दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट में ऐसे डिजाइनर्स भी हैं जो रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल्स से बने फैब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. वो इन बॉटल्स को

ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे इंसानी दिमाग कचरे को भी एक आर्ट में बदल सकता है. लेकिन इस पूरे मूवमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, एक इंजन, और उस इंजन का नाम है स्केल 7. स्केल 7 कतर का सबसे पहला फैशन एंड डिजाइन इंक्यूबेटर है.

वैसे ही एक नए डिजाइनर को सही रास्ता दिखाने के लिए इस चीज की जरूरत है. स्केल सेवन हमारे कतर के ग्रीन स्टार्टअप्स को वो सारे टूल्स और मेंटरशिप देता है जो उन्हें चाहिए. ये उन्हें सिखाते हैं कि कैसे एक एथिकल विजन को एक कामयाब बिजनेस बनाया जा सकता है. उनका सबसे बड़ा फोकस है सर्कुलर फैशन. सर्कुलर फैशन का सीधा सा मतलब ये है कि कपड़े ऐसे बनाए जाएं जो लंबे वक्त तक चलें और जिन्हें आसानी से रिपेयर किया जा सके और जब उनका वक्त खत्म हो जाए तो उन्हें दोबारा रिसाइकल करके नया बनाया जा सके. तो आज हमारे कतर के डिजाइनर्स दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम जिम्मेदार भी हैं और स्टाइलिश भी. आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट्स. मैं हूं अमिता आपके साथ और मेरे सारे प्यारे लिसनर्स. आज का सफर हमारे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. यस, लेकिन अब वक्त है कुछ एक्शन का. अक्सर लोग सोचते हैं कि सस्टेनेबल बनना बहुत मुश्किल है. क्या मुझे नए कपड़े खरीदना छोड़ना चाहिए? ये सवाल एक्चुअली में बड़ा डिप्रेसिंग है. फैशन तो एक एक्सप्रेशन है. यस, इट्स एन आर्ट. सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम थोड़े और स्मार्टर बन जाएं. तो चलिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. तो 30 वेयर रूल, ये रूल क्या है? इट्स एक्चुअली अ गेम चेंजर. अगली बार जब आप किसी मॉल में जाएं या आपको कोई आउटफिट बहुत पसंद आए तो उसे

प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जवाब नहीं है कि आप सिर्फ एक पार्टी में पहनकर इसे साइड में रखने वाले हैं, वन टाइम आउटफिट है, तो मुझे लगता है कि आपको उस आउटफिट को नहीं खरीदना चाहिए। हमें फास्ट फैशन की दौड़ से निकलकर क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा लिबास चुनिए जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बने, जो बार बार पहनने पर भी पुराना ना लगे। और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी गाइस, इसका हमें ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज, बीट द ह्यूमिडिटी। हम सब जानते हैं कि कतर की गर्मी और ह्यूमिडिटी हमारे कपड़ों के लिए कितनी टफ हो सकती है। ह्यूमिडिटी की वजह से फैब्रिक्स जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। टू मेक योर क्लोथ्स लास्ट लॉन्ग

0: तो जनाब आज का जो ये हमारा खासम खास शो कतर ग्रीन बीट्स ये अब खत्म होने जा रहा है. यस, हमने इतनी बातें इतनी टिप्स आज डिस्कस की हैं. मुझे लगता है कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो पार्ट है एक बहुत बड़े सपने का, द कतर नेशनल विजन 2030, जो कि हमारे कतर के इस ख्वाब को पूरा करने जा रहा है, जहाँ पर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट पर पूरा पूरा फोकस किया जाएगा. वेल, कतर ग्रीन बीट्स का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FM 107 के जरिए या 666-22-107 के जरिए, और आप अपनी अमिता को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढ सकते हैं. अब अगले हफ्ते कतर ग्रीन बीट पर एक नए एपिसोड एक नए सब्जेक्ट के साथ आपकी मुझसे मुलाकात होगी. सो डोंट गो एनीवेयर, मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिए. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
3: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, डिसेबिलिटी वाली पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल ट्रैफिक का वायोलेशन और बेअदबी है। ट्रैफिक के कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना अमन और दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है। याद रखिए, डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं, उन्हें आसानी से अपने जरूरी

0: को अंजाम देने का मौका मिले। ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल उनके लिए अननेसेसरी मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन और अमन पसंद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें ताकि सबको बराबर के हुकूक मिल सकें और किसी को भी अपने हक से महरूम ना होना पड़े। FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: किसी वजह से लेट हो गया, फोन की घंटी बजी, भाई कहाँ हो? तो फौरन ये कह दिया जाता है, मैं रास्ते में हूँ, बस 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हालांकि वो अभी घर से निकला ही नहीं और उसके 10-15 मिनट एक घंटे के बराबर हो जाते हैं। मुशाहदे में आया है कि अक्सर लोग झूठ बोलने की आदि हैं और यही वजह है कि मुआशरे में तमाम बुराइयाँ मौजूद हैं। याद रखिए, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है और ये गुनाह कबीरा भी है, इससे बचने की कोशिश कीजिए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: FM 107।
1: दिल से देसी।
4: दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
2: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला

0: अहमियत रखते हैं, इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ, हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मूवमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुए और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशन, इंसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। दोस्तों, हजारों फैंस की गरज जो फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के दौरान सुनाई दी थी, आज भी मुल्क की गलियों और स्टेडियम में गूंज रही है। जबकि महीने गुजर गए हैं और मुकाबले खत्म हो चुके हैं, लेकिन कतर का फुटबॉल स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स से प्यार कोई नई बात नहीं बल्कि मुल्क की तारीख का एक बार बार दोहराया गया पहलू है। और आज हम आपको ले चलते हैं वापस उसी जगह पर जो कतर के पहले स्टेडियम की पहचान बना, यानी खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। ये वही जगह है जहां फुटबॉल का असली जज्बा शुरू हुआ था। सामईन, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कतर के खेलों की दुनिया में पहली बुनियाद की शक्ल भी है। 1976 में इस स्टेडियम का आगाज हुआ और उस वक्त ये मुल्क का सबसे बड़ा और मॉडर्न स्टेडियम माना जाता था। इसी जगह ने ना सिर्फ लोकल लीग्स और मैचेस देखे बल्कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की मेजबानी भी की। समाइन, फैंस के लिए ये स्टेडियम एक मरकजी नुक्ते की अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ उनके जज्बात, उनकी चीखें और उनके स्लोगन्स सब कुछ गूंजते हैं। दोस्तों, खलीफा स्टेडियम ने एशियन गेम्स 2006 का शानदार मंजर देखा, AFC एशियन कप के यादगार मैचेस देखे और आखिरकार वर्ल्ड कप 2022 के दौरान अपनी शान और बढ़ावा सबको दिखाया। इस स्टेडियम की सबसे खास बात उसका आर्किटेक्चर है, जहां हर सीट ऐसे डिजाइन की गई है कि फैन खुद को ग्राउंड के करीब महसूस करें। रात के वक्त इसकी फ्लड लाइट्स और इसकी शानदार छत यानी कैनोपी इसे एक नया रूप देती है, जहां जज्बात और रोशनियां मिलकर एक अनोखा मंजर बनाती हैं। दोस्तों, कतर की नई नस्ल के लिए खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ एक स्पोर्ट्स वेन्यू नहीं बल्कि उनकी हिस्ट्री, कल्चर और फुटबॉल से मोहब्बत का जिंदा निशान है। हर मैच जो यहाँ खेला गया, हर गोल जो यहाँ मारा गया और हर जीत जो यहाँ सेलिब्रेट हुई, सब मिलकर इस स्टेडियम को एक ऐसी दास्तां बना देते हैं जो हमेशा याद रहेगी। कहते हैं कि कतर में फुटबॉल का जुनून खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम से शुरू हुआ और फिर पूरे मुल्क के दिलो दिमाग में बस गया। दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि ऐसा निशान है जो कतर की स्पोर्ट्स हिस्ट्री, तरक्की और मुस्तकबिल की उम्मीदों को अपने अंदर समेटे हुए है। इस स्टेडियम के अंदर एक वर्सटाइल स्पोर्ट्स हॉल और 10,000 स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल एक बड़ा रिटेल एरिया भी है। यही वजह है कि 1970 से लेकर आज तक इसे कतर का प्रीमियर फुटबॉल वेन्यू माना जाता है।

AFC के अहम मैचेस, अरब कप की यादगार लम्हे और वर्ल्ड कप 2022 का शानदार दौर सब ने इस स्टेडियम की शान में इजाफा किया है। 1976 में जब स्टेडियम का फॉर्मली आगाज हुआ तो उस वक्त यहां सिर्फ 20,000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी थी, मगर 2010 में जब कतर ने वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी जीती तब स्टेडियम को नए दौर की जरूरियात के मुताबिक एक बड़े और मॉडर्न रूप में तब्दील करना जरूरी हो गया। 2014 में स्टेडियम की रेनोवेशन शुरू हुई जिसका प्रोजेक्ट मशहूर आर्किटेक्चरल फर्म दर अल हंदसा ने संभाला। रेनोवेशन के दौरान सिर्फ स्टैंड्स को ही अपग्रेड नहीं किया गया बल्कि कैपेसिटी को बढ़ाकर 45,000 से ज्यादा सीट्स तक ले जाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान फैंस की कंफर्ट पर दिया गया, एक इनोवेटिव कूलिंग सिस्टम और ऐसी रूफ कवरिंग जो स्टेडियम का 70% हिस्सा ढक लेती है डिजाइन में शामिल की गई। दोस्तों, 2017 में स्टेडियम दोबारा फॉर्मली ओपन हुआ और ये वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयार होने वाले सबसे पहले स्टेडियम्स में शुमार हुआ। ये सिर्फ एक तजदीद नहीं थी बल्कि कतर की टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की कमिटमेंट का सबूत था। डेवलपर्स ने हर स्टेज पर कटिंग एज सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस यूज की, डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन और फिर ऑपरेशन तक, ताकि स्टेडियम का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मिनिमम हो। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम आज भी एक मिसाल है कि कैसे रिवायात, तजुर्बा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलकर एक ऐसी जगह बना देते हैं जो ना सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए बल्कि मुल्क की कल्चर और इनोवेशन का मरकज बन जाता है। दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम ने ना सिर्फ कतर की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में एक अहम मकाम बनाया बल्कि दुनिया भर के स्टेडियम्स के लिए भी मिसाल कायम की है। ये दुनिया का पहला स्टेडियम है जिसे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असिस्टमेंट सिस्टम GSAS से 4-star रेटिंग मिली है, जो इस बात का सबूत है कि कतर ने एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी को खेल के साथ साथ बराबर अहमियत दी है। ये स्टेडियम अरब और एशियन फैंस के जज्बात का मरकज रहा है और आज भी ग्लोबल तौर पर इसकी पहचान एक नया रंग रखती है। भाई, यहाँ सेलिब्रेशंस भी हुए, कोरोनेशंस भी, और वो यादगार विक्ट्रीज भी जो फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। स्टेडियम ने कई बड़े फैंस की चीख पुकार सुनी जिनमें सबसे मशहूर एल क्लासिको फ्रेंडली मैच 2010 का था, अर्जेंटीना और ब्राजील के दरमियान। इस मैच का मंजर लाजवाब था जब अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया और फैंस की चीखों से स्टेडियम गूंज उठा। दोस्तों, खलीफा स्टेडियम की शान उसकी दो शानदार आर्च हैं जो दूर से ही इसे पहचान देती हैं। साथ ही साथ इसमें लगाया गया इनोवेटिव कूलिंग सिस्टम टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ताकि फैंस और प्लेयर्स दोनों हर वक्त बेहतरीन तजुर्बा महसूस कर सकें। ये स्टेडियम सिर्फ एक ग्राउंड नहीं बल्कि एस्पायर जोन का दिल है, जहां एस्पायर एकेडमी फॉर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस, हमद एक्वाटिक कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, स्पोर्ट्स मेडिसिन हॉस्पिटल और दूसरे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज शामिल हैं। ये तमाम चीजें मिलकर इस एरिया को एक पूरा स्पोर्ट्स सिटी बना देती हैं। 2017 में दोबारा रीओपनिंग के बाद खलीफा स्टेडियम ने अपनी पहचान और बढ़ावा और मजबूत किया। स्टेडियम एक शॉर्ट पेडेस्ट्रियन वॉकवे के जरिए 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट म्यूजियम से भी कनेक्टेड है। ये कनेक्शन इस बात की निशानी है कि खलीफा स्टेडियम सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो अपनी रोशन तारीख और मुस्तकबिल की चमक दोनों को एक साथ जिंदा करती है। तो दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की एक और खास पहचान उसकी कैपेसिटी और खूबसूरत नेचुरल टर्फ है। ये स्टेडियम तकरीबन 40,000 फैंस को समेट सकता है और इसमें लगाया गया टर्फ पूरी तरह नेचुरल है, जो कतर के गर्म मौसम को बर्दाश्त करने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखता है। यह हाइब्रिड टर्फ है, एक ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप हुआ और दूसरा यहीं कतर में लोकल तौर पर तैयार किया गया है।
इस टर्फ को स्टेडियम में लगाने से पहले एस्पायर जोन फाउंडेशन की टर्फ नर्सरी में 9 महीने तक उगाया गया, जब तक ये 14 mm की आइडल लेंथ तक नहीं पहुंच गया। उस वक्त इसे स्टेडियम में ट्रांसफर और इंस्टॉल करने का प्रोसेस शुरू हुआ। स्टेडियम का टोटल फ्लोर एरिया 7,448 स्क्वायर मीटर्स है, जो टर्फ के लिए एक बड़ा और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। समीन खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम ने सिर्फ लोकल स्पोर्टिंग इवेंट्स और खास ओकेशन ही होस्ट नहीं किए, बल्कि ये वही स्टेडियम था जहां से कतर ने अपनी रेडीनेस वर्ल्ड कप 2022 होस्ट करने के लिए ऑफिशियली अनाउंस की थी। एक और लाजवाब रिकॉर्ड भी खलीफा के नाम है, और वो ये कि वर्ल्ड रिकॉर्ड रीटर्फिंग इसी के नाम है। जहां यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक रीटर्फिंग 18 घंटे में होती है, खलीफा स्टेडियम ने ये काम सिर्फ 13.5 घंटे में मुकम्मल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस प्रोजेक्ट में 80 से ज्यादा मशीन्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हुआ, और नर्सरी जो स्टेडियम से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां से 8,250 स्क्वायर मीटर्स नेचुरल ग्रास ट्रांसपोर्ट की गई। फिर इसे स्टेडियम में 90 से ज्यादा वर्कर्स और एम्प्लॉइज ने मिलकर इंस्टॉल किया। ये प्रोसेस 16 अप्रैल 2017 को सुबह 5 बजे शुरू हुआ और रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट कर दिया गया। साथ ही स्टेडियम के आसपास के इलाके में सालों के दौरान नई बिल्डिंग

बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज का इजाफा हो गया, जो आज एस्पायर जोन के नाम से जाना जाता है। ये एरिया अब एक पूरा सेंटर ऑफ स्पोर्ट एक्सीलेंस बन चुका है, जहां से सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्पोर्ट्स इनोवेशन और एक्सीलेंस की मिसाल कायम होती है। तो ख्वातीनों हजरात, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की एक और बड़ी खसूसियत उसका लोकेशन है। ये स्टेडियम एक ऐसे इलाके में वाकई है जहां सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के तमाम पहलू एक साथ मिलते हैं। एस्पायर जोन के दिल में बसाया गया ये स्टेडियम आसपास के स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का हिस्सा है, जो इसे एक मुकम्मल स्पोर्ट हब बना देती है। भाई, फैंस के लिए इस स्टेडियम तक पहुंचना बहुत आसान है। एक तरफ आपको यहां के मशहूर और बड़े शॉपिंग मॉल्स मिलते हैं, जो स्टेडियम के करीब ही वाके हैं। दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन की करीबी ने इसे सबसे एक्सेसिबल स्टेडियम्स में शामिल कर दिया है। चाहे कोई लोकल फैन हो या इंटरनेशनल विजिटर, सबके लिए ये जगह एकदम कन्वीनियंट है। ये लोकेशन ना सिर्फ मैच डे एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाती है बल्कि फैंस के लिए एक पूरा दिन का सफर तैयार करती है, जहां वो शॉपिंग कर सकें, रेस्टोरेंट्स का लुत्फ उठा सकें और फिर स्टेडियम में अपनी टीम के लिए चेयर कर सकें। इस तरह खलीफा स्टेडियम सिर्फ एक स्पोर्टिंग वेन्यू नहीं बल्कि एक कम्युनिटी और लाइफ स्टाइल सेंटर भी बन गया है। दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की कहानी असल में कतर की स्पोर्ट्स की कहानी है। ये वो मकाम है जहां मुल्क के सबसे यादगार और दिल को छू लेने वाले लम्हे लिखे गए हैं। 2011 में जब AFC एशियन कप हुआ तो इस स्टेडियम ने 6 जबरदस्त मैचेस की मेजबानी की, जिसमें फाइनल मैच भी शामिल था। ये लम्हा कतर के फैंस के लिए एक बड़ी यादगार था क्योंकि पूरे एशिया की नजरें इसी ग्राउंड पर थीं। फिर 2017 में जब रेनोवेशन के बाद स्टेडियम दोबारा खोला गया तो सबसे पहला बड़ा इवेंट था अमीर कप का फाइनल। फैंस की चीख पुकार और सेलिब्रेशन ने स्टेडियम को दोबारा से जिंदा कर दिया। वहीं 2021 में खलीफा स्टेडियम ने फिर अपना रंग दिखाया जब ये अरब कप का हिस्सा बना और दोबारा एक एक्साइटिंग फाइनल का मरकज रहा। और फिर आया वो दौर जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, वर्ल्ड कप 2022। खलीफा स्टेडियम ने न सिर्फ मैचेस होस्ट किए बल्कि अपनी शान के साथ पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया। यहां 8 मैचेस हुए जिसमें एक अहम थर्ड प्लेस प्लेऑफ भी शामिल था। लेकिन दोस्तों, ये स्टेडियम सिर्फ फुटबॉल तक ही महदूद नहीं, इस स्टेडियम की एक बहुत ही रोशन और बड़े लेवल की एथलेटिक हिस्ट्री भी है। यहाँ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी होस्ट हुई और हर साल का मशहूर दोहा डायमंड लीग इवेंट भी इस स्टेडियम की शान है। यानी खलीफा स्टेडियम असल में एक ऐसा मंजर पेश करता है जहां फुटबॉल और एथलेटिक्स दोनों ही अपने इंतहा पर नजर आते हैं। ये स्टेडियम हर मैच, हर रेस और हर इवेंट के साथ अपने अंदर एक नई दास्तान लिखता रहा है। ख्वातीनों हजरात, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की पहचान उसके आर्क्स हैं। पहले एक शानदार आर्क स्टेडियम की शान हुआ करती थी, लेकिन रेनोवेशन के दौरान इसे ना सिर्फ रिप्लेस किया गया बल्कि एक दूसरी आर्क से कॉम्प्लीमेंट भी किया गया। आज दोनों आर्क्स मिलकर इस स्टेडियम की असली शान और नेशनल आइडेंटिटी बन गए हैं। 1976 से लेकर आज तक खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम को कतर का नेशनल स्टेडियम माना जाता है। ये सिर्फ एक ग्राउंड नहीं बल्कि एक निशान है जो मुल्क के स्पोर्ट्स के सफर, उनके जज्बात और उनकी रूहानियत को जिंदा करता है। हर जनरेशन के फैंस ने यहाँ अपनी चीख पुकार छोड़ी है और ये स्टेडियम उन सब का गवाह है। दोस्तों, इस स्टेडियम का हिस्टोरिक रिवैम्प भी अपनी जगह बहुत खास है, जो आर्किटेक्ट दारल हंदसा ने 1970 में असल स्टेडियम डिजाइन किया था। वही फर्म ने दोबारा इसे नए दौर के लिए तैयार किया

0: वक्त के साथ और बढ़ता रहेगा। खलीफा स्टेडियम अपने आर्ट्स, अपनी हिस्ट्री और अपनी शान के साथ इस सफर का हमेशा मरकज रहेगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी पहली चीज होनी चाहिए जो आप कतर में देखना चाहेंगे, या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो को एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे, जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज। तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट से साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।

0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now।
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदाम आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि ख्वातीन की जो सेहत है वो किस तरह से बरकरार रखी जा सकती है या उसमें जो बाकायदा तिबी मुआयना है उसकी अहमियत क्या हो सकती है। बहुत सी बीमारियां इब्तदाई मराहल में अलामत अपनी जाहिर नहीं करती, इसलिए बाकायदा जो मेडिकल चेकअप है वो बहुत अहम है। वक्त पर डायग्नोसिस बहुत सी बीमारियों के मौसर इलाज में मदद देती है। ख्वातीन को ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वजन की बाकायदगी से जो जांच है वो करवानी बेहद ज़रूरी है और ये इकदाम दिल की जो बीमारियां हैं और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचाव में मददगार साबित होते हैं। माँ बनने की उम्र में ख्वातीन के लिए हमल से पहले और दौरान हमल तिबी मशवरा और चेकअप इंतहाई ज़रूरी हैं। इससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत बेहतर रहती है। इसी तरह बोन्स की जो हेल्थ है या हड्डियों की सेहत पर तवज्जो देनी बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर गिज़ा और मुनासिब एक्सरसाइज बोन्स को मजबूत बनाने में मदद देती है। ख्वातीन को अपने जिस्म में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों पर भी नज़र रखनी है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए और बीमारी की जो बरवक्त तशखीस इलाज को आसान और मौसर बना देती है, तो इसके लिए आपने सालाना जो मेडिकल चेकअप है वो ज़रूर कराइए। ब्लड प्रेशर और शुगर के टेस्ट जो हैं वो रेगुलर करवाते रहिए। हड्डियों की सेहत का खास ख्याल रखिए। हमल के दौरान बाकायदा चेकअप करवाइए। किसी भी गैर मामूली अलामत को कभी भी नज़रअंदाज ना कीजिए। तो ख्वातीन, एहतियात इलाज से बेहतर है, अपनी सेहत को तरजीह दीजिए और बाकायदा तिबी मुआयने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। सेहतमंद ख्वातीन सेहतमंद मुआशरे की जमानत हैं।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुशगवार और सेव आउटिंग्स को यकीनी बनाता है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी मुसलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाज़त दें। गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए। उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं FM 107, शो है द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे भावेश खान। हर हफ्ते इस शो में आपके लिए एक नए पैगंबर के बारे में, एक नए नबी के बारे में, उनकी जिंदगी के जो हालात हैं वो हम लेकर आते हैं। उन हालात और वाकयात से हमें क्या सीखने को मिल सकता है आज की दुनिया में, ये हम समझने की कोशिश भी करते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं आज के शो की और ये मैं आपको बताती चलूं कि आज हम बात करने वाले हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के असीम तरीन पैगंबरों में से एक हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में बार बार आया है। आपका जिक्र ना सिर्फ इस्लामी तारीख में है बल्कि यहूदी और ईसाई तारीख में भी एक अहम मकाम रखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त के लकब से याद किया जाता है, जो इस बात की हमाजी करता है कि आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक बहुत ही गहरा और ख़ास था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम ईमान, तौहीद और अल्लाह की इबादत का पैगाम था और आपकी ज़िंदगी के वाकयात उम्मत-ए-मुस्लिमा के लिए रहनुमाई का बाइस है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कदीम इराक के शहर उर से था। ये शहर उस वक्त के अजीम तमद्दनों में से यानी सिविलाइजेशंस में से एक था और यहाँ की कौम बुतों की इबादत करती थी। उस शहर में रहने वाली कौम ने मुख्तलिफ देवताओं को अपनी इबादत का मरकज़ बना रखा था और उनके मजहबी अकायद में बुतों

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर हम ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी और एक इंतहाई अहम शख्सियत थी। हज़रत सारा का ताल्लुक एक बहुत ही आला मकाम ख़ानदान से था। आपकी शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत कम उम्र में हुई। हज़रत सारा एक बहुत ही नेक और परहेजगार खातून थी और अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत सारा का सबसे बड़ा और मशहूर वाक़या ये है कि जब वो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे तो हज़रत सारा ने अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा रखते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि वो अल्लाह के हुक्म से दूसरी शादी यानी दूसरी बीवी अख्तियार करें ताकि उनकी औलाद हो। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का ये फैसला इंतहाई सब्र और अल्लाह की रजा की जस्तजू की अलामत था। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी थी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मिस्र के एक बहुत शरीफ खानदान से था। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे अहम वाकया वो था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के के बयामा में छोड़ दिया। हज़रत हाजरा का ईमान और अल्लाह पे भरोसा बेमिसाल था। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस कदर सब्र का मुजाहरा किया कि जब उनके पास खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गईं और पानी भी ना बचा तब भी वो अल्लाह की मदद पे भरोसा करती रहीं। ये वाक़िया सफ़ा और मरवा के दरमियान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की दौड़ की शक्ल में मशहूर है जिसे मुसलमान हर साल हज के दौरान याद करते हैं। हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम वाक़िया उस वक्त पेश आया जब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से खुशखबरी दी गई कि वो एक बेटे की माँ बनेंगी। ये खबर हज़रत सारा के लिए बहुत खुशी का बाइस बनी क्योंकि वो उम्र भर औलाद की आरज़ू में मुब्तला थी और अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से ये नेमत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विरासत बहुत ही अहमियत की हामिल है जो ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी और ईसाई मज़ाहिब के

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और वाइब्रेंट और फेस्टिव एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी को पसंद होता है, यानी कि फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस और खुशियों के मौके। लेकिन इस बार हम इसे थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं साथियों। सोचिए, ईद है या कोई नेशनल डे है या कोई बड़ा फेस्टिवल, घर डेकोरेट हो रहा है, लाइट्स लग रही हैं, बलून्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, प्लास्टिक डेकोरेशंस और गिफ्ट्स का सिलसिला चल रहा है। सब कुछ बहुत कलरफुल और एक्साइटिंग होता है ना फेस्टिव सीजन में। लेकिन फेस्टिवल के बाद जब डेकोरेशन उतारी जाती है तो एक बड़ा सा पाइल ऑफ वेस्ट नजर आता है। हमारे टोन बलून्स, प्लास्टिक रैप्स, लेफ्ट ओवर फूड एंड डिस्पोजेबल आइटम्स, और ये सब सिर्फ कुछ दिन की खुशी के बाद एनवायरमेंट का हिस्सा बन जाता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं साथियों। देखिए, फेस्टिव्स का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। डेकोरेशंस, पैकेजिंग, फूड वेस्ट और एनर्जी यूजेज मिलकर एक सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सेलिब्रेशंस स्टॉप कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम स्मार्टर सेलिब्रेशंस क्रिएट करें। अब इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में? भाई, आइडिया बड़ा सिंपल सा है, फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली तरीके से सेलिब्रेट करना। मतलब खुशी भी हो और एनवायरमेंट का ख्याल भी रखा जाए। सुनने में भी अच्छा लग रहा है ना। देखिए, अब बात करते हैं कि इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है साथियों, इसका मतलब होता है कि रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करना, फूड वेस्ट कम करना, प्लास्टिक से बचना और सस्टेनेबल चॉइसेस अडॉप्ट करना। यानी सेलिब्रेशंस का मजा भी रहे और वेस्ट भी मिनिमम हो। अच्छा, अब बात करते हैं कि इको फ्रेंडली फेस्टिवल से क्या फायदा होता है। भाई, सबसे पहला फायदा है वेस्ट रिडक्शन। कम डिस्पोजेबल आइटम्स यूज होंगे तो कम लैंडफिल प्रेशर होगा। दूसरा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए, हमें प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम होने से पोल्यूशन रिड्यूस होता है ना। तीसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। देखिए, रीयूजेबल डेकोरेशंस और प्लान्ड शॉपिंग से अननेसेसरी खर्चा कम होता है, आपकी जेब ज्यादा भारी नहीं पड़ता जेब पे ये। चौथा फायदा है अवेयरनेस स्प्रेड होना। जब आप इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस करते हैं तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। साथियों, आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देती हूँ। जरा सोचिए, आप अपने घर में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स और बलून्स यूज करते हैं तो पार्टी के बाद एक बड़ा सा वेस्ट पाइल बन जाता है। लेकिन अगर आप रीयूजेबल प्लेट्स, क्लॉथ डेकोरेशंस और मिनिमल वेस्ट अप्रोच यूज करें तो सेलिब्रेशन सेम रहती है लेकिन क्लीन अप बहुत इजी हो जाता है। साथियों, दोहा जैसे सिटी में फेस्टिवल्स और कम्युनिटी इवेंट्स बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किए जा सकते हैं। यहाँ मॉल्स, पार्क्स और रेजिडेंशियल एरियाज में डेकोरेटिव सेटअप्स कॉमन है, जो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी

0: अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देती हूँ जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। नंबर वन, रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करें। फैब्रिक बैनर्स हो गए, एलईडी लाइट्स हो गई, और रीयूजेबल डेकोर आइटम्स प्रेफर करें। दूसरी चीज, प्लास्टिक से अवॉइड करें ना। डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी के बजाय रीयूजेबल आइटम्स कभी यूज करके देखें। नंबर थ्री पर आता है हमारे पास, फूड प्लानिंग करें। देखें, एक्स्ट्रा खाना बनाने की बजाय एक्यूरेट एस्टिमेशन करें ताकि वेस्ट कम हो। नंबर फोर पर है, गिफ्ट रैपिंग सिंपल रखें। न्यू प्लास्टिक रैपिंग के बजाय न्यूज़पेपर या क्लॉथ रैपिंग यूज करें। अच्छा, पांचवें नंबर पर हमारे पास आता है, वेस्ट सेग्रीगेशन। देखिए, करना ये चाहिए कि फेस्टिवल के बाद वेस्ट को प्रॉपरली सेपरेट करके डिस्पोज करें। अच्छा, इसका एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताऊं आपको। दुनिया भर में अब ग्रीन सेलिब्रेशंस का ट्रेंड बढ़ रहा है, जहां लोग इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स को प्रमोट कर रहे हैं। कई इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स अब सस्टेनेबिलिटी को अपनी प्लानिंग का मेन पार्ट बना रहे हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं साथियों कि फेस्टिवल एक ही दिन का होता है, इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल में उस एक दिन का इम्पैक्ट कई दिनों तक एनवायरमेंट में भरा पड़ा रहता है। अब थोड़ा सा अगर बिहेवियर चेंज एंगल से देखें ना, तो भाई जब आप इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी सेलिब्रेशन स्टाइल को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं। आप सिर्फ एंजॉय नहीं करते बल्कि कॉन्शियसली सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई इसी नोट के साथ आज का इको स्विच सिंपल सा है, अपनी फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाएं। आज का चैलेंज ये है कि भाई आज या नेक्स्ट अपकमिंग सेलिब्रेशन में कम से कम एक इको फ्रेंडली चेंज इंट्रोड्यूस करें, जैसे रीयूजेबल डेकोर या प्लास्टिक फ्री सेटअप। और अगर आप ऑलरेडी इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस कर रहे हैं तो किसी और को भी इंस्पायर करें भाई। साथियों, खुशी का मकसद सिर्फ एंजॉय करना नहीं होता बल्कि लम्हों को यादगार बनाना होता है। जब हम इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स क्रिएट करते हैं तो हम सिर्फ खुश नहीं होते बल्कि अपनी जमीन को भी खुश कर रहे होते हैं। इसी नोट के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे सफाई की अहमियत के बारे में। सफाई इस्लाम की बुनियादी तालीमात का हिस्सा है। ये सिर्फ ज़ाहिरी सफाई तक महदूद नहीं बल्कि एक अंदरूनी पाकीज़गी को भी शामिल करती है। एक साफ सुथरा इंसान ना सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाता है बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी अच्छा असर डालता है। सफाई का मतलब है कि हम अपने जिस्म, कपड़ों, घर और इन्वायरमेंट को पाक रखें, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने दिलों को भी साफ रखें, जहाँ नफरत, हसद और बुराई के जज्बात ना हों। अक्सर लोग सफाई को सिर्फ एक रूटीन का काम समझते हैं, लेकिन असल में ये इबादत का हिस्सा है। जब हम सफाई का ख्याल रखते हैं तो हम एक बेहतर सोसाइटी बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। आज का अमल ये है कि अपने आस पास किसी एक जगह की सफाई ज़रूर करें और इसे अपनी रोजाना की आदत बना लें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
3: नूर على نور يهدي الله لنوره من يشاء।
4: रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ।

0: जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: इंसानों के मसले मसाइल और रोजमर्रा के मामलात पर रोशनी के लिए सुनते रहिए नूरे इस्लाम
2: हर जुमा शाम 4 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107।
6: FM 107।
4: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
7: One step to 2030.
8: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी host Nazia.
7: One Step to 2030.
8: आज मैं बात करने वाली हूँ रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन की। देखिए, रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D इनोवेशन के हार्ट हैं, दिल। जैसे अगर दिल रुक जाए धड़कना तो फिर तो हमारा जीना मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि जो नए आइडियाज डेवलप करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट करना है और एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, ये सारा काम R&D के तहत ही किया जाता है। कतर का नेशनल विजन 2030 का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है कि कतर नॉलेज बेस्ड और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाए। इस पर हमने बात भी की। और R&D की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी कॉम्पिटिशन पर चलती है। जो कंट्रीज और कंपनीज इनोवेशन करती हैं वही मार्केट में लीड करती हैं। तो R&D के जरिए न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप की जाती हैं जो बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बनाती हैं। R&D इकोनॉमी को मल्टीपल वेज में बेनिफिट करता है, फिर चाहे प्रोडक्टिविटी हो, चाहे जॉब्स क्रिएट करना हो या फिर न्यू इंडस्ट्रीज को डेवलप करना हो। जब इनोवेशन होती है तो न्यू मार्केट्स क्रिएट होती हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल होती है। कतर रिसर्च सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज और इनोवेशन प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट लगातार कर रहा है और ये स्टेप फ्यूचर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी सेक्टर में R&D का रोल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्च और इनोवेशन फ्यूचर की गारंटी होती है। जो कंट्रीज R&D में इन्वेस्ट करती हैं, मेरा मतलब है जो कंट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन में इन्वेस्ट करती हैं वो सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करती हैं। देखिए, कतर का नेशनल विजन जो है 2030 वो सिर्फ गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी का एक शेयर्ड विजन है। जब गवर्नमेंट, बिजनेस और सिटीजन एक ही गोल के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, प्राइवेट सेक्टर जॉब और इनोवेशन लाते हैं और सोसाइटी वैल्यूज और कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सपोर्ट इसी टीम वर्क की मिसाल है। विजन 2030 का ये फोकस कतर को एक नॉलेज ड्रिवन और फ्यूचर रेडी नेशन बनाता है और इस मुल्क के साथ हमारी ढेरों दुआएं हैं। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
7: One step to 2030.
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019 जिसके

0: मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर 1,00,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।
3: अल्लाहु अकबर।

दोस्तों, प्रोग्राम के शुरुआत में यहाँ कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के एपिसोड में डिस्कस होंगे. चलिए एक दफा उन्हें ब्रश अप कर लेते हैं. सबसे पहले है सेविंग रेट. नेशनल के हिसाब से ये वो एवरेज परसेंटेज है जो हाउसहोल्ड्स अपनी इनकम का सेव करते हैं. इम्पैक्ट क्या होता है इसका आपके ऊपर, ये दिखाता है कि आपके आसपास लोग पैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं और ये सिग्नल देता है कि इकोनॉमी कितनी स्टेबल है. प्लानिंग टिप्स के हिसाब से कोशिश करें कि एवरेज से एज निकाल कर अपनी इनकम का कम से कम 20% सेव करें. दूसरे नंबर पर है पेंशन या रिटायरमेंट फंड रिटर्न्स. ये नेशनल रिटायरमेंट या पेंशन स्कीम का एवरेज रिटर्न दिखाता है. इम्पैक्ट क्या होता है इसका, ये तय करता है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी फ्यूचर इनकम कितनी होगी. प्लानिंग टिप ये कि अगर नेशनल पेंशन रिटर्न्स लो हैं तो अपना खुद का रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान शुरू करें, जैसे 401k, IRA या प्राइवेट पेंशन. और नंबर 3 पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, इसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं. ये एवरीडे आइटम्स जैसे फूड, फ्यूल और रेंट की प्राइसेस में चेंजेस को ट्रैक करता है. इम्पैक्ट क्या है, CPI बढ़ने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है. प्लानिंग टिप, अपने हाउसहोल्ड बजट को हर साल एडजस्ट करें ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज का असर मैनेज हो सके. तो चलिए दोस्तों, अब जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है क्या आखिर. भाई, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करना जो आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद करे, उसी को ही कहते हैं. ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कंसीडर करता है और गाइडेंस देता है कि कैसे आप छोटे शॉर्ट टर्म टारगेट्स के साथ साथ बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीव कर सकते हैं. आप अपना फाइनेंशियल प्लान खुद बना सकते हैं या फिर एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के साथ काम कर सकते हैं. एक एक्सपर्ट प्लानर के पास वो नॉलेज और वक्त होता है जो फाइनेंसेस के मुख्तलिफ पहलुओं को एक प्लान में इंटीग्रेट कर सके, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सके और आपको अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट प्रोग्रेस में हेल्प कर सके. तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पोर्टेंट क्यों है. भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको आपके गोल्स आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है. ये आपको एक कंप्लीट तस्वीर देता है कि आप फाइनेंशियल तौर पर कहां खड़े हैं और कौन से चेंजेस करने की जरूरत है ताकि आपके गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ सकें. जैसे कौन से अकाउंट टाइप्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपकी पर्सनल सिचुएशन के लिए सुटेबल हैं, और इस इन्वेस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस जैसे कंपाउंडिंग पोटेंशियल रिटर्न्स वक्त के साथ रियलाइज होते हैं. इसलिए एक प्लान बनाना और जल्दी शुरू करना उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं. तो दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ. आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा. जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107.

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों फाइनेंशियल प्लान आपकी कमजोरियों को भी अनकवर कर सकता है, जैसे इमरजेंसी सेविंग का कम होना या अंडर इंश्योरेंस। ये आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के डिसीजन के साथ कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करने में भी मदद करता है, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। इसीलिए फाइनेंशियल प्लान हर एज और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ओल्डर या वेल्दी लोगों के लिए ही नहीं। याद रखें कि फाइनेंशियल प्लान एक सेटेड एंड फॉरगेटेड एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपके सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पर एक सिंगल पर्सन के गोल्स अलग हो सकते हैं एक मैरिड कपल से, भाई जो बच्चों के साथ हैं। तो आइए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पे, जो खास तौर पे आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जो हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने में मदद भी करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग एक बोर्ड टर्म है जो मुख्तलिफ टेक्निक्स और गोल्स कवर करता है। ज्यादातर फाइनेंशियल प्लान्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को इंक्लूड करते हैं ताकि एक होलिस्टिक व्यू मिले और ये कुछ या सब एस्पेक्ट्स को एड्रेस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर आता है कैश फ्लो एनालिसिस का। इससे आप बजटिंग के तौर पर सोच सकते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस आपको ये समझाने में मदद करता है कि हर महीने आपके पास कितनी इनकम आ रही है और आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो होना जरूरी है ताकि आप डेट को पे डाउन कर सकें, इमरजेंसी सेविंग्स बिल्ड कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें। कैश फ्लो की डिटेल्स में जाकर आप कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं कि पैसा कहां जा रहा है और किन एरियाज को ट्रिम या कंप्लीटली कट किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है जनाब डेट मैनेजमेंट। जब आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेट रीपेमेंट्स होती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टूडेंट लोन्स और मॉर्गेज, तो ये मुश्किल हो सकता है डिसाइड करना कि पहले किस डेट को रीपे करें। भाई डेट मैनेजमेंट फोकस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि इंटरेस्ट पेमेंट को कैसे कम करें, अपने डेट्स को रीपे करने की स्ट्रेटेजीज जो आपके लिए बेस्ट हों, साथ ही आप अपने दूसरे फाइनेंशियल गोल्स और बजटिंग डिमांड्स को भी ट्रैक पर रखें। इस तरह फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए एक रोड मैप बनाता है जो पैसे मैनेज करने, डेट कंट्रोल करने और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में गाइड करता है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमें अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करनी चाहिए, लेकिन ये सवाल कि कितना सेव करें और किस अकाउंट में सेव करें थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, खासकर जब आप उस एज के करीब हों जहां आप अपना परमानेंट आउट ऑफ ऑफिस मैसेज सेट करना चाहते हैं। जो लोग रिटायरमेंट से अभी डिकेड्स दूर हैं, उनके लिए प्लानिंग इतनी सिंपल हो सकती है कि वो अपने सैलरी अलाउंसेस का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अपने रिटायरमेंट अकाउंट या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट आरए जिसको कहते हैं में करें। जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, उनके लिए प्लानिंग में कैचअप कॉन्ट्रीब्यूशंस और ये डिसाइड करना शामिल होता है कि कौन से रिटायरमेंट अकाउंट से

पहले पैसा निकाला जाए और सोशल सिक्योरिटी इनकम कैसे मैनेज की जाए ताकि एक्सपेंसेस कवर हो सके। एक स्ट्रॉन्ग प्लान आपको पीस ऑफ माइंड देता है कि आप अपनी असेट से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। चाहे आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं या अपनी वेल्थ रिटायरमेंट अकाउंट के बाहर बिल्ड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत फायदेमंद है। ये प्लानिंग आपके टाइम हॉरिजॉन, फाइनेंशियल सिचुएशंस और रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक होती है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको अपनी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को एनालाइज और मैनेज करने में मदद करती है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट काम करें। ये आपको मार्केट साइकिल समझाने में भी हेल्प करती है, जैसे शॉर्ट टर्म डाउन टर्न्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन हिस्टोरिकली उनके बाद हमेशा अप टर्न्स आए हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको मार्केट की रफ स्ट्रेचेस में काम रहने और पैनिक सेलिंग से बचने में भी मदद देती है। अब आते हैं एक और मुद्दे पे, जो है साहब एजुकेशन प्लानिंग, और जो आजकल की जिंदगी में बहुत अहम मसला होता है। भाई, आजकल के जमाने में एजुकेशन का खर्चा बहुत महंगा होता है। इसमें कोई इफ्स, एंड्स या बट्स नहीं। अगर आप मल्टीपल बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा अलग रखना चाहते हैं तो ये और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। एजुकेशन प्लानिंग आपको ये समझने में मदद करता है कि कितना सेव करना है और कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजीज और अकाउंट यूज करने चाहिए ताकि प्री के से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन कॉस्ट कवर कर सकें। इसके बाद आइए अब बात करते हैं स्टेट प्लानिंग की। नाम से मत घबराइए, स्टेट प्लानिंग का मतलब सिर्फ बड़ा मिशन या स्टेट नहीं होता। ये प्लानिंग इस बात को इंश्योर करती है कि आपकी विशेस प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हों। बहुत सी स्टेट प्लानिंग टेक्निक्स आपके जिंदा होने के दौरान केयरफुल प्लानिंग से शुरू होती हैं। ये प्लानिंग आपके और आपके पार्टनर के दुनिया से गुजर जाने के बाद क्या होगा, इसका आइडिया देती हैं। ये यंग लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे उनके पास अभी बड़ा बैंक बैलेंस हो या ना हो। जनाब, इसके जरिए ये भी तय किया जा सकता है कि अगर आप खुद डिसीजंस लेने के लायक ना रहें तो कौन करे, और अगर जरूरत हो तो आपके बच्चों का गार्डियन कौन होगा। ये हर वेल्थ लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। और आखिर में दोस्तों, जो आजकल के जमाने के हिसाब में चल रहा है इंश्योरेंस प्लानिंग। भाई रिस्क मैनेज करना फंडामेंटल है ताकि आप फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी का सामना ना करें जो आपके गोल्स अचीव करने में रुकावट बन सकता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस तो जानते ही हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि आप समझ सकें कि कौन सी पॉलिसीज आपको और आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करती हैं, और ये आपके ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर में कैसे फिट होती हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे दो और अहम पॉइंट्स के बारे में। पहला, हाउ मच डज फाइनेंशियल प्लानिंग कॉस्ट, और दूसरा, व्हेन शुड यू मेक अ फाइनेंशियल प्लान। तो अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कॉस्ट कितनी होती है, तो ये जानिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कॉस्ट इस बात पर डिमांड करती है कि आप खुद प्लान बनाते हैं या किसी प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं, जिसमें DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। अगर आप खुद प्लान बनाते हैं तो ऑनलाइन टूल्स और रिसोर्सेस लो टू नो कॉस्ट होते हैं, जो आपकी मदद करते हैं आपका फाइनेंशियल प्लान तैयार करने में। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स जो एस्टिमेट करते हैं कि आपको कितना सेव करना चाहिए एक सर्टेन एज तक।

रिटायर करने के लिए ऑनलाइन एडवाइजर्स भी हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने में हेल्प करते हैं और आखिर में प्रोफेशनल प्लानर्स अगर आप किसी प्रो के साथ काम करते हैं तो वो चार्ज भी कर सकते हैं आपके असेट्स के परसेंटेज के बेसिस पर आवरली बेसिस पर या एक वन टाइम फ्लैट फी के तौर पर वहीं दूसरा पॉइंट दोस्तों कि व्हेन शुड वी मेक अ फाइनेंशियल प्लान भाई किसी भी वक्त फाइनेंशियल प्लान बनाना अच्छा है यह आपको गाइड करता है कि आप अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज करें और अपनी फाइनेंशियल नीड्स हर स्टेज ऑफ लाइफ में मीट कर सकें चाहे आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी भी हो आप अपना प्लान कभी भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं चाहे आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं या काफी सालों से काम कर रहे हैं लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जो प्रॉम्प्ट करती हैं प्लान बनाने या एडजस्ट करने के लिए जैसे नई जॉब स्टार्ट करना जो इंक्रीज्ड इनकम न्यू एक्सपेंसेस या न्यू अपॉर्चुनिटीज लाती हो इनकम में चेंज जो आपकी एक्सपेंसेस कवर करने डेट रीपे करने या सेव करने की एबिलिटी को अफेक्ट करें मेजर लाइफ इवेंट्स जैसे मैरिज बच्चों का होना या फैमिली में डेथ जो फाइनेंशियल गोल्स स्पेंडिंग नीड्स और ऑब्लिगेशंस को ऑल्टर कर दें और उसके बाद हेल्थ इशू जो इनकम और स्पेंडिंग को एग्जिस्टिंग गोल से डाइवर्ट करने पर मजबूर करें और आखिर में इनकम विंडफॉल जैसे इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस पे आउट जो एडिशनल फंड्स प्रोवाइड करें इन्वेस्टिंग के लिए और आपके फाइनेंशियल गोल्स को इम्पैक्ट करें दोस्तों फाइनेंशियल प्लान एक वन टाइम टास्क नहीं है ये रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट का तलबगार है लाइफ सर्कमस्टेंसेस इकोनॉमिक कंडीशन और पर्सनल गोल्स चेंज हो सकते हैं इसलिए प्लान को कम से कम हर साल रिविजिट करना और नेसेसरी अपडेट्स करना बेहद और बहुत जरूरी होते हैं तो दोस्तों स्टार्ट प्लानिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर टुडे आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर हो याद रखिए एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लान की चाबी है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आज ही शुरू करें और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस कर रहे होंगे अपनी नीड्स और अपनी फाइनेंशियल वेलबींग पर फोकस करें अभी और फ्यूचर के लिए ये प्लानिंग आपको कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड बनाती है चाहे लाइफ के चैलेंजेस कुछ भी हों याद रखिए पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है चाहे आपकी इनकम छोटी हो या बड़ी अगर आप अपनी जरूरत सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ठीक तरह प्लान करते हैं तो आप सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी बेहतरीन बना सकते हैं एक छोटी सी आदत जैसे मंथली बजट बनाना खर्चों का लिखना या सेविंग अकाउंट में एक फिक्स्ड हिस्सा रखना आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना सकता है याद रखिए पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता बल्कि उसे अपने फ्यूचर के लिए काम पर लगाना सबसे अकलमंदी है तो आज का प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाएं और कंसिस्टेंसी के साथ उस पर अमल कीजिए आप देखेंगे कि वक्त के साथ छोटी सेविंग ही आपके लिए बड़ी सिक्योरिटी और सुकून बन जाती है इसी उम्मीद के साथ कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं तो भाई आज के इकोनॉमिक लेंस के इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए सरवर मिर्जा और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ तब तक अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107

0: क्वार्टर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, ये शो रिव्यू ऑफ द वीक। काफ़ी दिनों बाद आप मुझको सुन रहे हैं और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे बोलूँ। कभी कभार होता है ना कि आप अपना काम भूल जाते हैं, लेकिन बोलना ही तो है। रिव्यू ऑफ द वीक, ये शो जहाँ पर हर हफ्ते आपको एक नई मूवी के बारे में पता चलता है, और इस हफ्ते हम कॉकटेल 2 मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि कॉकटेल मूवी कई साल पहले आई थी, काफ़ी हिट हुई थी, और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस कॉकटेल जैसी मूवी से बहुत ज़्यादा नाम कमाती हुई दिखी, और इस मूवी में कई नए स्टार हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसका मूड कैसा है, हाइप क्या है कॉकटेल 2 मूवी के अराउंड, और कितने स्टार रेटिंग इसे मिले हैं, क्रिटिक्स का क्या कहना है, सारी बातें हम यहाँ FM 107 पे करने वाले हैं।
2: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
1: तो कॉकटेल 2 का जो मूड है वो ऊपर ऊपर से बहुत ग्लैमरस और हसीन है, लेकिन अंदर से बिल्कुल एक तरह से कहें तो खाली है। बस इतनी ही लाइन में आपको सारी बातें पता चल जाएंगी कि ये मूवी कैसी है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार जब आप कोई दूसरी सीक्वल या कोई दूसरा सीरीज आप बनाते हैं, तो पहले वाले की सक्सेस जो है आपके दिमाग पे चल रही होती है, उसकी क्वालिटी आपके दिमाग में चल रही होती है, कितना बेहतरीन उसने काम किया था, कितने पैसे आए थे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना अच्छा था, तो वो दिमाग में आपके चलता रहता है। इस वजह से नई जो चीज़ आप बनाते हैं या सीक्वेंस जब आप बनाते हैं, उसका दूसरा पार्ट बनाते हैं,
2: नए दोस्त मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि उनकी कहानियाँ हमारे लिए नहीं होती, पुराने दोस्तों की वही कहानियाँ सुन सुन के हम पक जाते हैं। लेकिन प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं, पर जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सलूशन रह जाता है।
1: तो ये प्रेशर आपके दूसरे पार्ट को खराब कर देता है, और कॉकटेल 2 के साथ आई गेस यही हुआ है। लेकिन अगेन कुछ मूवीज ऐसी भी रही हैं जो बहुत ज्यादा हिट हुई हैं, और कुछ मूवीज

जो एक्चुअली में इतनी हिट हुई हो ना हुई हो पता नहीं, लेकिन उनके व्यूज, उनको पसंद करने वाले लोग बहुत ज्यादा रहे हैं, और साथ ही माइंड यू उनकी लोकेशंस इतनी खूबसूरत रही हैं कि उनको लोकेशन की वजह से ज्यादा याद किया गया है, जैसे कि जिंदगी नाम मिलेगी दोबारा। आई नो, वेट, मुझे पता है कि जिंदगी नाम मिलेगी दोबारा बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन उसको इस तरह से सिनेमा के साथ, साउंड के साथ और डायरेक्टर का जो विजन रहा उसके साथ इस तरह से ढाला गया है ना कि आपको मूवी और साथ ही साथ उसकी लोकेशन, खूबसूरती, यूरोप का जो उसका पूरा था वो सब कुछ याद रहता है। इवन कार तक आपको याद रहती है कि कितना बेहतरीन, कितना लाजवाब काम उसमें किया गया था। वेल, कॉकटेल 2 के साथ भी यही है, आपको मूवी याद रहे ना रहे, लेकिन आई एम 100% श्योर कि आपको एक्चुअली में इस मूवी का लोकेशन जरूर याद रहेगा। बिल्कुल खूबसूरत सीनिक ब्यूटी आपको इस मूवी में

0: वेल आगे बढ़ते हैं. मूवी एक्चुअली शुरू होती है बिल्कुल एक महंगी इटली की वेकेशन जैसी लगती है. सिसिली के खूबसूरत बीचेस हैं, एक्टर्स के डिजाइनर कपड़े हैं, प्रीतम का जबरदस्त म्यूजिक एक बहुत ही एनर्जेटिक और मजाकिया माहौल इन सबको क्रिएट करते हैं. शुरू में लगता है कि ये आजकल के जमाने की एक बहुत ही मॉडर्न और कूल लव स्टोरी टाइप होगी जिसको देखकर मजा आ जाएगा, हंसी भी होगी, व्यू भी होगा और कोई ना कोई मायने होंगे. कैमरा जिस तरह से लग्जरी विलास और इटली के खूबसूरत सड़कों को दिखाता है उससे ऑडियंस को लगता है कि वो कोई महंगी ट्रेवल मैगजीन देख रहे हैं. लेकिन जैसे ही लॉयल्टी टेस्ट का ड्रामा शुरू होता है मूवी का मूड खराब और एनॉइंग होने लगता है. फिल्म में दिलों को छूने वाला कोई सच्चा इमोशन जो है ना वो नहीं है. कैरेक्टर्स बहुत ही बच्चों जैसी और अजीब बातें करते हैं जिससे देखने वाले बोर हो जाते हैं. डायरेक्टर होमी का स्टाइलिश अंदाज और राइटर लव जैन की पुरानी सोच ये दोनों आपस में मैच नहीं कर पाती है और यही वजह रही मुझे लगता है ऐसा कि इतनी सुंदर जगह दिखाने के बावजूद मूवी देखकर रोना या दुख होना या पछतावा होना, कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट होना ये नहीं हो पाता है, बल्कि उल्टा होता है. इसका गुस्सा आने लगता है मूवी देख के कि ये क्या है. ये एक ऐसी फिल्म है जो देखने में तो बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा अगर आप देखेंगे भाई, आप इसका ट्रेलर देखिए, ट्रेलर जैसी देखेंगे आपको इतना लाजवाब इतना बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिलेगा और व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं शाहिद कपूर के और साथ ही साथ मूवी के कि आपका दिल करेगा यार ये मूवी तो देखनी चाहिए.
1: सब अपनी अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और एक्सपायरी डेट के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है. राइट,
0: लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज नॉट अ गुड मूवी एट ऑल. लेकिन इसमें कोई ऐसी दिल या जज्बा जैसी चीज नहीं है. फिल्म मेकर्स ने सजावट पर तो बहुत पैसा खर्चा किया है लेकिन कैरेक्टर्स के रिश्तों में गहराई डालना एक तरह से भूल गए. जब मूवी का सेकेंड हाफ शुरू होता है तो रोमांटिक कॉमेडी वाला मजा बिल्कुल खत्म हो जाता है. बैकग्राउंड म्यूजिक बार बार ऑडियंस को इमोशनल करने की कोशिश करता है लेकिन जब स्टोरी ही खराब हो तो म्यूजिक भी काम नहीं आता. मतलब आटा ही गीला है तो आप गूंदेंगे कैसे. अगर वे आप सिनेमा से खुश होकर नहीं बल्कि कैरेक्टर्स की बदतमीजी और बेवकूफ़ी पर परेशान होकर बाहर आते हो सकता है. अगर आप बहुत वाला हिसाब है ना कि यार मैं तो इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ मुझे ये चाहिए ही नहीं, आप बीच में ही मूवी छोड़ देंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइप. बहुत ज़्यादा क्रेज़ है पुरानी यादों में क्या है इस मूवी के बारे में, उस पर भी बात कर लेते हैं. रिलीज से पहले इस मूवी का जो क्रेज़ और हाइप थी वो बहुत ही ज़्यादा थी जिसकी वजह से पहले वीकेंड पर सिनेमाज में बहुत भीड़ देखने को मिली. इसका ट्रेलर भी बड़ा लाजवाब सेट किया गया है. ऐसा लग रहा है कि ट्रेलर दिखा के आपको मूवी बेकार कर दी. वो है ना कि अरे ये तो ट्रेलर है मूवी अभी बाकी है. इस मूवी के लिए ये लाइन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकती कि ट्रेलर देखा है.

0: अभी तो मूवी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ देखना भाई। तो ये सीन हो जाएगा अगर आप जाएंगे हॉल में। तो इस मूवी की हाइप की एक सबसे बड़ी वजह थी, और आपको भी बताया, 2012 की पहली कॉकटेल मूवी। लोग उस पुरानी फिल्म के गाने, दीपिका पादुकोण की एक्टिंग को आज भी याद करते हैं। इसलिए सब देखना चाहते थे कि क्या ये पार्ट टू भी वैसा ही जादू चला पाएगा। फैंस को उम्मीद थी कि इस बार भी दोस्ती और मोहब्बत की वैसी ही एक गहरी कहानी देखने को मिलेगी, और मॉडर्न जमाने में यार, क्योंकि इतने सालों बाद आ रही है, 14 सालों बाद, सो कुछ तो नया होगा। इसके अलावा शाहिद कपूर और कृति सेनन की नई जोड़ी को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा था। इसका मेन रीजन था ऑब्वियसली ट्रेलर अगेन।
1: लेकिन प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं, और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन रह जाता है।
0: जब फिल्म का ट्रेलर और इटली में शूट हुए गाने, ये जब दोनों रिलीज हुए, तो यंग लोगों में इसको देखने का शौक मजीद बढ़ गया। इंटरनेट पर हर जगह, इंस्टाग्राम और रेडिट पर भी लॉयल्टी टेस्ट वाले टॉपिक पर बातें होने लगी। मतलब फिल्म की हाइप तगड़ी बनी हुई थी। हर कोई टिप्पणी कर रहा था, हर कोई अपनी तरह से बात कर रहा था स्टोरी को लेकर। इस भारी हाइप का फायदा मूवी को बॉक्स ऑफिस पर मिला, और इसने पहले दो दिनों में अपना पैसा थोड़ा बहुत तो निकाल लिया, 50 करोड़ तो कमा लिया था। एडवांस टिकट बुकिंग इतनी ज्यादा थी कि पहले दो दिन के सारे इवनिंग शोज हाउसफुल थे।

0: अगेन ये मुझे लगता है वो लोग पहुंचे थे जो कॉकटेल के दीवाने थे। अब फिर उन्होंने रिव्यूज देना शुरू करा टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब पर भी ट्रेलर्स का बहुत ज्यादा प्रमोशन किया गया था। मार्केटिंग टीम ने हर मॉल और बड़ी जगह पर मूवी के बारे में हाइप बनाई थी, लेकिन अफसोस जितना बड़ा इस मूवी का नाम और हाइप था, मूवी की असल कहानी उस स्टैंडर्ड पर पूरी नहीं उतर पाई। हाइप ने लोगों की उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया और जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने बहुत मायूसी महसूस करी कि यार क्या है यार, वही पुरानी कहानी। अभी अभी आगे चलकर मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि इसका प्लॉट क्या है। आपको लगेगा कि यार ये कहानी तो 2010 की है यार, 2008 की कहानी अब 2026 में भी दिखा रहे हो यार, क्या मतलब पैसा कमाने के लिए क्या कुछ भी बना दे रहे हैं। ये कहानी तो कोई भी बना लेगा, कोई बच्चा भी बना लेगा आजकल, कुछ नया तो डालिए। तो ये मूवी ऐसी है कि अगर आप बगैर दिमाग के बैठ कर देखना चाहते हैं, पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो वाई नॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टार, कितने स्टार मिले इस मूवी को या क्रिटिक्स का क्या मानना है। वैसे क्रिटिक्स ने इस मूवी को तो बहुत ही बुरी तरह से रिव्यूज दिए हैं, बट मेरा मानना है कि 5 में से 2 स्टार तो अगेन मिलना ही चाहिए। इसके रीजन पर भी आता हूँ। 5 में से 2 स्टार में से 1 स्टार सिर्फ इसलिए क्योंकि कृति सेनन ने अच्छा काम किया। आपको इस बारे में तो कहना ही पड़ेगा कि जो काम बंदा अच्छा कर रहा है उसके बारे में तारीफ तो करनी चाहिए।
1: सब अपनी अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और एक्सपायरी डेट के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है।
0: इतने कम स्टार्स मिलने की सबसे बड़ी वजह इसकी कमजोर और पुरानी कहानी है। आज के दौर में 2 कामयाब और इंडिपेंडेंट लड़कियां एक लड़के के लिए इस तरह बचकाना तरीके से लड़े लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये लॉजिकल है ही नहीं। मूवी का सेकंड हाफ बहुत ही बुरा है और कैरेक्टर्स का आपस में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नजर नहीं आता। रश्मिका मंदाना की खराब हिंदी डिक्शन ने उनकी एक्टिंग को मजीद खराब कर दिया, जिससे रेटिंग मजीद गिर गई। अब एक लाइन यहां पर आई है कि रश्मिका की हिंदी डिक्शन, ये अब आपको आगे आने वाले पूरे रिव्यू में सुनने को मिलेगा बार बार। मुझे लगता है अगर 1.5 स्टार रेटिंग कटी है तो रश्मिका की हिंदी की वजह से कटी है। सोचिए कोई ऐसी मूवी जो 2012 में अच्छा करके गई, 2026 में दोबारा आई और उसके ज्यादा स्क्रिप्ट के बारे में या कहानी के बारे में बात ना होते हुए रश्मिका की हिंदी के बारे में बात हो रही है। पूरे मूवी में एक्चुअली रश्मिका की जो हिंदी रही है, हिंदी डिक्शन रही है, वो इतनी क्लियर नहीं थी, इसकी वजह से इसकी 1 से 1.5 रेटिंग खराब हुई है। लेकिन ये मूवी 1 स्टार होने से सिर्फ कृति सेनन की वजह से बच गई। कृति की एक्टिंग को बहुत पसंद किया और उन्होंने अकेले 3.5 स्टार दिए इस एक्ट्रेस को, सिर्फ कृति सेनन को। माइंड यू इसमें तीनों

0: एक्टर को और एक्ट्रेस को मिलाकर बात नहीं हो रही है, सिर्फ कृति के बारे में बात हो रही है। शाहिद कपूर ने भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करी। अच्छा, उनके बारे में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है दो लड़कियों को लड़ाया गया बस। उन्होंने बोरिंग स्क्रिप्ट में, यानी कि कृति ने बोरिंग स्क्रिप्ट में भी अपनी जान डाली है। उनका स्टाइल देखने लायक है। इसके साथ साथ इटली के हसीन नज़ारे और प्रीतम के अच्छे गानों की वजह से फिल्म को थोड़े पॉइंट्स मिले हैं। नॉर्मल पब्लिक के लिए जो बिना दिमाग लगाए सिर्फ कपड़े और अच्छी जगहें देखना चाहती है, उनके लिए ये फिल्म 2.5 स्टार मान सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ। टेक्निकल टीम जैसे कि कैमरामैन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने अपना काम पूरा 5 स्टार वाला किया, उन्होंने मेहनत की है ना। वो भी होता है कि यार इतने पैसे मिल रहे हैं तो जस्टिफाई तो कर दूं अपना काम, तो उन्होंने अपना काम जस्टिफाई किया है। लेकिन राइटिंग टीम ने सब खराब कर दिया है। मूवी का बजट 150 करोड़ है और 2 दिन में 50 करोड़ कमा लिया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप देखें, कई बार जब लोग रिव्यू देते हैं तो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स देते हैं, अरे यार छोड़ो मत देखने जाओ, इतनी अच्छी नहीं, तो ऐसे बहुत तेज़ी से मूवी जो है वो गिरती है। अब 150 करोड़ तक पहुंच पाना, क्योंकि मूवी का बजट यही है, और असली जो कमाई होती है 150 करोड़ नहीं 300 करोड़ के बाद होती है। तो ये तो खेल एक सबसे बड़ा यहीं पर है कि 150 करोड़ रिकवर कर ले, अभी तो सिर्फ 50 ही करोड़ आए हैं, 100 करोड़ का नुकसान ही है। लेट्स सी कि आने वाले वक्त में क्या होगा, जनता जनार्दन वाली बात है। इसलिए सिर्फ 2 स्टार के साथ इसका हिट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी 50 करोड़ इसने कमाए हैं, राइटिंग वगैरह इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मजीद कॉकटेल 2 मूवी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आपको बता दें, आज हम कॉकटेल 2 मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसी मूवी जो 2012 में आई थी, कॉकटेल जिसका नाम था, और ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी थी। लेकिन अब सारा मामला ये है कि ये दूसरी जो मूवी आई है कॉकटेल 2, इसमें उस तरह का काम हुआ नहीं। अगर आपने अभी तक रिव्यू सुना है तो डिक्शन से लेकर स्टोरी तक, राइटिंग तक, वो बात नहीं रही जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी ज़्यादा हिट हो पाती कि लोग 150 करोड़ तक ले जाते। बाकी जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मूवी के फन फैक्ट्स के बारे में, डायरेक्टर का विजन क्या रहा, फिल्मिंग की लोकेशन क्या है, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, और सिनेमाटोग्राफी से लेकर साउंड तक क्या कुछ है इस मूवी में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे फजील के साथ है दोस्तों। आप सुन रहे हैं ये शो रिव्यू ऑफ द वीक, जहां पर हम कॉकटेल 2 मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक तो आपको मोटा मोटा पता चल गया कि इस मूवी को देखना है नहीं देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के फन फैक्ट क्या रहे हैं इस मूवी के, और डायरेक्टर का विजन क्या रहा है, फिल्मिंग लोकेशन, एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड एज। तो दोस्तों, एक फन फैक्ट जो मुझे पता है कि आपको पता है, यहाँ इस मूवी को जिस जगह पे शूट किया गया, यानी कि इटली में जिस जगह शाहिद कपूर रहते हैं, उस लग्जरी जगह को ढूंढने में बड़ा टाइम लगा था, बहुत पैसे भी लगे थे। जिस घर में या जिस विला में वो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा खूबसूरत है, और पूरी टीम ने तकरीबन 40 लग्जरी विलाज ढूंढे थे और फिर फाइनलाइज हुआ वो। तो जब आप मूवी देखेंगे और 40वां यानी कि उस विला को देखेंगे, तो आप ये तय कर लीजिएगा कि ये 40वां विला है, और इससे पहले 39 यानी कि 39 विलाज और ये देख चुके हैं। उसके बाद फिल्म ने इस विला को, यानी कि जहां पर शाहिद कपूर रहते हैं, उसको कंफर्म किया है। और एक और फैक्ट है, और ये टेक्निकल क्रू का फैक्ट है, बहुत कम ऐसा होता है कि जिस जगह पे शूटिंग हो रही हो वहाँ के लोकल क्रूज को या लोकल लोगों को या लोकल एक्टर और एक्ट्रेस को हायर किया जाए, लेकिन इस मूवी में 60% लोकल को हायर किया गया है। कैमरा असिस्टेंट हो गए, इटालियन फिल्म मेकर एजेंसीज हो गई, ग्राउंड टेक्निकल क्रूज हो गए, तो इन सबको हायर किया गया और 60% इनकी आबादी रही है, मतलब इस फिल्म को शूट करने के लिए। उसके अलावा वेदर एकदम से चेंज हो गया था। एक बार ऐसी इस मूवी का एक बहुत ही मजेदार गाना था, उसे शूट करना था, लेकिन वेदर जो है एकदम से चेंज हो गया और फिर कुछ टाइम जो है वो ले लिया था। बीच पार्टी का ट्रैक था और उसको शूट करने के लिए लोग वहां पर गए और इतनी ज्यादा मौसम

0: कि ऐसी तैसी हो गई, मौसम ने ऐसी तैसी गिर दी, कि फिर पूरा जो ट्रैक है यानी कि पूरा जो शूट है उसे रोकना पड़ा और फिर बाद में इसे दोबारा शुरू किया गया। और एक और फैक्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये है रोड क्लोजर को लेकर। सिसली में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अलाउ है ही नहीं, है ना, तो शूटिंग वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर रोड क्लोज करके बाकायदा शूट किया गया पूरी पब्लिक सेफ्टी के साथ। हाई स्पीड ड्रोन्स थे जिसकी शूटिंग होनी थी, शाहिद कपूर कृति सेनन वहाँ पर थे जहाँ पर वो बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे थे स्पोर्ट्स कार, तो वहाँ पर अलाउ नहीं, बट बाकायदा वहाँ से परमिशन ली गई, रोड क्लोज किया गया और फिर ये सारे सीन जो हैं वो शूट किए गए। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं एक वॉच वाले सीन के बारे में। तो शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है वो बहुत अमीर है इस मूवी में, तो अल्ट्रा वेल्दी कॉरपोरेट बिजनेसमैन है वो, हाई एंड लग्जरी वॉचेस वगैरह का शौक रखता है। एक वॉच ब्रांड थी जो ऑफिशियली पार्टनर करना चाहती थी प्रोडक्शन के साथ, तो जो वॉच पहना है ना आप जब मूवी देखेंगे शाहिद कपूर ने, तो उन्होंने ऑफिशियली उनसे कोलैब किया और कहा कि जब भी आप बाहर निकलें यानी कि मूवी जब भी आप शूट कर रहे हो तो प्लीज़ ये वॉच प्लीज पहन लिएगा। तो इस तरह से कोलैबोरेट किया, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर विजन। इस मूवी में डायरेक्टर का विजन क्या रहा है? डायरेक्टर होमी का विजन हमेशा से बहुत स्टाइलिश, मॉडर्न और हटकर होता है। वो इस फिल्म के जरिए आजकल के जमाने के रिलेशनशिप और उनके दरमियान पैदा होने वाले इनसिक्योरिटीज को दिखाना चाहते थे।
1: तूने तो ऐसे रिया किया जैसे तुझे इतनी बुरी उम्र।
2: मैंने तो ये सोच के कहा था कि तुझे बुरा ना लग जाए।
3: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूं या नहीं।
0: उन्होंने इस कहानी को बहुत ही रिच और हाई क्लास लुक देने की कोशिश की, जहां लोग देखने में बहुत कूल लगते हैं, लेकिन इस बार उनका विजन थोड़ा खराब हो गया क्योंकि उनके साथ को राइटर लव रंजन शामिल थे। लव रंजन का अपना एक अलग स्टाइल है लिखने का भी, जो अक्सर लड़कों की साइड लेते हैं, कमर्शियल मजाकिया फिल्में बनाते हैं। होमी चाहते थे कि मूवी बहुत इमोशनल और डीप हो, जबकि लव रंजन इसको एक मजाकिया और लड़का लड़की वाली लड़ाई जो है वो बनाना चाहते थे। इस दो तरह की सोच की वजह से मूवी का आखिरी मैसेज बहुत अजीब हो गया। इसीलिए कहते हैं जब भी राइटर और साथ ही साथ डायरेक्टर को जब मिलना चाहिए तो पहले स्क्रिप्ट बनाने मत बैठ जाओ, एक दो दिन साथ में घूमो, है ना, जो स्क्रिप्ट है जो कहानी उस पर चर्चा करो, उस पर बात करो। ऐसे थोड़े कि आप पहुंच गए और फिर आपने स्क्रिप्ट लिख दी, फिर क्या दोनों का अलग विजन हो जाता है, इसकी वजह से फिल्म इसी तरह निकलती है। कॉकटेल टू आगे, यू नो, होमी ने मूवी को देखने में बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाई है। अगर आप उनके इस मूवी को देखेंगे, सिनेमाटोग्राफी को देखेंगे, हर एक चीज़ को, जहां हर सीन बहुत महंगा और स्टाइलिश लगता है, उनका मकसद ऑडियंस को एक ऐसी दुनिया में ले जाना था जहां सब कुछ हसीन हो, भले ही कहानी में थोड़ी कमजोरियाँ क्यों ना हो।

अब बात कर लेते हैं फिल्मिंग लोकेशन के बारे में। यार इस मूवी में अगर कुछ है तो वो सिर्फ फिल्म की लोकेशन ही है। कॉकटेल 2 को बहुत ही खूबसूरत और महंगी इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट किया गया है, जो इस मूवी की सबसे बड़ी जान है। पूरी मूवी का मेन हिस्सा सिसिली यानी कि इटली में शूट हुआ है। यूरोप की ये जगह अपने पुराने पत्थरों वाले घरों, नीले समंदर और खूबसूरत हसीन धूप के लिए बहुत मशहूर है। मतलब आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ऐसा फील आ जाएगा। मूवी याद रहे ना रहे सीन याद आ जाएगा। वहाँ शूटिंग की इजाज़त लेना एक बहुत बड़ा मसला होता है। क्रू को इटली के पुराने लग्जरी विलाज में शूट करने के लिए पूरे 4 महीने तक इंतज़ार करना पड़ा था। सोचिए एक ऐसी मूवी जो इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन व्यू इतना अच्छा है तो उसके लिए 4 महीना बनता है। प्रोडक्शन टीम ने वहाँ के 60% से ज़्यादा लोकल इटालियन टेक्नीशियंस को काम पर रखा। वहाँ की लंबी कोस्टल रोड्स पर शाहिद और कृति के कार चलाने वाले सीन्स बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। इटली की ये हसीन धूप और दरिया बहुत ही लाजवाब है। गलियां बड़ी खूबसूरत थी। मूवी को एक आम बॉलीवुड फिल्म से ये सारी चीज़ें अलग बनाती हैं। जब आप थिएटर में ये मूवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने सस्ते में इटली का एक महंगा टूर ले लिया हो। हर लोकेशन सीन को इतनी सफाई से दिखाया गया है कि लोग कहानी से ज़्यादा वहाँ के नज़ारों में खो जाते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इस मूवी के लिए तीनों मेन एक्टर्स ने अपने

ऐसे मोटे हट्टे कट्टे तड़ंगे होते हैं दाल चावल खाने वाले. वेल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शाहिद कपूर की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही काम और कूल इस मूवी में दिखाया गया. कृति सेन यार इनके बारे में तो ज्यादा कुछ है नहीं कहने को, इसलिए क्योंकि काम ही इतना अच्छा किया है ना. कई बार ऐसा होता है कि काम इतना अच्छा कर दो कि ज्यादा कुछ वैसे ही नहीं कहने को. क्योंकि खराब काम करने वाले ज्यादा हैं, उनके बारे में बहुत कुछ है कहने को. कृति सेनन ने इस मूवी में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है. उन्होंने एक बोल्ड बिंदास हाई फैशन लड़की एली का रोल प्ले किया है. इसके लिए उन्होंने अपना पूरा स्टाइल चेंज किया, नए हेयर हाइलाइट्स, बहुत ही ग्लैमरस बोल्ड कपड़े. उनका ये लुक उनकी पुरानी फिल्मों से बिल्कुल अलग है. दूसरी तरफ रश्मिका को ले लीजिए, उन्होंने अपना लुक तो थोड़ा सिंपल और एलिगेंट रखा है, लेकिन उन्होंने अपनी हिंदी इतनी बेहतरीन कर दी है कि सुनने का मन ही नहीं करता. बहुत अजीब डिक्शन था यार, मजा ही नहीं आया. मतलब आप जब हिंदी और उर्दू बोलते हैं तो यही वाली लैंग्वेज होती है ना, जैसे हम और आप बोल रहे हैं. उनकी डिक्शन बिल्कुल अलग थी. और रश्मिका को रखने का मुझे ऐसा कोई इसमें सीन लगा ही नहीं. मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है ना, कास्टिंग वाले बंदे जो हैं वो पता नहीं क्या सोच के रश्मिका को ले लिया भाई. मुझे नहीं समझ में आया, हो सकता खूबसूरती समझ के ले लिया हो तो, बट आपको देखना पड़ेगा ना. आप हिंदी डिक्शन, सिर्फ ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी डिक्शन के लिए ट्रोल हो रही है रश्मिका. कोई एक्ट्रेस हिंदी डिक्शन के लिए ट्रोल हो रहा है, व्हाई? आपके पास इतने एक्ट्रेस हैं, इतने अच्छे काम करने वाले हैं, आपने कास्ट रश्मिका को करा जिनकी हिंदी इतनी क्लियर है नहीं. खैर कोई बात नहीं, बदकिस्मती की बात है. और यही वजह है कि रश्मिका की हिंदी की वजह से इस फिल्म के 1 से 1.5 स्टार रेटिंग जो है वो कम हो गई है, लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड.

टेक्निकल लिहाज से कॉकटेल 2 एक बहुत ही बेहतरीन और टॉप क्लास फिल्म है। इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। कैमरा ने इटली के रंगों को, समंदर के नीले पानी और एक्टर्स के चेहरों के एक्सप्रेशंस को इतनी खूबसूरत तरीके से लेंस में कैद किया है कि हर फ्रेम एक पिक्चर परफेक्ट पोस्टकार्ड लगता है। ड्रोन शॉट्स का इस्तेमाल बहुत ही कमाल का है, जो सिसिली के बड़े बड़े नज़ारों को बहुत ही ग्रैंड लुक देते हैं। साथ ही प्रीतम का म्यूजिक, एंड यार देखो प्रीतम कोई नए लड़के तो है नहीं, इनकी कॉम्पोजिशन, इनके गाने, इनका म्यूजिक लाजवाब है। इसी की वजह से शायद कॉकटेल 1 के भी और कॉकटेल 2 के भी जो गाने रहे हैं वो लाजवाब रहे। प्रीतम का म्यूजिक दूसरा सबसे मजबूत हिस्सा है। गानों में मॉडर्न बीट्स के साथ साथ थोड़ा यूरोपियन और इटालियन टच भी दिया गया है, वही जिंदगी नाम मिलेगी दोबारा जैसा हल्का फुल्का टच। प्रीतम ने खुद इटली जाकर वहां के स्ट्रीट म्यूजिशियंस के साथ काम किया ताकि बैकग्राउंड म्यूजिक में असली फील आ सके। पार्टी सॉन्ग बहुत ही एनर्जेटिक है और मजेदार बात यह है कि गानों के दौरान शाहिद और कृति ने कुछ डांस स्टेप्स ऑन द स्पॉट खुद ही बनाए, तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। अगर दोस्तों इस मूवी में से अच्छी सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक निकाल दिया जाए तो कहानी देखने लायक है ही नहीं, बस ऐसा समझ लीजिए एक खूबसूरत व्यूज जो है वो आपको सोशल मीडिया पर दिखा दिया गया है, कुछ ऐसे ही सीन रहेगा। तो ये कुछ बातें सिनेमाटोग्राफी, एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, फिल्मिंग लोकेशंस, डायरेक्टर का विजन, फन फैक्ट्स के बारे में हमने बात करा। रिव्यू ऑफ द वीक सुन रहे हैं आप, जल्दी से बात कर लेते हैं शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। कॉकटेल 2 मूवी के बारे में आज हम बात करें, अगर आपने अभी ट्यून इन किया तो परफेक्ट परफेक्ट टाइम। तो दोस्तों बस ये इतनी सी कहानी। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्टर्स के काम के बारे में। मूवी में एक्टर के लिहाज से मिला जुला काम देखने को मिला है, लेकिन एक एक्ट्रेस ने पूरी फिल्म में बाजी मार ली है, वो है सेनन, यानी कि कृति सेनन एली। इस पूरी मूवी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वही रही है। एंड नाउ अबाउट द क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का क्या कहना है। क्रिटिक्स ने कहा है कि फिल्म वही पुरानी घिसी पिटी कहानियों पर बनी है, 5 में से 2 स्टार ले जाइए आप। उनका यह भी कहना है कि मूवी सिर्फ ऊपर से चमकदार है पर अंदर से बिल्कुल खाली है। सबसे बड़ी वजह यह है कि मूवी की कहानी बहुत पुरानी और पिछड़ी हुई लगती है। क्रिटिक्स के मुताबिक साल 2026 में दो पढ़ी लिखी और कामयाब लड़कियों को एक लड़के के लिए इस तरह से लड़ते हुए दिखाना बिल्कुल अजीब है, और ये बात बिल्कुल जेन्युइन है भी यार। मूवी के डायरेक्शन में भी दो अलग सोचे जो है वो टकरा रही हैं। एक तरफ डायरेक्टर होमी का स्टाइलिश अंदाज और दूसरी तरफ राइटर लवजैन की पुरानी सोच। सिनेमा एक्सप्रेस के एक मशहूर रिव्यू में कहा गया कि फिल्म सिर्फ सजावट है, इसमें कोई गहराई नहीं है। एंड नाउ अबाउट द वर्डिक्ट, तो दोस्तों इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका दिल है तो आप देखिए, पैसे खर्च करने का दिल है तो क्यों नहीं, लेकिन अगर आप अपने पैसे बच

0: लटकाना चाहते हैं तो मत देखिए अगेन. लेकिन एक और चीज है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार बुद्धि नहीं लगानी है मुझे, है ना, तो भी आप ये मूवी देख सकते हैं. कॉकटेल 2 ऊपर से बहुत हसीन और ग्लैमरस लगती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली फिल्म है जो पहली कॉकटेल जैसी सच्चा और गहरा इमोशन नहीं दिखा सकी. हालांकि कृति सेनन ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है, लेकिन फिल्म की खराब कहानी, टॉक्सिक प्लॉट, कमजोर कैरेक्टर ने पूरी मूवी का मजा खराब कर दिया. वेल, बाकी आपकी मर्जी है. इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए मूवी के बारे में बात करते हुए नए अंदाज में. सुनते हैं FM 107, दिल से देसी.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: मेत्राज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेत्राज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
3: द रिक्वेस्ट शो
2: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: FM 107.
3: दिल से देसी.
4: दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है. एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें. हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं. एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है. इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें. एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें. अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है. ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है. हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं. बिजली के लोड का ख्याल कीजिए. अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते. ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है. हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें. हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें. एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है. याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं. अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं. FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है.
5: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है. फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है. आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें. तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

0: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे मोहम्मद सुलेमान के बारे में। मोहम्मद सुलेमान कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं कि कतर की खेल की तारीख के सबसे अजीम एथलीट्स में से एक हैं और कतरी एथलेटिक्स के असल पायनियर अगर कोई है तो मोहम्मद सुलेमान है। उनकी पैदाइश 23 सितंबर 1969 को हुई और बता दूं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों पायनियर है कतरी एथलेटिक्स में। उन्होंने 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में कतर के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतकर तारीख कायम। सो दैट्स द रीजन मोहम्मद सुलेमान इज सो इम्पॉर्टेंट इन कतरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री। मेंस 1500 मीटर दौड़ में मोहम्मद सुलेमान ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और कतर को पहली मरतबा ओलंपिक मेडल टेबल पर जगह दिलाई। So that was occasion when Qatar पहली मरतबा ओलंपिक प्लेटफॉर्म में पहला अगर कोई मेडल लेके आया होगा तो यही बंदा था, इनका नाम है मोहम्मद सुलेमान। ओलंपिक कामयाबी से पहले भी सुलेमान एशिया के बेहतरीन मिडिल डिस्टेंस रनर्स में शुमार होते थे। उन्होंने एशियन गेम्स और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप समेत कई इलाकाई और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के मुकाबलों में मेडल जीते। वो अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी, जबरदस्त स्टैमिना और दौड़ के आखिरी लम्हों में तेज रफ्तारी के लिए मशहूर थे। 1990 की दहाई में उन्होंने दुनिया के बेहतरीन रनर्स को सख्त मुकाबला दिया। मोहम्मद सुलेमान ने कई ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कतर की नुमाइंदगी की जिससे गल्फ रीजन में एथलेटिक्स को फरोग मिला। उनकी कामयाबियों ने कतरी नौजवान एथलीट्स को इंस्पायर किया और साबित किया कि कतर दुनिया के बेहतरीन खेल मुकाबलों में मुकाबला कर सकता है। दोस्तों आज मोहम्मद सुलेमान को सिर्फ कतर का पहला ओलंपिक मेडल विनर नहीं बल्कि मुल्क के खेलों की तरक्की की बुनियाद रखने वाले हीरो के तौर पर भी याद किया जाता है। उनकी विरासत आज भी कतर के लिए फख्र का बायस है और नए एथलीट्स को कामयाबी के लिए मोटिवेट करती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने में नए स्कैम्स हो रहे हैं और इस तरह के स्कैम से बचना आसान नहीं है जब तक आप इन स्कैम्स के बारे में ना जानते हो, और इसीलिए FM 107 की पूरी कोशिश है कि आपको नए जमाने के नए स्कैम से या फ्रॉडस्टर्स से बचाए। दोस्तों, घरों में स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज, स्मार्ट लॉक्स और AI असिस्टेंट्स का यूज बहुत बढ़ गया है और यहीं से शुरू होता है हाईजैकिंग फ्रॉड। हैकर्स आपके होम वाईफाई नेटवर्क के जरिए इन अनसिक्योर

0: सिक्योर्ड स्मार्ट डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद वो आपके घर के अंदर की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्डिंग्स और पर्सनल फोटोज निकाल लेते हैं। फिर शुरू होता है एक्सटॉर्शन यानी ब्लैकमेलिंग का खेल, जहां आपसे डिजिटल करेंसी में बड़ी रकम मांगी जाती है और पैसे ना देने पर आपकी प्राइवेट लाइफ को इंटरनेट पर लीक करने की धमकी दी जाती है। कुछ केसेस में तो क्रिमिनल्स स्मार्ट लॉक्स को लॉक करके लोगों को उनके ही घर में कैद कर देते हैं जब तक रैंसम ना मिले। इस सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड से बचने के लिए अपने हर स्मार्ट डिवाइस का डिफॉल्ट पासवर्ड बदलें और राउटर पर स्ट्रॉन्ग फायरवॉल लगाएं। 2026 में ये हैकर्स एडवांस्ड ऑटोमेटेड स्कैनर्स का यूज करते हैं जो वीक इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस को ऑटोमेटिक ढूंढ निकालते हैं, जिससे हर वो घर निशाने पर होता है जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन FM 107 आपको इसका सॉल्यूशन भी देता है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने स्मार्ट होम को सिक्योर रखने और इस एक्सटॉर्शन फ्रॉड से बचने के लिए आपको नेटवर्क सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला कदम ये है कि अपने वाईफाई राउटर का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड बदलकर एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाएं। अपने मेन इंटरनेट राउटर पर एक गेस्ट नेटवर्क बनाएं और अपने सारे स्मार्ट होम डिवाइसेस, कैमरा, लॉक्स, टीवीज को इसी गेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट करें। इससे अगर कोई हैकर किसी डिवाइस को हैक कर भी लेता है तो वो आपके मेन कंप्यूटर या मोबाइल फोन तक नहीं पहुंचेगा। जहां आपका फाइनेंशियल डेटा होता है, किसी भी स्मार्ट डिवाइस को खरीदते वक्त सिर्फ उन ब्रांड को चुनें जो रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स और फर्मवेयर पैचेस प्रोवाइड करती हैं। हर डिवाइस के डिफॉल्ट एक्सेस क्रेडेंशियल को सेटअप करते वक्त ही चेंज कर दें और उनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करें। दोस्तों, ये था नए जमाने के स्कैम से बचने का तरीका। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नए जमाने के नए स्कैम पर बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सभी को खुश आमदीद है उस शो में जिसका नाम है जूनियर जनाब। और भाई मैं हूँ आरजे सफा, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं आपको जमा करती हूँ, लेकर आती हूँ, जोड़ती हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आपको उन लोगों से जिनके बारे में आप कह लें कि सितारों की तरह रोशन होते हैं, छोटे से लेकिन सितारों की तरह रोशन होते हैं। इनकी उम्र पे मत जाइएगा, लेकिन इनकी इस छोटी सी उम्र में इनके पास अचीवमेंट बहुत सारी होती है। साथियों आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक ऐसी यंग अचीवर जिन्होंने ये साबित कर दिया भाई कि अगर हौसला बुलंद हो तो भाई मंजिल दूर नहीं है। साथियों मैं बात कर रही हूँ आस्था की। आज मेरे साथ स्टूडियो में आस्था मौजूद हैं, और आस्था के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ कि यूँ समझ लें कि वन वर्ड में मैं कहूँ ऑलराउंडर हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है साथियों, अगर चलें आपको लिस्ट दे देती हूँ, ये पब्लिक स्पीकिंग, बास्केटबॉल, डिबेट, डांसिंग, ओलंपिक एग्जाम्स, आप नाम लें और आस्था की अचीवमेंट की लिस्ट में वो सब कुछ शामिल मिलेगा, बता रही हूँ भाई। 2023 में इन्होंने अपने स्कूल में ऑलराउंडर का अवार्ड भी जीता है। और साथियों ये अवार्ड सिर्फ कोई ट्रॉफी नहीं बल्कि उनकी लगन और डेडिकेशन की पहचान है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे, इनको कोई चैलेंजेस नहीं हुए, इनकी कैसी जर्नी थी, इन्होंने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आस्था की ही जबानी हम उनसे पूछेंगे कि आखिर इतना कुछ अचीव कैसे कर लिया भाई इतनी छोटी उम्र में, और उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, उन्होंने कोई ख्वाब देखे हैं फ्यूचर के बारे में। अब इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी माशाल्लाह से लिस्ट हो जाए अगर इंसान की अचीवमेंट्स की, तो उनके दिमाग में क्या चलता है, कुछ रह गया है कि उनके पास से वो कहें कि मैं अचीव कर सकूं। तो भाई हम वेलकम करते हैं आस्था को। आस्था हेलो, हाउ आर यू?
3: हेलो मैम, आई एम फाइन, हाउ आर यू?
2: आई एम ऑल गुड। अच्छा आस्था ये बताएं कि नर्वस तो नहीं फील कर रही?
3: नहीं नहीं,
2: वैसे ये होना नहीं चाहिए क्योंकि माशाल्लाह इतनी भाई फुल टाइम अचीवर चल रही हैं, तो कहाँ से नर्वस फील करेंगी। अच्छा ये बताएं आस्था, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर लिसनर्स इन योर ओन वर्ड्स? आस्था कौन है, आस्था कितने साल की हैं, कुछ भी अपने बारे में थोड़ा बहुत।
3: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आस्था और मैं ग्रेड 8 की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम डीपीएस मॉडर्न इंडियन स्कूल, एंड आई एम 13 ईयर्स ओल्ड।
2: माशाल्लाह 13 ईयर्स। देखें अब अगर इन्होंने जता ही दिया कि मैं 13 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो ये इसलिए जता रही हैं कि सुन लें कि ये एज के हिसाब से नहीं होती अचीवमेंट्स। अच्छा आस्था टेल मी, हाउ डिड योर जर्नी एज अ मल्टी टैलेंटेड अचीवर बिगिन? एक होता है ना, हम कहते हैं कि भाई किसी एक डायरेक्शन में लग जाओ तो अचीवमेंट हो जाती है, वो पूरा हो जाता है। ये मल्टी टैलेंटेड होने का क्या कोई शौक है, कोई राज है, क्या है क्या?
3: नहीं असल में कोई राज नहीं है, बेसिकली मतलब आई थिंक जब से मैं 4-5 साल की हूँ मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे बहुत से क्लासेस में डाले।

0: लाइक छोटे पर से ही ड्रॉइंग में स्केटिंग में डांसिंग में. तो इवेंचुअली आई थिंक वन गुड क्वालिटी अबाउट माई सेल्फ इज कि अगर मैं कोई एक चीज सीखूँ तो मैं अपनी पूरी मतलब जी जान लगा देती हूँ.
1: सही.
0: सो आई गेट इवेंचुअली गुड इन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड आई थिंक उसी से मतलब मेरे इंटरेस्ट हर चीज में मतलब बहुत से अच्छे से हुए. तो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट मल्टी टास्किंग का जो जर्नी उधर से शुरू हुआ.
2: अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाता है. ठीक है, ओके. अच्छा ये बताइएगा, हु और व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन योर अर्ली इयर्स. कहते ना कोई एक हो हमारे दिमाग में, मुझे फलानी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, या फॉर गर्ल्स हमें होता है कि हमारी मदर हमारे लिए एक रोल मॉडल होती. आपके लिए कौन था?
0: मेरे लिए मेरी बड़ी दीदी थी.
1: यू लाइक मी, माय मॉम एंड माय सिस्टर, आई आल्सो ऑलवेज लुक अप टू देम. ओके, एंड शी इज आल्सो अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन.
0: शी इज आल्सो अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड आई थिंक फ्रॉम हर द वन थिंग आई हैव लर्नड इज कि मतलब आई थिंक जितनी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले उतने उन्हें नहीं मिले थे. तो मतलब जैसे मुझे छोटे पर से ही लाइक मम्मी ने मुझे इतने सारे क्लासेस में डाला, पर उन्हें उतने नहीं थे जहाँ पे हम पहले रहते थे. सो व्हेन शी यू नो लाइक केम टू 8th स्टैंडर्ड एंड ऑल, तो उसमें पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ते जाता है, बट एट द सेम टाइम शी बैलेंस्ड एवरीथिंग. सो यू नो एंड वी हैव लाइक 8 इयर्स एज गैप बिटवीन अस एंड मेरा एक बड़ा भाई भी है. हाँ, तो फिर यू नो आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हर एंड शी इज ऑलवेज बीन सच अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी. सब कुछ बैलेंस करना एंड यू नो एट द सेम टाइम बीइंग अ रियली काइंड पर्सन एंड डूइंग एवरीथिंग. सो That's what has inspired me.
2: अच्छा जी. अच्छा ये बताएं कि अगर आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात की जाए, तो वो जो अवार्ड आपको मिला फर्स्ट टाइम, यू वर्न समथिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग व्हेन वी फर्स्ट टाइम अचीव समथिंग, वी हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट इट. तो हाउ, व्हाट वर योर फीलिंग्स, व्हाट एग्जैक्टली वाज गोइंग इन योर माइंड, इन योर सेंसेस के भाई क्या होगा, क्या किया है, कुछ ऐसा जो आपको याद हो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सा.
0: जी, तो मेरा फर्स्ट एवर अवार्ड मैंने जीता था 4th स्टैंडर्ड में, व्हेन आई वॉन अ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन हिंदी. एंड स्टोरी बड़ी फनी सी थी, इट वॉज अबाउट एन आलसी ब्राह्मण. तो हाँ, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा ऑडिशन था. मैम ने मुझे कॉल किया एंड बोला कि ऐसा होने वाला है, तो इफ यू लाइक यू कैन सेंड मी अ वीडियो. तो मैंने उन्हें भेजा एंड आई गॉट सेलेक्टेड. सो एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम डूइंग लाइक एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन और लाइक रियली बिग कॉम्पिटिशन, आई डिडंट इवन नो मोर अबाउट इट. हाँ, तो मैंने उन्हें भेजा एंड आई गॉट सेलेक्टेड. फिर उन्होंने मुझे एक स्टोरी भेजा एंड आई वाज जस्ट लर्निंग इट. फिर ऑब्वियसली उस टाइम मतलब नर्वसनेस भी रहती है, बिकॉज माय वेरी फर्स्ट कंपटीशन एंड आई डिड नॉट टेक इट दैट सीरियसली जितना मेरा स्कूल ले रहा था, बिकॉज आई वाजंट रियली अवेयर. हाँ, इनफैक्ट मुझे लास्ट दिन तक पता भी नहीं था कि मुझे एक दूसरे स्कूल में जाना है उसे बोलने के लिए. अचानक से मैम ने बोला ठीक है तुम रेडी हो, मैंने बोला हाँ. फिर मैंने बोला मैम स्कूल में होगा ना, बोला नहीं हम जाने वाले दूसरे स्कूल में. हम लाइक ओ ओके ओके. हाँ, फिर वो हमें लेके गए थे प्रिंसिपल से मिलने. फिर मैम ने बोला कि यू नो वी हैव टू विन दिस एंड यू नो स्टे काम एंड एवरीथिंग. And I went there and I had the competition and it was a fantastic thing. And though I was nervous, but I however said it and I'm just sitting calmly and then ma'am is like, yeah, we result announced. I'm like, aren't you nervous? I'm like, should I be? Yeah, I mean, okay, somewhat. And ma'am is like, okay. And then they announced and you know how they say the result from the third place, then second place. They said third place and I did not have that much hope, though I knew I did it very well, but it was my first time. So I was like, okay, agar nahi bhi ho, toh it's fine. Then second prize, Aastha Malha. I was like, oh wow.
2: Okay, it was great.
0: Yeah, because मतलब इतनी मेहनत भी मैंने की थी एंड उस टाइम वो थी कोविड एरा, राइट? तो फिर बहुत बार मतलब हमारे ऐसे ग्रुप वाइज हम जा रहे थे ना स्कूल, ग्रुप वन ग्रुप टू, तो मुझे हर दिन आना पड़ रहा था स्कूल प्रैक्टिस के लिए एंड बहुत बार मतलब क्लासेस के बीच में भी मैम ने बुलाया था. इतनी मेहनत और टीचर्स भी जाने लगी थी कि इस बच्चे का कोई तो कंपटीशन है, इसलिए रोज रोज आ रही है स्कूल. तो इट वाज
2: योर हार्ड वर्क पेड ऑफ.
0: यस,
2: ओह माय गॉड, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. अच्छा ये बताएं कि ये जो हम कहते हैं ना डिफरेंट एक्टिविटीज का शौक होता है, ये आपको शुरू से ही था या कहीं जाकर एक टाइम आता ना जब हम कहते हैं नहीं, आई वॉन्ट टू बी मल्टी टैलेंटेड, आई वॉन्ट टू डू मल्टीपल टास्किंग और मल्टीपल एक्टिविटीज. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, एक चीज को पकड़ो और आई विल डू माई बेस्ट इन. तो ये शौक जो मल्टी एक्टिविटीज का था, ये पहले से था?
0: आई वुड से पहले से इतना नहीं था. देखो मेरी इंस्पिरेशन मेरी बड़ी दीदी थी, तो मुझे लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल होता है कि
1: अच्छा?
0: मतलब हाँ, मुझे लगा कि ओके मोस्टली आई थिंक सभी लोग बहुत से क्लासेस करते हैं, बहुत से इंटरेस्ट होते, तो आई थॉट इट्स वेरी नॉर्मल. फिर धीरे धीरे जब स्कूल में कॉम्पिटिटिव एटमोसफियर ज्यादा बढ़ा, तो हम लाइक ओ मतलब एवरी वन हैज वन पर्टिकुलर इंटरेस्ट दे गोइंग फॉर एंड व्हेन समवन आस्क्स मी माय हॉबीज आई एम गिविंग देम अ लिस्ट ऑफ थिंग्स.

0: they're like, oh, तुम मतलब तुम्हें ये सब कुछ आता है? Like, oh, okay. अब लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर. सुनते रहिए FM 107.
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
0: ये होता है अक्सर औकात ये भी होता है ना, when you are मल्टी टैलेंटेड पर्सन, आप मल्टीपल एक्टिविटीज करते हैं, तो फ्रेंड्स के सर्कल में कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि फ्रेंड्स आर टॉन्टिंग यू के यू बूस्टिंग अबाउट योर सेल्फ टू मच और समथिंग के जो ना वो शो ऑफ कर रही है बहुत कुछ. हाँ, इट हैपेंस समटाइम्स. पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन. आई डोंट नो व्हाई बट माइट बी दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट या कुछ ऐसा. आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? What is the particular thing which you have heard और आप कहें कि ये तो मुझे सुनने को मिलता ही मिलता है.
2: आई थिंक जैसे मतलब हमारे स्कूल में लाइक माई प्रिंसिपल इज वेरी सपोर्टिव ऑफ यू नो चिल्ड्रन. सो व्हेनेवर वी इन अ कॉम्पिटिशन हमारा यू नो नाम आता है वेबसाइट पर, स्कूल के फेसबुक पर, तो ऐसे कई बार सपोज मेरे नाम आते हैं तो आता है सपोज, या फिर कोई ना कोई टीचर इज शी इज कमिंग इन क्लास एंड शी लाइक मैम आई वांट टू आस्क फॉर दिस कॉम्पिटिशन दैट कॉम्पिटिशन. तो ऑब्वियसली क्लास में इसको भी पता है कि ये सब कुछ चल रहा है. तो येस आई थिंक आई वुड से स्लाइट उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस तो आता है व्हेन आई कम बैक फ्रॉम लाइक अ प्रैक्टिस एंड देन दे आर लाइक यू नो कहा गई थी लाइक टीचर पूछे तो मैं उनको बताती हूँ लाइक मैम आशा तो हमेशा ही बाहर रहती है एंड येट शी इज यू नो एबल टू यू नो द स्कोर द मार्क्स एंड एवरीथिंग. तो आई एम लाइक ओके इज दिस अ गुड वे और यू नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से बिकॉज इफ आई एम एबल टू बैलेंस एवरीथिंग एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स गॉड्स ग्रेस दैट आई एम एबल टू डू इट.
0: ऑफ कोर्स
2: या एंड या देयर विल बी पीपल हु आर यू नो ट्राइंग टू पुल यू डाउन एंड ट्राइंग टू से बैड थिंग्स अबाउट यू बट इट्स ओके जस्ट यू नो मेंटेन योर थिंग्स एंड लाइक दैट. तो या दैट इज कॉमन दैट आई हियर इज की मतलब ये तो सब कुछ ही करती है, इसे ही सब कुछ क्यों मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है,
0: ये होता है, ये होता है. अच्छा, अ वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है ये कि व्हाट डू यू थिंक, डू यू बिलीव इन लक और हार्ड वर्क?
2: ओके दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन.
0: या आई रियली वांट, आई विल टेल यू व्हाई आई वांट टू नो अबाउट इट. बिकॉज़ होता ये है कि सम पीपल डोंट क्रेडिट देयर हार्ड वर्क दैट मच दैट दे शुड. आर यू वन ऑफ देम कि जो सोचे कि भाई मेरी तो मतलब लोग कहते हैं ना आपको फीड कर देते हैं कि भाई इसकी तो लक अच्छी है, इसकी तो लक अच्छी. एवरी टाइम यू हियर दिस पीपल आर नॉट लुकिंग इनटू हाउ मच हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इनटू दैट थिंग व्हिच यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन. आप रातों को सोते नहीं हो, आप प्रॉपरली खा नहीं पाते हो, आप एक ऐसा लगता है जैसे एक हम कहते हैं ना तराजू हमने पकड़ा होता है कि एकेडमिक्स भी बैलेंस करने हैं, एक्टिविटीज बैलेंस करनी है, अपने आप को भी खुश रखना है. तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट योर हार्ड वर्क और इज इट द लक यू गिव मोर क्रेडिट टू?
2: आई बिलीव कि लक भी उन्हीं का साथ देता है जो हार्ड वर्क करते हैं. लक विल नॉट जस्ट यू नो रैंडमली कम टू यू कि आप बस बैठे हो एंड यू जस्ट एक्सपेक्ट कि यू नो आई शुड गेट अपॉर्चुनिटीज, आई शुड गेट दिस. नो, हाँ भले ही अगर यू नो इफ आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन समथिंग आई वुड कॉल दैट एज लक. बट इफ यू नो विनिंग दैट ओके थोड़ा बहुत मे बी यू नो 10% 5% लक का होता है बट मोस्टली इट इज योर हार्ड वर्क. लक विल नॉट जस्ट रैंडमली कम टू यू, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन दैट.
0: मतलब बात बिल्कुल सही बैठती. मैं बिल्कुल सही सोच रही थी कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, इट्स जस्ट द सम पीपल ग्रैब इट, सम पीपल डोंट. वो कहते हैं ना रेस स्टार्ट होती है तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रेस शुरू में ही नहीं भागते. तो इट इफ यू रियली वांट टू विन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. You might not be a multitasking person, but you have to start from somewhere. कुछ बच्चों का ये भी होता है कि वो कहते हैं हम academics ही पूरे कर लें, वो ही बहुत बड़ी बात है. तो you have to for such kids, you have to start. ये मत देखें कि आप जीतेंगे हारेंगे. The first thing should come into your mind is I will participate. अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि जैसा कि मैंने शुरू में भी आपके इंट्रोडक्शन में सबको बताया, आपने बास्केटबॉल, डिबेट्स, डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह की हुई है, इन सारी एक्टिविटीज़ में जो जिनके अंदर आप इन्वॉल्व हैं, इनमें से आपकी आप कहें ना सबसे फेवरेट वाली कौन सी है? आपकी एक पर्टिकुलर तो होगी ना कोई, तो वो कौन सी वाली है?
2: आई थिंक पर्टिकुलरली मैं कहूँगी पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज आई थिंक ये जर्नी, मतलब आई डिस्कवर्ड मेरा टैलेंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आई थिंक इन थर्ड ग्रेड. उसके पहले यू नो इट वॉज डांसिंग एंड एवरीथिंग, गेस्ट आते घर पे तो उन्हें डांस करके दिखाना, एंड दैट वाज लाइक काइंड ऑफ माय हॉबी, राइट?
0: गर्ली स्टफ होता है वो, हाँ, बैलेरिना एंड दिस एंड दैट. या
2: फिर उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग, आई थिंक अभी भी करेंटली मेरा सबसे फेवरेट विल बी पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में एक इंटर हाउस कॉम्पिटिशन हुआ था, इट वॉज अबाउट डिबेट. एंड लास्ट ईयर लाइक हमारा स्कूल क्या करता है कि देयर विल बी स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th ग्रेड एंड वन स्टूडेंट फ्रॉम 7th ग्रेड. लास्ट ईयर आई वॉज इन 7th, सो फ्रॉम द इंटायर ग्रेड आई वॉज सेलेक्टेड एंड वॉज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. But thing is that I did not know much about debate. So my seniors, you know, they helped me in everything. And we went till the finals. But we unfortunately couldn't win the finals. But it's okay. It was an experience.
0: Yeah, it was an experience.
2: Yeah. And again, this year, I'm in 8th. So humare grade se do bache select honge. So it was me and this one more boy. Now we both, abhi I knew about debate basics, right? So we had to train this one girl from 7th. And like me, when I was in 7th, she's also a beginner. She didn't know anything about debate. So I would say, matlab jab responsibility khud par aati na, aisa lagta hai ki, oh, how did these, you know, my seniors handle me as a kid? So, you know, I kind of, you know, trained her and everything like that. And then from that moment, and I think from that moment, I would say ki, when you want to teach something to someone, you have to explain them very well. And I would say ki, I did a very well job, because that girl, she understood debate basics, I think, within like 2 to 3 days. And we won the semifinals, we won the finals as well.
0: Very
2: so,
0: good.
2: Yeah, and since I was a senior this time, I felt really, really proud about it.
0: Ab pata chal raha hai, teacher ko kaisa feel hota hoga. Acha, the thing about making others learn is, kuch bacche aise hote hain, would you agree on it? कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास जितनी नॉलेज हो ना, दे जस्ट ट्राई टू कीप इट टिल देम. वो कहते हैं लिमिटेड, किसी को मैं इतना एक्सेस नहीं दूँ तो ये हमसे आगे निकल जाएंगे. एंड एट द अदर साइड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, दे वेरी हेल्पफुल, दे वेरी काइंड. अच्छा मैं, मुझे आता है, मैं तुम्हें भी सिखा देता हूँ. तो होता ये कि जो बच्चा ऐसा होता है ना, जो दूसरों को भी सिखाता है, आई थिंक कि जब आप दूसरों को सिखाते हो ना, यू गेट टू नो वेयर, इन विच टॉपिक यू आर नोइंग, यू आर हैविंग लेस नॉलेज, आप फिर उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो.
2: यस.
0: तो क्योंकि एक बात होती है ना कि मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड आई जस्ट गो ब्लैंक, माइंड फॉग हो जाता है, और आप कहते हो हाँ ये भी तो एक सवाल उठ सकता है लेकिन इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है. यू गेट टू नो योर वीक पॉइंट्स व्हेन यू आर मेकिंग अदर स्टडी. तो ओके, मतलब यू आर अ वेरी हेल्पफुल कम्युनिकेटिव पर्सन, माशाल्लाह माशाल्लाह. ओके, अच्छा ये बताएं, वो कौन सी फर्स्ट एक्टिविटी थी जो आपने शुरू की थी?
2: फर्स्ट एक्टिविटी
0: कहाँ से शुरू, ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था?
2: मतलब ओके, मैं जिस कंपाउंड में रहती हूँ, इट्स फिल्ड विद टैलेंटेड पीपल, लाइक यू एवरीवेयर यू गो द पीपल यू नो टीचिंग अदर्स व्हाट टू डू, लाइक क्लासेस एंड एवरीथिंग. तो बड़ा ही यू नो, इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग, माय मॉम जस्ट रैंडमली, मम्मी ने एक मुझे डांस क्लास में डाला एंड आई गो ओवर देयर. एंड ऑब्वियसली मेरी बड़ी दीदी वाज माय इंस्पिरेशन, सो शी वाज आल्सो लर्निंग डांस एंड एवरीथिंग, एंड आई लर्न, एंड द डांस टीचर वाज वेरी इंप्रेस्ड यू नो विद माय डांस. एंड विद दैट आई रैंडमली गिव यू नो लाइक एन ऑडिशन इन स्कूल एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट एज वेल. तो यस, फ्रॉम दैट आल्सो द स्कूल टीचर ने भी डिस्कवर किया डांसिंग वाला
0: टैलेंट.
2: एंड उसके साथ साथ आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आई वाज गोइंग फॉर स्केटिंग क्लासेस, आई वाज गोइंग फॉर ड्राइंग क्लासेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो जर्नी की आई थिंक फर्स्ट एक्टिविटी दैट आई स्टार्टेड वाज डांसिंग. उसके बाद से
0: देन सही. अच्छा ये मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम कहते हैं ना कि इट टेक्स अ होल विलेज टू ट्रेन अ चाइल्ड, तो वो आपके ऊपर बनता है कि आपका एनवायरमेंट माशाल्लाह इतना अच्छा था आसपास का. जैसे आप कह रही हैं, एक तो फैमिली से स्टार्ट होता है, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स पुट टू मच एफर्ट इन यू, ठीक है ओके, और फिर आसपास की आपकी गैदरिंग से भी, ठीक है ओके. अच्छा ये बताइएगा, आप मुझे बताएं कि एक बेसिक सा क्वेश्चन जो हर कोई पूछेगा, कि ये बताएं कि हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड योर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज. भाई ये क्या ये अगर आपने मुझे इस ताले की चाबी दे दी तो भाई हमारा भी कुछ भला हो जाएगा. तो okay. ये बताएं कि हाउ द बिग क्वेश्चन मार्क कम्स इन, हाउ डू यू डू दैट?
2: This is like, I have been asked this question so many times till now, so many times. Okay, bada hi simple sa concept hai. If you keep yourself motivated, I believe more in discipline than motivation, because this takes, you know, longer, you will be able to achieve anything. ऑब्वियसली देयर हैव बीन टाइम्स कि मुझे लगता है कि अरे सब कुछ मैं कैसे बैलेंस करूंगी, यू नो आई थिंक आई शुड ड्रॉप आउट फ्रॉम समथिंग, इट हैपेंड वेरी रिसेंटली विद मी एज वेल. बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो यू जस्ट टेल योरसेल्फ कि यू आर ऑल्सो ह्यूमन, यू ऑल्सो फील टायर्ड, इट इज ओके, इट इज ओके, यू जस्ट रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड इट. यू नो अगर दिल में ऐसा लगता है कि यू नो आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश समथिंग, सोचना बड़ा ही आसान है बट टू डू समथिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. एंड यस जर्नी में यू विल फील अ लॉट टाइम्स, यू विल फील टायर्ड, यू विल फील डीमोटिवेटेड, यू विल फील लाइक कि मुझे नहीं करना है अभी, आई वांट टू गिव अप, बट यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट इट्स ओके, इट हैपेंस समटाइम्स, यू नो यू कैन टेक अ ब्रेक बट यू डोंट हैव टू स्टॉप.
0: एग्जैक्टली,
2: देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पुटिंग अ पॉज एंड पुटिंग अ फुल स्टॉप.
0: ओके, आई फील टायर्ड, यस, टेक अ ब्रेक, then restart
2: again, but don't just completely give up. Remind yourself why I started this, because it takes a lot of courage also to think about things, you know. I wouldn't say ki randomly tumhare dimag mein thought aaye the ki you know I want to do this, I want to do that. Remind yourself ki if I was brave enough to think ki mujhe you know I want to balance both the things, then I must be brave enough to continue with these things as well.
0: Sahi
2: so yeah, and time management is also a big factor. Agar aap time acche se manage kar pate ho, then you can manage both studies and extracurriculars, it will be easy for you.
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
0: अच्छा, डू यू फॉलो दैट? एक होता है ना, हमारे पास स्केड्यूल होता है, कुछ हम अपने लिए टाइम टेबल बनाते हैं. आजकल तो माशाल्लाह से मोबाइल्स भी आए हैं बच्चों के पास, मोबाइल्स के अंदर जो है ना नोट पैड्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने डेली के टास्क लिखते हो. आई फील इफ यू आर नॉट राइटिंग डाउन समथिंग, राइटिंग डाउन ऑन अ पेपर, राइटिंग डाउन इन योर मोबाइल, डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट स्टफ डाउन, मेक अ टू डू लिस्ट एंड देन फॉलो इट? डज दैट टेक ऑफ द एंजाइटी ऑफ द शोल्डर कि भाई हाँ मैंने एक लिस्ट बनाई थी एंड आई अचीव्ड इट? तो आप ऐसा करते हो, कोई लिस्ट चीज बनाते हो या आप कहते हो नहीं अच्छा ये एक रैंडम सी बात आई दिमाग में, आज ये कर लूंगी, आज वो कर लूंगी, आज वो कर लूंगी, कुछ ऐसा है जो आप फॉलो करती हो?
2: हाँ, आई मीन एज अ मल्टी टास्किंग पर्सन आई वुड से कि मतलब बहुत सी चीजें होते करने को, एंड आई थिंक सब कुछ हम याद नहीं रख सकते.
0: Exactly.
2: तो मैं ऐसे एक पेपर पे नॉर्मली आई जस्ट राइट इट इन द पेपर एंड एक बॉक्स बना दूंगी उसके बाजू में, तो यू नो आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क जब उसको टिक करते तो वो जो यू नो सेटिस्फैक्शन मिलती है,
0: तो जो आपको एंजाइटी हो रही होती है ना, एंक्शियसनेस हो रही होती है, नहीं ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उससे बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यू फील अचीव्ड. अच्छा ठीक है. अच्छा ये बताइएगा कि आपने हमें बताया था कि आपको 2023 में ऑलराउंडर का अवार्ड मिला था, आपके स्कूल से मिला था, राइट? तो ये बताएं कि वॉट एक्चुअली डिड इट मीन टू यू, क्योंकि इतना कुछ जब इंसान अचीव कर रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं जाकर आइदर वी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट या हमारे अंदर ना एक हम कहते हैं ना एक वो आ जाती है पर्टिकुलरली क्या कहूँ मैं, वी फील ओवर प्राउड, ओवर अचीव्ड, और हम कहते हैं ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल था. तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कहें ये तो एक मामूली सी चीज़ थी, और वो जो अवार्ड पर्टिकुलरली आपको मिला था, डिड इट एक्चुअली मीन, वो एक फीलिंग आई थी कि भाई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो?
2: जी नहीं, जब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं था कि मेरा स्कूल को ऐसा अवार्ड देता है फॉर यू नो अचीविंग लॉट. आई वाज जस्ट यू नो डूइंग समथिंग दैट फॉर फन, आई वाज जस्ट यू नो पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग, आई गॉट अपॉर्चुनिटी, जस्ट यू नो वर्क हार्ड, गेट द अवार्ड, एंड आई डिड नॉट नो द अवार्ड समथिंग लाइक दिस अंटिल आई वेंट टू सिक्स ग्रेड. इट वॉज अ नॉर्मल डे, आई वॉज सिटिंग इन द इंग्लिश क्लास, दिस वन बॉय ही जस्ट कम्स एंड ही इज लाइक मैम कैन आई हैव आस्क्ड हिम, मैम इज लाइक ओके गो, एंड आई गो एंड आई यू नो फॉलोड हिम टू द ऑडिटोरियम एंड आई गो एंड देन देयर इज अ टीचर स्टैंडिंग ओवर देयर, शी शोड मी अ लिस्ट एंड देयर वाज अ लिस्ट ऑफ माय अचीवमेंट्स ओवर देयर, एंड शी इज लाइक कि you know just read if your name spelling is correct and these are your achievements, and I was like yes ma'am, and then she told me to sit down, I was like okay, and then they made me like you know walk on the stage and my achievements were being you know said by a teacher in the background,
0: okay,
2: and I'm just wondering what's happening, and then the teacher and then they said we would like to award Astha Malha an all-rounder award, it was a practice session, and I'm just there, I'm like oh okay. So, yeah, and then there are seniors, like there's one person from each and every grade who gets that award.
0: Okay, okay.
2: So my senior sitting over there, and they are very chill up. They knew that this is going to happen. It's just me who's clueless. I was like, oh, and I was the first one from my batch to get it, right? Okay. Because it starts from sixth grade. So, and the teacher's like, you're going to get this all-rounder award after like 2 days. And I'm like, oh,
0: wow.
2: Okay, wow. Oh, ye bhi hota hai. And I go to class and I'm still in shock. And people are asking, kya ho? Why did they call you? And I'm just like, I'm going to get an award. And they're like, oh, for what? And I'm like, for being an all-rounder. All and right. Even everyone around me shocked. They're like, you get an award for that? Like, for doing everything?
0: Wow. Like, ये एक नया ही एक्सपीरियंस के साथ ना, मतलब एक नया लेवल

0: चीज मुझे कभी नहीं भूलेगी, दैट फीलिंग और दैट पर्टिकुलर इवेंट आई विल नेवर फॉरगेट.
1: पर्टिकुलर इवेंट, ओके, आई थिंक इट हैड हैपेंड रिसेंटली. भले ही वो कोई बड़ा इवेंट नहीं था, इट वाज अ नॉर्मल स्कूल का, यू नो, लाइक इंटर हाउस कंपटीशन. आई टोल्ड यू अबाउट डिबेट. वैसे डिबेट के साथ साथ देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशंस आई वाज गोइंग टू. आई वाज इन डांस, आई वाज इन पोएम रेसिटेशन, आई वाज इन दिस ड्रामा टाइप ऑफ थिंग व्हिच इज कॉल्ड टाइम ट्रैवल कैरेक्टर. वी हैड कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड आई वाज अमिताभ बच्चन इन दैट.
0: ओह वाओ, ओके,
1: या, एंड आई हैड टू वेयर लाइक अ वाइट बियर्ड एंड एवरीथिंग. एंड वो बियर्ड का आइडिया भी मेरा था. एंड मैम वाज लाइक यू रियली वांट टू वेयर इट, एंड आई वाज लाइक यस, बिकॉज हमारा मतलब मोटिव इज टू हंसाना है हमें लोगों को, एंड वी वांटेड टू विन इट. सो आई एम लाइक, अगर ये लोगों को हंसाएगा सो व्हाई नॉट.
0: या,
1: ओके, दो पीपल मेड अ लॉट ऑफ फन ऑफ मी, बट आई वाज लाइक इट्स
0: यू आर द डियर डेविल, कम ऑन, इट्स ओके.
1: आई एम लाइक इट्स ओके, एंड आई लाफ्ड एट माई सेल्फ सो मच. ओके, आई लुक्ड एट माई सेल्फ द मिरर, आई एम लाइक, ओह ओके, आई लुक गुड. या, एंड उसी समय मेरी तबीयत बोले तो खराब हो गई थी. मुझे बुखार हो गया था, एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, आई हैड एग्जाम्स एज वेल.
0: सही.
1: Yes, and I think, and उस time मैंने I think थोड़े समय के लिए I think मैंने थोड़ी सी ना hope खो दी थी. I was like कि I don't think I'll be able to win first prize in everything, and maybe not even in one. I was like okay, because there was a lot of things I had to manage at the same time. मतलब बहुत सी चीजें हो रही थी, and I'm like, and मेरी तबीयत भी खराब थी, you know, I couldn't even make myself work for that. So मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही थी. That moment feels so bad when you're not able to do something you want to do because of your health and everything. So I felt really bad, but anyways I still worked hard. Like, जो होगा देखेंगे, भगवान की अगर कृपा रही तो हम जीत जाएंगे. एंड आई गो, एंड उसी दिन पे उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, एंड दे जस्ट गो लाइक फर्स्ट प्राइज, एंड यू नो माय हाउस का नेम. आई एम लाइक ओह वाओ, एंड दैट मोमेंट, ओके, जो थकान थी सब कुछ, इट जस्ट सब खत्म, जस्ट वैनिश. आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ एंड माय टीम एज वेल, बिकॉज एवरीवन हैड समथिंग ऑन द अदर गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स, बट यू नो still with that we just you know worked hard for everything. Sahi. That we did. And
0: acha ye bataye, itna kuch to mashallah se achieve kar liya hai, ye bataye particularly ke future goals ke bare mein kya planning chal rahi hai dimag mein, itna kuch experience kar rahi hain life mein to kuch socha hoga.
1: फ्यूचर गोल्स, ओके, तो मुझे भी ये बहुत से लोग ने पूछा है मुझे क्या बनना है फ्यूचर में. बट द थिंग इज, आई थिंक ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है बीइंग अ मल्टी अचीवर, इज कि यू नो यू गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज कि तुम्हें क्या करना है फ्यूचर में, बिकॉज यू नो यू हैव इंटरेस्ट इन लॉट ऑफ थिंग्स.
0: या,
1: बट यस, आई वुड लाइक टू पुट माई कम्युनिकेशन स्किल्स इन लाइक वन फैक्टर, समथिंग आई वॉन्ट टू डू. एंड आई वुड से लाइक सेकेंडली, आई वॉन्ट टू do something that includes my communication at the same time and my awareness about the you know surroundings, but I haven't really thought of something particular I want to do. So
0: abhi time hai. Acha bhai, ab hamare show ka time bilkul khatam hone ko ja raha hai, jaldi se mujhe ye bata dein ki jo aapke paas koi message hai, aisa short sa message jo aap dena chahengi apne chote listeners ko jo aapko sun rahe hain.
1: ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि यू नेवर लूज होप, वट एवर यू आर डूइंग जस्ट पुट योर फुल एफर्ट इन दैट. ओके, कीप प्रेइंग, ओके, कीप बी डेडिकेटेड, यू नो, बी डिसिप्लिन, बी मोटिवेटेड, एंड यू नो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, यू गेट टायर्ड, टेक अ ब्रेक, बट कंटिन्यू डूइंग थिंग्स एंड यू नो एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट ऑल इज वेल. थैंक यू.
0: चलें भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आपको एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस भी दे दिया कि थक गए तो आप पॉज ले लें, रेस्ट कर लें, लेकिन फिर से उठें और फिर से ट्राई करें. नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड. और हमारे जूनियर जनाब का आज का टाइम यहीं पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी एक नए शो में, एक नए अचीवर के साथ. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा FM 107, दिल से देसी.
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है के दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अदान का वक्त हो गया है.
3: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर.

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: न्यूज एट 7 PM Only on FM 107, Dil Se Desi.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس میں آنے والے دو شدید زلزلوں کے بعد متاثرین کی مدد کے لیے ہنگامی انسانی امدادی فضائی آپریشن شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ جبوتی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے مملکت بحرین پر ایران کی جانب سے متعدد ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں بحرین کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی سری پامالی کرا

0: امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا تھا کہ لبنان اور اسرائیل ایک ایسے فریم ورک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں جو دیرپا امن اور سلامتی کے لیے بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والی ایک تجارتی بحری جہاز پر ڈرون حملہ کیا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ ایک ڈرون نے جہاز کے اوپری حصے کو نشانہ بنایا جس سے معمولی نقصان پہنچا، تاہم جہاز اپنا سفر جاری رکھنے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی افواج نے حملے میں شامل دیگر تین ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ یہ الزام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران نے 17 جون کو ایک الیکٹرانک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے جس کا مقصد 28 فروری سے شروع ہونے والی کشیدگی اور تنازع کو ختم کرنا تھا۔ اس معاہدے کو خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی کوششوں کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے آج اعلان کیا ہے کہ روسی افواج نے شمال مشرقی یوکرین کے علاقے سومی میں ایک انرجی فیسلٹی کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق حملہ اسی علاقے کے شہر کونوٹاپ میں واقع ایک بجلی کے سب اسٹیشن پر کیا گیا جس کے نتیجے میں متعدد کارخانوں اور تنصیبات کو بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ یوکرینی افواج نے روس کے جنوب مغربی شہر وولگوگراد میں واقع ایک بڑے صنعتی مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ صدر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ ٹائٹن باریکاڈی صنعتی کمپلیکس پر FB5 فلیمنگو میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ روس کا ایک اہم فوجی صنعتی مرکز ہے جہاں توپ خانے کے نظام، خصوصی فوجی ساز و سامان اور میزائل لانچنگ سسٹمز کے مختلف پرزے تیار کیے جاتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں حالیہ دنوں میں مزید شدت دیکھی گئی ہے جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے کی تیل تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس اور گرد و نوا میں آنے والے دو شدید زلزلوں کے 2 روز بعد بھی بین الاقوامی امدادی اور ریسکیو ٹیموں کی باآمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی حکام کے مطابق زلزلوں کے نتیجے میں اب تک کم از کم 589 افراد جاں بحق جبکہ 2980 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سینکڑوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں یا ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ کر 10,000 سے تجاوز کر سکتی ہے، جس کے بعد یہ زلزلے گزشتہ ایک صدی کے دوران لاطینی امریکہ میں آنے والی سب سے مہلک قدرتی آفات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ دونوں زلزلے جن کی شدت 7.2 اور 7.5 ریکارڈ کی گئی بدھ کے روز عام تعطیل کے دن کاراکاس سے تقریباً 160 کلومیٹر مغرب میں پیش آئے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس میں آنے والے دو شدید زلزلوں کے بعد متاثرین کی مدد کے لیے ہنگامی انسانی امدادی فضائی آپریشن شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ جبوتی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے مملکت بحرین پر ایران کی جانب سے متعدد ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں بحرین کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی سری پامالی قرار دیا ہے۔ لبنان نے اسرائیل کے ساتھ امریکی ثالثی میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے کو اپنی خود مختاری کی بحالی اور بے گھر ہونے والے شہریوں کی واپسی کے لیے ایک ابتدائی قدم قرار دیا ہے۔ اور امریکی صدر نے ایران پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے ایک تجارتی بحری جہاز پر ڈرون حملہ کیا۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جامس جاسم اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے FM 107۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107۔ FM 107، دل سے دیسی۔
3: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आपके अपने दिल से जुड़े हुए प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो के सफर में वो पहले एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसकी अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है। और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती हैं, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब लाती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम दोहा डायरीज, जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी। और इसी सिलसिले में दोस्तों हमारे साथ जुड़ते हैं प्रोग्राम में एक मेहमान, जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं, ज्यादा पहचानते भी हैं और उनकी उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं जो अपनी वो हमारे साथ बयान करते हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका खास खास इस्तकबाल भी हम करते हैं। वो ऐसी बावकार और हर दिल अजीज शख्सियत हैं जिन्होंने दोहा के प्रोफेशनल, समाजी और अदबी हलकों में अपनी मेहनत, लगन और खिदमात के जरिए एक नुमाया मकाम हासिल किया है। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कम्युनिटी सर्विसेज, अदबी महफिलों, मुशायरों के इंतजाम और आपके जो खिदमत खल्क में तवील अरसे से सरगर्मियां हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी हैं, काबिल जिक्र भी हैं। सोशल मीडिया पर भी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं और चाहने वाले मौजूद हैं जो उनकी समाजी और फर्दी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। तालीमी एतबार से आपने MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की, जबकि पेशावर जिंदगी में वो इस वक्त MEP एंटरप्राइजेज में HR मैनेजर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों के साथ साथ समाजी और अदबी सरगर्मियों में भी इन्होंने एक मजबूत और मुस्तहकम पहचान कायम की है। दोहा के अदबी और समाजी हलकों में खास तौर पर QPL और बज़्म अहबाब के प्लेटफॉर्म पर उनका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो खातिन हजरात, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक मशहूर, मकबूल और काबिल एहतराम शख्सियत, जनाब सिराज अंसारी साहब। आइए उनके हुजूर चलते हैं और इस दिलचस्प गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका कहना दोहा के हवाले से और जितना भी उनका आज तक का वक्त गुजरा है उसके हवाले से। सिराज अंसारी साहब, आपका प्रोग्राम में दिल से इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
5: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं आप लोग?
4: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। सर आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे।
5: बहुत ठीक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हूँ मैं।
4: अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त निकाला कि हमें कुछ वक्त दे सकें और हमारे साथ अपनी स्टोरी और कहानी शेयर कर सकें।
5: सर ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने कॉल किया, आपने हमें याद किया। हम तो आपका रेडियो सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है, सबकी कहानी भी सुनते हैं हम। हमें लगता है कि हम हमारी होम कंट्री में हैं जब आप सबको सुनते
4: हैं। अहलन वसहलन। तो सर अब हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपनी शख्सियत को तीन अल्फाज में बयान करें तो वो क्या होंगे?
5: तीन अल्फाज में सर मैं ये कहूँगा कि फ्रेंडली कह सकते हैं आप।
4: ओके।
5: लीडरशिप।
4: ओके।
5: पॉजिटिविटी।
4: क्या बात है, बहुत खूब। सर आपके नजदीक दोहा में एक परफेक्ट दिन कैसा होता है?
5: सर परफेक्ट दिन देखिए आप, मेरे लिए परफेक्ट दिन वो होता है जब ऑफिस में कुछ अच्छा काम हो जाए, कुछ प्रोडक्टिविटी काम हो जाए, शाम को फैमिली के साथ घूमे, फिर दोस्तों के साथ गप्पे लगाएं,
4: क्या बात है,
5: और कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात करें, या फिर किसी लगता है कि सोशल वर्क में यार कुछ हिस्सा ले लें। अदबी प्रोग्राम की प्लानिंग चलते रहती है हमारी,
4: अल्हम्दुलिल्लाह।
5: तो मेरी नजर में ये थोड़ा सा अच्छा दिन गुजरता है।
4: क्या बात है,
5: परफेक्ट दिन इतना ही कह सकते हैं।
4: क्या बात है खासम खास,
5: अगर किसी के काम आ जाए आप, ये भी बहुत अच्छा दिन होता है।
4: क्या बात है सर। अब खासम खास अगर बात करें आपसे मुतालिक, आप जिन बज़्म से जुड़े हुए हैं और जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, JPL की बात करें या JPL से QPL और फिर बज़्म अहबाब तक का सफर कैसा रहा दोहा की रोशनी में?
5: बड़ी अच्छी चीज याद दिला दिया आपने, JPL
4: जी,
5: जद्दा प्रीमियर लीग से कतर QPL
4: जी।
5: सर ये सफर देखें आप, मेरे लिए सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का कफन नहीं था, बल्कि मेरी हमेशा से कोशिश रही कि लोगों को जोड़ने का सफर रहा कर। ये मेरे लिए लोगों को जोड़ने का सफर रहा। जिद्दा प्रीमियर लीग ने स्पोर्ट्स के जरिए सारे कम्युनिटी को जोड़ा, फिर QPL ने यहाँ पे उस को आगे बढ़ाया उस मिशन को, और बज़्म-ए-अहबाब अदब तहजीब ये एक्टिविटीज, मैंने सोचा कि यार बज़्म-ए-अहबाब उर्दू को जिंदा रखते हैं।
4: और कतर में तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वाले बहुत हैं, उर्दू के चाहने वाले बहुत हैं, और एक्टिविटीज से मुतालिक तो काम होता ही रहता है।
5: बस उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा कि यार उर्दू अदब को जिंदा रखा जाए, कुछ मुशायरा करा जाए, कुछ बड़े नामवर शायरों को बुलाया जाए, और कुछ अच्छे मियारी प्रोग्राम करवाए जाए।
4: बहुत खूब। सर अगर अब बात करूं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम दोहा से मुतालिक है और दोहा की यादों से मुतालिक है, तो एक बड़ा पर्सनल सवाल, शायद आप उसका जवाब दे सके, क्या जद्दा की याद आती है दोहा के अंदर?
5: दोहा के अंदर जद्दा की याद, देखिए मैं तो कहूंगा कि याद उनकी आती है जिन्हें भूलते हैं।
4: ओ हो।
5: मैं जद्दा के दोस्तों को कभी नहीं भूला और ना कभी भूल पाऊंगा। जद्दा के दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और बहुत बड़ा सर्कल था हमारा। और जब मैं लास्ट December 25 में वहां गया था 4 दिन के लिए, मैंने कहा कि 4 दिन का स्टे करूंगा मैं, उसके बाद फिर मैं, मेरे इंडिया का वेकेशन था, हैदराबाद जाना था मुझे, तो मैं 4 दिन के लिए गया था। लेकिन वहां के दोस्तों की इतनी मोहब्बत मिली, इतनी इज्जत, इतनी प्यार, वही पहली तरह 15 साल बाद गया हालांकि मैं, लेकिन इतनी मोहब्बत उन्होंने दिया कि मुझे 15 दिन एक्सटेंड करना पड़ा।
4: क्या बात है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर कि आप इतने टाइम बाद गए, तो दोहा में रहते हुए आपको उनकी कमी तो महसूस हुई, बट यहाँ रहकर और जो आपका सर्किल बना है और जितने लोग आपको मोहब्बत से नवाजते हैं, उसमें एक बड़ा खुशगवार वक्त गुजरा।
5: जी बिल्कुल।
4: क्या बात है सर। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पर थोड़ी ओरिजिन स्टोरी आपकी हम जानना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहला मेरा सवाल कि आपने दोहा आने का फैसला किस वजह से किया?
5: देखिए सर, दोहा का फैसला, मैं कुछ नई ग्रोथ चाह रहा था, नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में था, और मैं दोहा के बारे में बड़ा अच्छा सुनता था, मतलब दोहा कंट्री बहुत अच्छी है, वहाँ की हुकूमत बहुत अच्छी है, मैं सुनता था, जितना सुना था उससे बहुत कहीं कहीं कहीं ज्यादा पाया। तो मैं नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, नए कंट्रीज, वो हिजरत कहना जिसे कहते हैं, हिजरत करके देखें।
4: क्या
5: तो हमने हिजरत की है, और हिजरत करना कभी भी कामयाबी की तरफ लेके जाता है।
4: क्या बात है, बहुत खूब। सर क्या QPL का ख्याल पहले से था, या कतर आकर ये ख्याल ज्यादा मजबूत हुआ, या कतर आकर ही ये ख्याल पैदा हुआ कतर की स्पोर्ट से मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए, और जिस तरीके से क्रिकेट के भी चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, हम बर्रेसगीर की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो हमारा दिल क्रिकेट में बसता है, फुटबॉल तो है ही है सबका फेवरेट, बट ये जो आप एक क्रिकेट में आपने यहाँ पर लोगों के लिए आसानियां पैदा करी, और जितनी भी लीग्स वगैरह आप लेकर आए, तो इसके हवाले से ये जानना चाहूंगा कि क्या QPL का ख्याल पहले से था, या कतर आने के बाद यहाँ का शौक देखने के बाद लोगों के ये पैदा हुआ?
5: देखिए जब मैं ऐलान किया था जिद्दा में कि भाई मैं

0: कतर आके मजबूत हुआ तो यहाँ देखा कि मैं बहुत ही मोहब्बत के लोग हैं, बहुत मोहब्बत, बहुत चाहने वाले लोग हैं, और इनकी दिलचस्पी देखकर मुझे लगा कि यार यहाँ पे मेरी जरूरत है, इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तब मैंने शुरुआत की। मैंने क्रिकेट की शुरुआत यहाँ पे कतर में, कितने एक पूरी टीम भी नहीं बनती थी हमारी जब मैं 2011 में आया था, 6-7 बंदे होते थे हमारे। लेकिन मैंने कहा कि यार जुस्तुजू करो, मेहनत करो, तो आज QPL के अंदर 50 टीमें खेल रही
1: है। क्या बात है, क्या बात है, और बहुत मुबारक हो आपको। और इतनी आसानी पैदा करना क्रिकेट के लवर्स के हवाले से, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मैं कहूँगा सभी की तरफ से आपको, सिराज अंसारी साहब। सिराज साहब, कतर में आपका पहला दोस्त कौन था? मुझे मालूम है ये सवाल जरा मुश्किल है क्योंकि एक आदमी जिसके इतने चाहने वाले हो तो उससे ये सवाल कर लेना, तो अगर आप इसका जवाब देना चाहें।
0: ये सवाल बड़ा मजेदार अपने, इसीलिए मुझे हंसी भी आ गई है
1: जी।
0: क्योंकि मैं जब यहाँ पे शुरू आया था, उतना बड़ा सर्कल मेरा जिद्दा का बहुत बड़ा सर्कल था वहाँ पे, अभी जितना यहाँ पे है उतना ही बड़ा वहाँ पे भी था। लेकिन जब मैं शुरू आया था तो मैं दोस्तों के लिए तरस गया था। मेरे जैसा बंदा देखें दोस्तों के बिना रह नहीं सकता। अब मैं जब ऑफिस में था, पहला दिन गुजरा यार बहुत बोरिंग, दूसरा दिन बोरिंग, मैंने कहा कि यार कोई बंदा दोस्त मुझे चाहिए, दोस्त
1: कोई
0: तो दोस्त चाहिए होता है।
1: सही।
0: तो फिर मैंने एक ऑफिस में टी बॉय था नेपाली, अब जाहिर बात है बंदा जिस कम्युनिटी का है पहले उसी को पूछता है।
1: सही।
0: मैंने उससे कहा कि यार कोई हैदराबादी बंदा है यहाँ पे जिससे मैं दोस्ती कर सकूं, तो कहता है कि सर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक ऑफिस है, वहाँ पे एक हैदराबादी बंदा है।
1: ओके।
0: मैंने उसको ₹50 दिए, मैंने कहा कि उसको ले आ। वो बंदा अब्दुल कवी नाम था उसका,
1: अब्दुल कवी साहब, चलिए ये नाम हमें मिल गया जो पहले दोस्त बने यहाँ पे आने के बाद। क्या बात है,
0: अभी वो बंदा ऑस्ट्रेलिया चला गया,
1: ऑस्ट्रेलिया चले गया,
0: लेकिन बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा बंदा, फ्रेंडली नेचर वो भी।
1: चलिए उनको याद किया आपने, और इंशाल्लाह जब वो ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो इंशाल्लाह खुश भी होंगे। कतर की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा मुतासर किया सिराज साहब?
0: सर कतर की अगर मैं तारीफ करने बैठूं तो समझे आप दिन महीनों में, महीने साल में और साल सदियों में गुजर जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से तारीफ कभी कम नहीं होगी।
1: क्या बात।
0: कतर की डिसिप्लिन, कतर की तरक्की, यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के लोगों के अखलाक, यहाँ की हुकूमत, यहाँ के लेबर लॉ, एक किन किन चीजों की मैं तारीफ करूँ बताएं आप कतर की, और यहाँ की नीटनेस।
1: क्या बात, बिल्कुल सब
0: बहुत बहुत बहुत प्यारा, बहुत बहुत, कतर की जितनी तारीफ करो कम है,
1: उतनी कम है। सिराज साहब, अगर आपका पहला वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से मैं बात करूँ तो वो कैसा रहा यहाँ आने के बाद?
0: सर पहला वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लर्निंग रहा, ओरिएंटेड रहा। HR फील्ड में मुझे थोड़ी सी अपने स्किल्स को निखारने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा।
1: अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कभी लगा कि दोहा आने का फैसला सही था या नहीं? ये मुश्किल सवाल कर रहा हूँ मैं, मगर फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ।
0: देखिए शुरुआत में तब तो लगता है, सवाल जहन में आते हैं कि मैं आया क्यों, किस लिए आया, लेकिन मेरी अपनी नजर में मेरे जिंदगी के बेहतरीन फैसलों में ये एक फैसला था दोहा आने का।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: तो मेरे जिंदगी का बेहतरीन फैसला था ये,
1: माशाल्लाह। क्या कभी आपने सोचा कि ये डिसीजन सही था या नहीं? जवाब
0: बिल्कुल,
1: जवाब आपने दे दिया है ऑलरेडी, मगर फिर भी थोड़ा और बारीकी से।
0: नहीं, ये डिसीजन बहुत सही था, बहुत अच्छा था, क्योंकि कतर यानी मैं आने के बाद मुझे कतर के बारे में बहुत कुछ मालूमात हुए, कितना यहाँ पे डिसिप्लिन है, कितना अच्छा है। मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जाहिर बात है बंदा अकेला होता है,
1: बल्कि मैं तो कहूँगा कि अदबी जो लोग कनेक्टेड हैं अदबी महफिलों से और क्रिकेट से, तो उनके लिए ये फैसला बड़ा अच्छा रहा आपका कि आप यहाँ तशरीफ लाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करी। सिराज साहब, कभी आपको दोहा में तन्हाई या होमसिकनेस महसूस हुई?
0: देखिए शुरुआत में हुई थी, फैमिली नहीं थी और दोस्त अहबाब नहीं थे, तो उस वक्त मुझे हुई थी,
1: मगर वक्त रहते रहते जैसे
0: हाँ, लेकिन कम्युनिटी एक्टिविटीज

0: में मैं मुब्तला हो गया, उसके बाद फिर ये सब नॉर्मल हो गया मेरे लिए और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा सर्कल बन गया, बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त मिले हैं यहाँ पे, बहुत चाहने वाले मिले हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: मैं तो कहूँगा कि मैं दुनिया में यहाँ के जैसा लोग, चाहे वो कतरीर हो, चाहे इंडियन रहो, चाहे पाकिस्तानी रहो, कोई भी रहो, यहाँ के अखलाक, यहाँ के लोग, यहाँ के दोस्त बहुत मोहब्बत करने वाले आपसे, बहुत मोहब्बत।
1: क्या बात है। तो जब घर की याद आती थी तो आप अपने आप को कैसे संभालते थे?
0: घर की जब याद आती है तो मैं दोस्तों में चला जाता था, कम्युनिटी एक्टिविटीज,
1: सही,
0: सोशल एक्टिविटीज, क्रिकेट, ये सब में मैं अपना दिल।
1: जी जी, तो नए एनवायरनमेंट में, नए माहौल में और वर्क प्रेशर को मैनेज करना कैसा रहा?
0: मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा टफ चैलेंजेस थे मेरे लिए, और मेरी बचपन की आदत है कि जब तक चैलेंजेस ना हो तो मुझे मजा नहीं आता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। अगला सवाल मेरा यही था, इसका जवाब मुझे लगता है आपने दे दिया, मगर फिर भी अगर इसमें आप कुछ रोशनी डालें, क्या ऐसा लगा कि आपको सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी?
0: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हर नए मुल्क में इंसान को अपनी पहचान और नेटवर्क दोबारा बनाना पड़ता है। और शुरुआत में थोड़ा सा टफ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतना आसान होते गया कि भाई आप आगे बढ़ते जाओ, मंजिल खुद ब खुद मिलेगी।
1: क्या बात है। आपकी फैमिली का आपकी जर्नी में क्या रोल रहा सिराज साहब?
0: सर, फैमिली बहुत बड़ा रोल रहा। फैमिली का देखें, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होता है। मेरे पीछे, मेरी कामयाबी के पीछे तीन औरतों का हाथ है, एक माँ, एक बीवी, एक बहन।
1: क्या बात है, माशाल्लाह।
0: इन तीनों का सपोर्ट, इन तीनों की दुआएं मुझे बहुत आगे बढ़ाई।
1: क्या बात है।
0: कामयाबी की तरफ हमेशा बुलाती गई हैं इनकी दुआएं। और मेरी यहाँ पे जो मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, उसका सपोर्ट तो बहुत अच्छा रहा। उसके बिना देखें अगर फैमिली आपको सपोर्ट ना करे तो आप ये सब एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकते।
1: सही है, सही सही। किसी भी चीज में आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते जब तक अपनों का या घर वालों का साथ ना हो। अल्लाह ताला उन लोग को खुश रखे।
0: बिल्कुल। मेरे घर वालों ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरी कम्युनिटी कमिटमेंट को उसने सपोर्ट किया है, ये मेरे लिए बड़ी खुश नजर। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है।
1: अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश रखे। सर, दोहा में आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा?
0: सर, टर्निंग पॉइंट ये रहा कि जब मैं इन चीजों में एक्टिव हो गया और QPL जो बनाया मैं,
1: जी,
0: तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, अदर देन प्रोफेशनल की बात करूँ मैं।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल,
0: मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए इम्पोर्टेंट। देखिए, तो काम तो होता रहेगा, हर इंसान की जिंदगी में काम चलता रहेगा, चाहे वो मैनेजर लेवल में हो या लेवल पे हो।
1: सही,
0: ये काम चलता रहेगा।
1: सही, दुनिया।
0: लेकिन सबसे टर्निंग पॉइंट आपकी ये है कि कामयाबी आपकी किस तरफ ले जा रही है।
1: सही।
0: आपको मुझे बहुत अच्छे यहाँ पे दोस्त मिले हैं, बहुत अच्छी फैमिली मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: तो आज पीछे देखते हुए सबसे बड़ी सीख की अगर मैं बात करूं, कुछ ना कुछ आदमी सीखता जरूर है एक नई जिंदगी में, नए सफर में, तो अगर ये जानना चाहूं तो क्या कहना चाहते हैं?
0: देखिए, इंसान तो हर कदम पे सीखना चाहिए उसको। मुझे सीख ये मिली है कि मैं क्या कहूँ, भरोसा किसी पे भी नहीं करना चाहिए।
1: ओ, अच्छा।
0: किसी पे आप अंधाधुंध भरोसा ना करें तो बेहतर रहता।
1: आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें, ये कहना है, ये एक सीख है।
0: बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें और अपना सर्कल ऐसा रखें कि वो म्यारी रखें। आप ऐसे सर्कल में ना जाएं ताकि वो कुछ गलत काम कर दें और आपके सर पे आ जाएं।
1: सबको बर्दाश्त करना पड़े।
0: ये बहुत बड़ी सीख मुझे कुछ मतलब खासकर एक दो बंदों से मिली है कि मेरा फैसला उनसे दोस्ती करने का गलत था। कुछ जिसे मैं बहुत दूर कर दिया हूँ। आपका नाम भी खराब हो ना हो इसमें।
1: सही बात।
0: ये मेरी एक सीख थी और मैं दूसरों को भी एक हिदायत दूंगा या फिर एडवाइस दूंगा कि अपना सर्कल, अपने दोस्त अहबाब मियादी रखें, उसको फिल्टर करें। ऑफकोर्स सब मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन उसे फिल्टर करना चाहिए।
1: ऑलराइट देन।

0: तो सर अगर दोहा के हवाले से और बात करूं तो आपके लिए आज दोहा का क्या मतलब है?
1: दोहा का मतलब ये है कि मेरे लिए सेकंड होम है, और दोहा का मतलब ये है कि कामयाबी के सहरा में यानी क्रेडिट दोहा को देना चाहूंगा।
0: ऑलराइट, कोई वर्क प्लेस या डेली लाइफ का ऐसा मोमेंट जो आज भी यादगार हो?
1: देखें, वर्क प्लेस में आज भी मुझे याद है कि मेरी कंपनी में अल्लाह सुबहाना ताला के बाद जो मुझे साथ दिया है, इस कंपनी में मैं जब से आया हूँ आज तक इसी कंपनी में हूँ, इसका क्रेडिट जाता है मेरे जो लास्ट चेयरमैन थे अबू रशीद साहब, अल्लाह रसूल के बाद मैं उनको दूंगा कि वो मेरे लिए तारीख लम्हा था कि उन्होंने बहुत साथ दिया था।
0: जिंदगी आज भी यादें हैं उनकी और
1: आज भी दुआ में याद है वो। बिल्कुल, मैं उन्हें हर नमाज में जब दुआ करता हूँ तो उन्हें याद करता।
0: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे। आपकी जिंदगी में तीन खास चीजें या लोग अगर नाम लेना चाहते हैं तो, या खास चीजें ऐसी?
1: देखिए, तीन खास लोगों का नाम, देखिए मेरी फैमिली है, पहले तो फैमिली आती है ऑफकोर्स, दूसरा मेरे यहाँ के दोस्त अहबाब हैं, फिर जो मेरी पहचान बनी है वो क्यूपीएल और बज़्मे अहबाब से। तो जाहिर बात है फैमिली, दोस्त और क्यूपीएल बज़्मे अहबाब।
0: ओके, तो दोहा में अगर आपकी डेली रूटीन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है?
1: देखिए, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा दोस्तों से शाम में ऑफिस के बाद गपशप करें।
0: ओके, ये तो अच्छी बात है। ऑलराइट, तो अगर जिंदगी
1: एक्टिविटीज में कोई
0: जी, जी,
1: कोई सोशल एक्टिविटीज
0: जी
1: में इन्वॉल्व हो या किसी की हेल्प कर दें, ये मेरे फेवरेट रूटीन में से एक।
0: क्या बात है, अल्लाह ताला खुश रखे। अगर जिंदगी एक डायरी एंट्री होती तो आप उसका टाइटल क्या रखते सिराज साहब?
1: इसका टाइटल देखिए आप, मैं इसका टाइटल रखना चाहूंगा, बड़ा अच्छा नाम अभी जहन में आया है। सफर हो तो लोगों को जोड़ने का सफर।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और इसमें आप वाकई बाखूबी आप ये काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बढ़ते हैं आगे सिराज साहब, और क्या आपके साथ कभी दोहा में कोई फनी या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ जो शेयर करना चाहते हैं?
1: फनी तो हुआ है।
0: ओके, फनी तो रोज ही होते हैं, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स दोस्तों के साथ कह सकते हैं। चलिए,
1: एक दफा बंदा मुझे कह रहा था कि मतलब वैन को उसने वो पता नहीं कुछ अच्छा वर्ड किया था, बड़ा फनी था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन होते हैं फनी तो।
0: नहीं, इसमें एक और सवाल जो हम लोग अक्सर मैं करना चाहता हूँ, जो हम अक्सर देखते हैं दुआ में, क्या किसी अजनबी ने, स्ट्रेंजर ने कभी आपकी मदद की हो जब आपको जरूरत हो, आप रोड वगैरह पे हो? हम देखते हैं कि हमेशा माशाल्लाह हमारे कतरी यहाँ पर जो है वो लोग भी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो आपके साथ ऐसी कोई बात हुई है?
1: जी जी जी, मैं एक्चुअली देखें खतर में आमतौर पर लोग बहुत हेल्पफुल है, कोई भी नेशनलिटी कर देने बहुत हेल्पफुल है। लेकिन मैंने अभी कहा था आपसे पिछले आपके सवाल में कि मैं एक बंदे को हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखता हूँ, वो मेरे स्पॉन्सर है अबू रशीद साहब।
0: ओके,
1: जो चेयरमैन थे हमारे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की,
0: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करें। आपने यहाँ अपने क्लोज दोस्त कैसे बनाए तो हम जान चुके हैं, अब इसी के हवाले से वो कौन सा मोमेंट था जिसने आपको दिल से खुश या इमोशनल कर दिया?
1: देखिए, जब इमोशनल जब बंदा होता है, जब अगर आप कुछ मेहनत करते हो, कुछ जुस्तुजू करते हैं और कोई इवेंट आपका कामयाब होता है, उसके बाद लोगों ने कहा कि यार आपने हमें घर से दूर हैं हम, लेकिन वो महसूस होने नहीं दिया कि हम घर से दूर हैं, अपनापन मिला हमको यहाँ पे आके, आपकी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं उस वक्त।
0: भाई वाह,
1: मैं चाहता हूँ कि कुछ और अच्छा करूँ।
0: क्या बात है, माशाल्लाह, ये चीज आपको और ज्यादा अच्छा करने पे मजबूर भी कर देती है और खुश भी कर सकती है। अगर आप दोहा को एक खत लिखें तो आप क्या लिखेंगे?
1: दोहा को तो खत लिखने बैठा तो मैंने कहा ना कि भाई डायरीज के डायरीज खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये है कि मैं कहूँगा कि शुक्रिया दोहा,
0: वाह,
1: तुमने मुझे सिर्फ यानी रोजगार ही नहीं दिया, بلکہ ایک دوہا نے مجھے ایک نئی پہچان

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आर यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन।
2: ऑल राइट, द लिस्ट इज हियर भाई साहब। कागज लग गया है दीवार पे, आके सारे पढ़ लीजिए। आई फील लाइक रिजल्ट आया है। आओ जी, आओ रिजल्ट चेक कर लो आपके गाना लिस्ट में है कि नहीं। वैसे बहुत सारे गाने जो है लिस्ट में आ गए हैं और बहुत सारे गाने जो है लिस्ट से बाहर जा चुके हैं। बहुत सारे पायदान चढ़े हैं तो बहुत सारे सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए नीचे भी आ गए हैं भाई, और कुछ तो लिस्ट से बाहर ही हो गए। तो आज की लिस्ट टॉप 10 की क्या होगी जानते हैं
0: मेरे आपके संवाददाता दोहा वाले कबीर के साथ।
2: So, जितने भी लोग ट्यून कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी, दिस इज टॉप 10। मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड ये लिस्ट तैयार होती है जिसमें 10 गाने आप सुनते हैं जो बहुत ही चार्ट बस्टर्स हैं। उनके रीजन चार्ट बस्टर होने के बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि गाने के व्यूज कम है लेकिन गाना वायरल है, हो सकता है गाने का डांस नंबर बहुत बढ़िया है, स्टेप्स बहुत आगे जा रहे हैं, गाने के या तो व्यूज बहुत ही ज्यादा है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। मे बी यू डोंट लाइक द सॉन्ग बट द सॉन्ग इज अ हिट। सो सबके लिए सब कुछ है भाई शो में, सबके लिए सब कुछ है। और ये लिस्ट जो है हमने आपसे बात करके, आपकी मैसेजेस, हमारी टीम के मैसेजेस और ऑनलाइन रिसर्च करके तैयार किए हैं जो कि एफएम 107 पर गाने चल रहे हैं, तो उनको मिला जुला के अब लिस्ट में शुरू कर रहा हूं। सो हमारी लिस्ट आप जानते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड वी गो टिल द टॉप ट्रैक ऑफ दिस वीक। तो 10, 9 और 8 से शुरू करेंगे। गाना नंबर 10, ये अभी भी अपनी जगह पे बना हुआ है एंड आई एब्सोल्युटली लव द ट्रैक, बूम शाकलाका। ढांडा न्योली वाला और के एडोलेसेंट कृष्णा, दोनों ने भाई आग ला दी। हमारे ढांडा भाई ने तो भाई रणवे में तो रैप किया है, मैंने कभी सोचा नहीं था भाई, कभी नहीं सोचा था कि ढांडा भाई का इतना बढ़िया रैप आ जाएगा। वैसे तो वो रैप बहुत बढ़िया करते हैं, इज मेलोडियस, इज वेरी वेरी क्रिएटिव एंड राइट नाउ ही इज माय फेवरेट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फास्ट रैप ढांडा भाई से सोचा नहीं था मैंने। तो कृष्णा डूइंग हिज थिंग, कृष्णा ने बहुत ही इंट्रिकेट रैप किया है, बहुत जबरदस्त डीप मीनिंग वाला रैप जो कृष्णा इसके लिए जाने जाते हैं। एंड ढांडा भाई ने भाई क्या रैप किया भाई, गति आग ला दी भाई, मौसम जमा दिया, मौज आ गए। बूम शाकलाका इज एट नंबर 10 इस गाने का, नॉट जस्ट द ऑडियो बट वीडियो भी बहुत बहुत कमाल का है। दोनों ने हरियाणवी फील में गाने को गाया है, रैप किया है, सारे पीछे हरियाणा के उसमें अटायर में है एंड दे आर जस्ट क्रेजी। मैंने कभी कोलैब सोचा नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डांडा भाई और कृष्णा भाई एक दूसरे के साथ कभी गाने करने वाले हैं। हालांकि अब मैं समझ गया हूँ, मैंने एक डीकोड कर लिया चीज, अगर दो सेलिब्रिटी आपस में एक दूसरे के सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं तो पक्का है कि ये दोनों साथ में काम करने वाले हैं। मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, ओनली फॉर सिंगर्स, ये सिंगर्स पे लागू होता है। जो सिंगर्स आपस में सोशल मीडिया पे एक दूसरे के फोटो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, भाई साहब ये समझ लेना कि दोनों कभी कभी कभी ना कभी जाके कोलैब करने ही वाले हैं और वही हाल इनका भी हुआ है। तो कृष्णा भाई बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, डांडा भाई कमेंट कर रहे थे कृष्णा की वीडियो पे, एंड फाइनली इट्स हियर, बूम शाकलाका एट नंबर 10, डांडा भाई और न्यूली वाला, डांडा भाई न्यूली वाला नहीं, डांडा न्यूली वाला और कृष्णा दोनों एक साथ ऑन द सेम ट्रैक विच इज फायर। एंड नॉट जस्ट दैट, जैसे मैंने कहा ना, आपको याद होगा सुनिधि चौहान और कौन थे, श्रेया घोषाल, दोनों ही हमारे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से आती हैं। दोनों आपस से बात कर रही थी, देखा होगा आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के फोटोज पे कमेंट करना, बाद में गाना आया नहीं आया, अब जरा नजर रखना कौन किससे बात कर रहा है, कोलैब होने वाला है भाई। फिलहाल तो ये धुआंधार कोलैब एट नंबर 10, बूम शाकलाका, ढाना न्यूली वाला एंड के एडोलस साइन। आज अब अगले गाने पे जाते हैं। अगला गाना जी 9 नंबर पे है, एंट्री मारी है धमाल 4 के गाने ने। 2026 में धमाल 4 आएगी नहीं सोचा था मैंने, मगर बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। क्या चल रहा है? ट्रेंड चल रहा है भाई, क्यों यार मैं तंग आ चुका हूँ ये सीक्वल से, प्लीज बॉलीवुड प्लीज। ये तो बनाओ, मैं तो बना रहे हो तो बहुत बढ़िया बनाओ, मैं भी से मूवी को लताड़ूंगा नहीं कि मूवी बुरी है, मूवी जब आएगी तब देखी जाएगी, बट इट डजंट लुक दैट गुड। आई होप कि मूवी काम कर जाए बट देखी जाएगी। गाना हालांकि चल गया है, इसका गाने का नाम है कहर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिनका डांस बहुत बढ़िया लगा, डांडा भाई को, डांडा भाई कह रहा हूँ वापस 10 पे चला गया, जिनका डांस बहुत बढ़िया लगा गुरु रंधावा को और उन्होंने उन्हें मौका दिया कि वो इस गाने में परफॉर्म करें। हालांकि इससे पहले वो एक और गाने में परफॉर्म कर चुकी हैं, और बहुत जबरदस्त किया था। तो कहर और उस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का मैंने क्यों जिक्र किया, क्योंकि ओरिजिनल गाना, मैं ओरिजिनल कह रहा हूँ, माइंड कीजिएगा मेरी बात को, कत्ल जो गुरु रंधावा ने गाया था, तेरे आंख कत्ल में तेरे, वो गाना और कहर के म्यूजिक सेम है भाई, एकदम सेम है, एकदम सेम है, भाई लिरिक्स बदल दिए भाई ने, कहर कहर कत्ल कत्ल।
3: बॉम्बे तू बॉम्बे तेरा शहर कुड़ी, शहर कुड़ी कहर कुड़ी।
2: आई नो सुनने में राइम नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप बीट पे सुनेंगे तो एग्जैक्ट सेम लगेगा। हालांकि गाना बहुत बढ़िया है, इट इज एट नंबर 9 फ्रॉम द मूवी धमाल 4, एंड देखते हैं इस गाने के

0: बाद क्या मूवी को थोड़ा पुश मिलता है, क्योंकि गाने बहुत हेल्प करते हैं पर डायरेक्टर्स जाग नहीं रहे हैं. अगर उनको समझ में आ जाए कि गाने मूवी को कितना पुश कर सकते हैं, स्पेशली जब वो सॉन्ग्स एड ऑन्स ना हो, मूवी के अंदर हो एंड बहुत अच्छे से फिल्माए जाए तो बहुत कमाल हो सकता है. वी हैव सीन द एग्जांपल विद सैयारा. एवरी सॉन्ग हैज अ मीनिंग, एवरी सॉन्ग वाज पुट इन अ सिचुएशन. आई होप कि मूवीज ये करना शुरू करें. आई नो आई एम प्रेजिंग सैयारा, लेकिन भाई जहां तारीफ बनती है वहां बनती है. तो मूवी के प्रोग्रेशन के साथ जब गाने आते हैं तो मजा आता है. आई डोंट नो ये कहर मूवी के अंदर कब आएगा. आई जस्ट होप के टाइम पे आए और अच्छे से आए. सो कहर बाय गुरु रंधावा फ्रॉम धमाल 4, विच इज अ स्लाइट कॉपी ऑफ कतल, द सेम ट्रैक, द सेम सिंगर एक्चुअली. गुरु रंधावा इज एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट. अब नंबर 8 पर जाते हैं. नंबर 8 पे अगेन एक और सीक्वल. अजय देवगन अक्षय कुमार के हाथ को थोड़ा रोको भाई, ये लोग बहुत आगे जा रहे हैं सीक्वल के मामले में. मैं पिछली मूवीज अगर उठा के देखूं तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही करे जा रहे हैं. अजय देवगन ने तो सारी हदें क्रॉस कर दी हैं. अक्षय कुमार फिर भी थोड़े काबू में है, पर वो भी सीक्वल्स के चक्कर में ही है. अभी एक और सीक्वल है, वेलकम टू जंगल, जिसका ट्रेलर आपने देख लिया होगा. ट्रेलर में पूरी पिक्चर समझा दी गई है, बट गाने का क्या. एज एक्सपेक्टेड एक हिट गाना सबसे पहले मूवी का वेलकम का, वो इसमें आपको मिल जाएगा. गाने का नाम है ऊंचा लंबा कद. याद है ओरिजिनल ट्रैक, कटरीना कैफ अक्षय कुमार. That track has been brought to life yet again. मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, मुझे बॉलीवुड से पूरी पूरी उम्मीद है कि बॉलीवुड ये करता रहेगा जब तक उसके बस में है. So welcome to jungle, एक और sequel और एक और remake गाना पहली मूवी का, ऊंचा लंबा कद. लिरिसिस्ट ये बोलना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे. जगाओ भाई लिरिसिस्ट को बॉलीवुड के, दे नीड टू वेक अप. अमिताभ भट्टाचार्य की जब जरूरत होती है वो कहां होते हैं यार, उनको कम से कम बुलाओ. आदमी लिख लेता है, बहुत बढ़िया यार आज के जमाने में. बट नंदलेस ये गाना है एट नंबर 8, तो एक बार रिविजन कर लेते हैं. गाना नंबर 10 बूम शाकला का, डांडा न्यूली वाला और कृष्णा भाई. नंबर 9 पे है कहर बेसिकली बाय गुरु रंधावा फ्रॉम द मूवी धमाल 4. 8वें नंबर पर है ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से. तो ये अभी तक की लिस्ट है. आगे आने वाली लिस्ट में हम सीधा पायदान भी चढ़ते चले जाएंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बट उससे पहले छोटा सा ब्रेक. बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar और मैं दुहा वाला कबीर. जाना नहीं आपने स्टैचू.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 10.

FM 107 Top 10. Number 9.

0: FM 107 Top 10.
1: हाजी वेलकम बैक, मैं जी दो वाला कबीर एफ ओन सेवन पे। अस्सलाम वालेकुम फिर से जिन्होंने ट्यून किया है। आप थोड़ा सा लेट हैं, ज्यादा लेट नहीं है। 10, 9 और 8 ये पायदान हम बता चुके हैं हमारे टॉप 10 दिस वीक में। 10वें नंबर पर है बूम शाकलाका ढांडानोली वाला और कृष्णा भाई। नंबर 9 पे है कहर धमाल 4 से ये गाना। और नंबर 8 पे है ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से एक और रीमेक। तो ये है अभी तक की लिस्ट। अब जरा आगे बढ़ने का वक्त आ गया है एंड जो आगे हम बढ़ रहे हैं वो बढ़ेंगे हम 7, 6 और 5वें गाने के साथ। इन्होंने अपने पायदान को छोड़ा नहीं है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। इस वाली लिस्ट में 7, 6 और 5वें नंबर पे वही गाने जो पिछले हफ्ते भी थे, बिकॉज दे डिजर्व टू स्टे। ओरिजिनैलिटी के इन्हें पूरे पूरे नंबर दिए भाई मैंने। एफर्ट के नंबर बनते ही बनते हैं और इनको तो बिल्कुल बनते हैं। तो 7वें नंबर पे अभी भी है आरजू आसिम अजहर का गाना ख्वाबों में मेरे है तू ही बसे। ओरिजिनल ट्रैक एंड ब्यूटीफुल वीडियो। जिस शादी के साथ आसिम अजहर काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी डिस्कोग्राफी बढ़ती जा रही है, आई विश हिम ऑल द लक ऑल द लव बिकॉज ही इज प्रोड्यूसिंग म्यूजिक जो बहुत फ्रेश है। बॉलीवुड को सीखने की बहुत सख्त जरूरत है कि फ्रेश गाना कैसे बनता है। एंड आसिम अजहर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद हिज डिस्कोग्राफी। आई कैन नॉट वेट। आसिम अजहर जो है बहुत काम करते रहते हैं लेकिन उनके मैंने सुना एल्बम का कोई अभी नहीं अता पता है। आई रियली होप कि आसिम अजहर एक एल्बम ड्रॉप करें। वी वॉन्ट एन एल्बम फ्रॉम आसिम अजहर। फिलहाल ये गाना आरजू विच इज अ ब्यूटिफुल ट्रैक एक किस्म का स्टोरी बोर्ड है। गाने के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है and I love this. So ये गाना है at number 7 we feel के लिए vibe के लिए। अब number 6 पर जाते हैं भाई साहब। number 6 पे भी इन्होंने ही जगह बना रखी है। ये कह रहे हैं ये भी मेरा चित भी मेरी पट भी मेरी। तो number 6 पर जो गाना है वो भी आसिम अजहर का ही है तू है वही।
2: तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा।
1: अब ब्यूटिफुल ट्रैक, अब वायरल ट्रैक। कुछ लाइनें इसकी बहुत बहुत फेमस हुई हैं, लोगों को बहुत पसंद आया है गाना। एंड जिस हिसाब से आर्ट वर्क और एनिमेशन पे काम किया जा रहा है गानों की वीडियो बनाने के लिए, उसके पूरे पूरे 100 नंबर में देता हूँ। द कवर आर्ट ऑफ दिस सॉन्ग, द मेलोडी, द लिरिक्स ऑफ दिस ट्रैक इज एब्सोल्युटली फायर। आसिम अजहर हैज डन इट अगेन एंड मुझे बहुत बढ़िया लगा गाना है तू है भाई। बहुत बहुत प्यारा गाना। आई थिंक इसका रीमेक जरूर बनना चाहिए।

0: ठीक है कोई बात नहीं, गाना बढ़िया बनाया भाई ने। तो कुंवर साहब का जो गाना है पीछे तेरे इज एट नंबर 5 ऑन टॉप 10 की लिस्ट। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, काफी सादे लिरिक्स हैं मगर बहुत इफेक्टिवली गाया है। क्या होता है जब आप किसी बीट पे गा रहे होते हैं या आप रैप कर रहे होते हैं, इतनी मुझे समझ आ गई है खुद भी लिख लिख के, जब तक आपकी डिलीवरी अच्छी नहीं होती नो मैटर हाउ गुड द सॉन्ग इज, नो मैटर हाउ गुड द म्यूजिक इज, कोई फायदा नहीं। आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड 10/10 फॉर द डिलीवरी ऑन दिस ट्रैक कुंवर साहब की तरफ से। तो अब मैं जरा लिस्ट रिवाइज करूंगा। लिस्ट में ऐसा है कि नंबर 10 पे है बूम शाकला का डांडा न्यूली वाला और साथ में के आर डॉलर साइन। नंबर 9 पे है कहर फ्रॉम धमाल 4। नंबर 8 पे है ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से। नंबर 7 पे है आरजू आसिम अजहर और नंबर 6 पर है तू है वही अगेन बाय आसिम अजहर। और नंबर 5 पे है पीछे तेरे बाय कुंवर साहब, जिसकी जैसे मैंने कहा डिलीवरी ऑफ द सॉन्ग इज जस्ट अमेजिंग। गा बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन फिर आपको उसमें अरिजीत सिंह विशाल मिश्रा ये सब ढूंढने हो तो डिलीवरी पे देखिए, डिलीवरी तब आती है जब आप दिल से गाते हैं। दिस इज वन ऑफ दोस ट्रैक्स जो पता लग रहा है भाई आदमी ने मेहनत करी है। ओके ये सुनिए, वापस आते हैं और फिर जरा बढ़ते हैं आगे 4321 की तरफ। मैं दो हवाला कभी FM107 पे सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर FM107 कतर
1: FM 107 Top 10 Number 7

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम वेलकम आ गए क्या गाने सुनने के लिए. मैं दोहा वाला कबीर आज FM 107 पे एंड दिस इज टॉप 10 दिस वीक. गानों को रिवीजन हम कर चुके हैं, 10 9 8 7 6 5 तक पहुंच चुके हैं और अब बारी है गाना नंबर 4 की. ये गाना भी भाई साहब कतई ढीठ बन चुका है और ये गाना भी हिलने का नाम नहीं ले रहा. ये गाना इसलिए है बिकॉज ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रैक है. शुभ भाई का गाना है, गाने का नाम है बाउंस. मैंने इसके इंटरव्यूज वगैरह देखे, इस गाने के पीछे कहानी जानने की कोशिश करी बिकॉज ये बड़े अनयूजुअल बीट्स पे गाया गया है. ऐसी बीट्स पर अक्सर लोग रैप भी करना पसंद नहीं करते हैं अगर आप एक नए रैपर हैं, टू बिकॉज टू रैप ऑन दीज बीट्स इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट. और शुभ भाई ने गाया है भाई, बाकायदा एक पॉप गाना इस पे बनाना जिस बीट पे ये गाना है, इट्स जस्ट अमेजिंग. ये आर्टिस्ट की ट्रू आर्टिस्ट्री को दिखाता है. एंड बाउंस का ना सिर्फ ये गाने की वाइब है बल्कि इसका वीडियो भी बहुत अच्छा है, आप जाके देखेंगे. सो एवरीबॉडी हैज डन हैज गिवन 100% ऑन दिस सॉन्ग एंड आई लव्ड इट. शुभ भाई के गाने बहुत सारे आते हैं.

है, उनमें कई सारी बातें हैं, गाड़ियों की बातें होती हैं और मोहब्बत की बातें होती हैं, अक्सर उठने की बातें होती हैं, पर बाउंस बाउंस कुछ वाइब है एंड आने वाले वक्त में इन्हें कुछ क्लब ट्रैक्स बनाने चाहिए बिकॉज आई थिंक शुभ की जो आवाज है वो अलग है, एक यूनिकनेस जो हमारे दूसरे सरदार में है, हमारे दिलजीत दुसांझ में है, वैसी कशिश और एक जो अलग पना है, यू नो बताना बड़ा मुश्किल होता है, एक एक्स फैक्टर होता है किसी किसी में जो आप समझा नहीं सकते, बट यू जस्ट लाइक इट, वो शुभ भाई के साथ है और शुभ का ये गाना है एट नंबर 4 जिसका नाम है बाउंस। अब जरा बढ़ जाते हैं गाना नंबर 3 की तरफ। गाना नंबर 3 इज जस्ट अमेजिंग, ये गाना मैं बताना चाहूंगा आपको क्योंकि ये गाना अभी एंट्री मार चुका है कुछ वजूहात के चलते। इस गाने ने जो किया है वो बहुत कम गाने कर पाते। देखो आजकल जितने भी गाने आते हैं उनकी हुक लाइंस को सुन के आपको लगता है कि ठीक है यार रिपीट कर लूंगा कभी कभी, या आप मजाक उड़ा लेते हैं हुक लाइंस का, लेकिन कुछ ऐसी हुक लाइंस होती हैं जिनको आप कभी भूल नहीं सकते। मैं क्या ना एग्जाम्पल दूंगा, मैं फैन हूं भाई तो एग्जाम्पल दूंगा, आवारापन का एग्जाम्पल लीजिए। जब ट्रेलर आया था आवारापन का, आपको गाना भले याद ना हो लेकिन आपको एक हुक लाइन याद हो गई थी, तो फिर आई वुड नॉट सिंग, आपका मूड नहीं खराब करूंगा, तो फिर आओ के जो हुक लाइन है, या तेरा मेरा रिश्ता पुराना उसकी हुक लाइन है, दीज हुक लाइंस वर अमेजिंग, पहले ही बार में आपको रट जाती है ना। वैसे ही इसकी हुक लाइन है जो आने वाला गाना जो नंबर 3 पे जगह बना चुका है। गाना है बन जा तू मेरी भाई। ये गाना गाया चरणप्रीत भाई ने, मैं क्यों झूठ बोलूं, इससे पहले मैंने इन्हें नहीं सुना था। मैंने चरणप्रीत के साथ बादशाह भाई ने किया जी रैप। गाने के अंदर एक और खास बात है जिसकी वजह से नंबर 3 पर। गाना तो बहुत ही बढ़िया है और हुक लाइन मैं कहता हूं महीनों के बाद कोई गाना ऐसा है जिसकी हुक लाइन इतनी बढ़िया है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और हुक लाइन के साथ साथ इसमें जो डांस स्टेप है, जो एक बहुत खास डांस करती है, उनका नाम है आसी, आई होप इसी तरह उनका नाम प्रोनाउंस किया था, AHSI। शी हैज डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब। मतलब यार इसका हुक स्टेप इतना वायरल हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया तक, गोरो तक पहुंच चुका है और गोरे भाई साहब इस गाने पे नाच रहे हैं, वो इस गाने पे डांस स्टेप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज इन ऑ ऑफ द ट्रैक। एंड आसी की खास बात ये कि वो हमेशा जो है अपना चेहरा छुपा के रखती हैं इन एवरी डांस वीडियो। इवन वो गुरु रंधावा के साथ थी तो भी उन्होंने अपना फेस छुपा के रखा था, एंड शी इज फेमस देन एनीवन एल्स जो चेहरा दिखा रहा होगा, मगर मेन मुद्दा चेहरा नहीं है, मेन मुद्दा काम है और काम बोलता है भाई। इस डांस स्टेप के साथ शी हैज बिकम वायरल, डांस हैज बिकम वायरल, द सॉन्ग हैज बिकम वायरल और गाने में वाइब है भाई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो किसी और के गाने को कभी वाइब करते हुए डालते नहीं, उन्होंने भी इस गाने पे वाइब करते हुए बाकायदा वीडियोस बनाए। अच्छा एक फन फैक्ट इस गाने के बारे में, इस गाने की जो कोरियोग्राफर हैं उनका नाम दिव्या है, एंड दिव्या ने कोरियोग्राफी जब की, वैसे तो उन्होंने और भी गानों की कोरियोग्राफी करी है, लेकिन वो फेम नहीं मिल रहा था। अभी जब फेम मिला तो उनको 600 लाइक्स आए थे, बस लिटरली 600। आई कुड नॉट बिलीव ये कैसे मुमकिन है, मगर उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, 600 भी कम नहीं है, और उन्होंने डांस क्लासेस शुरू कर दी इन मुंबई, एंड नाउ शी इज टीचिंग दिस सेम स्टेप टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो बन जा तू मेरी एक नॉर्मल गाना नहीं रहा भाई, अब ये वायरलिटी की एक और डेफिनेशन बन चुका है और ये बिल्कुल बनता है इसका नंबर 3 पे रहना। चरणप्रीत का गाया हुआ हुक लाइन आप जरूर सुनिएगा, यू विल फॉल इन लव विद दिस सॉन्ग, एंड बादशाह भाई का रैप कतई कर रहा है भाई, कतई कर रहा है, इट इज जस्ट, वो था ना, एक तो होता है दिल पे लगी, एक होता है दिल पे चीर दिया भाई, ये वो वाला रैप है और वो वाला गाना है। इट इज एट नंबर 3 ऑन आर लिस्ट, ठीक है सुन लो। ओके सो नाउ अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, अगला गाना जो कि नंबर 2 पर है। अब ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए नंबर 2 और 1 डिसाइड करना, ये हमारी टीम में ही बहस हो गई थी, हमने कहा ये नहीं वो नहीं, बट डिसाइड कर लिया हमने। ये कागज क्या बताइए आपको, ये देखो दे रहा कागज, इस पे भाई साहब बाकायदा हमने पूरा सॉल्व किया बैठ के, गणित लगाई है कौन सा गाना किस पे आना चाहिए। तो नंबर 2 पे जो गाना है वो नंबर 1 के पायदान से नीचे आया है, मगर ये भाई साहब रहेगा टॉप 5 टॉप 3 में रहेगा बिकॉज ये गाना यूनिक है। नंबर 2 पे जो गाना है इसका नाम है माशूका,
नहीं गाऊंगा, सॉरी ये बोल के गा देता हूँ फिर आपको तकलीफ हो जाती है। एनीवे, शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका।

मूवी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं निशब्द हूँ जो कि मूवी के क्या कर रहे हैं डायरेक्टर्स यार, मैं ना रह नहीं पाता, फिर मैं रेंटिंग शुरू कर दूंगा। बट एनीवे मूवी को जरा किसी साइड कॉकटेल टू जैसी भी गई हो, मगर गाना बहुत बढ़िया। माशुका इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट ट्रैक, प्रीतम दा का संगीत है और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स हैं। जैसे मैंने कहा था, अमिताभ भट्टाचार्य राइट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट ट्रैक। जब वो अपनी पे आते हैं ना भाई, तो वो फिर बहुत बढ़िया लिखते हैं। एंड राघव सी और साथ में है, और ये गाना भाई इंटरनेट पे फटा है, और क्या फटा है, लोगों को बहुत बहुत पसंद आया। ऑल द रीमिक्सेस और रिप्राइज वर्जन, ना जाने कौन कौन से वर्जन लोगों ने बनाए हैं। इसका एक प्रॉपर स्पेनिश वर्जन भी है, बट लिसन टू दिस वन बिकॉज ये बड़ा खास है, इसमें स्पेनिश भी आपको मिल जाएगी इन केस यू अंडरस्टैंड। बट ब्यूटिफुल ट्रैक, बिल्कुल बनता है इसका नंबर दो पे आना, माशुका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। अब जरा एक रिविजन कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन। तो रिवीजन बड़ा सिंपल है, नंबर 10 से लेकर नंबर 2 तक आता हूं फिलहाल में। नंबर 10 पे है बूम शाकला का ढांडा न्यूडी वाला, नंबर 9 पे है कहर धमाल, नंबर 8 पे है ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से, नंबर 7 पे है आरजू आसिम अजहर, नंबर 6 पे है तू है वही अगेन आसिम अजहर, नंबर 5 पे है पीछे तेरे वर साहब का गाना, नंबर 4 पे शुभ विद बाउंस, नंबर 3 पे है बन जा तू मेरी, एंड नंबर 2 पे है माशुका। और अब वक्त है नंबर 1 गाने। तो अभी थोड़ी आगे बताते हैं, जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 Top 10 Number 3।

0: FM 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamu alaikum. Main Dhuaan Wala Kabir FM 107 pe, and it's time to reveal the track, number one track, जो कि FM 107 की टॉप 10 की लिस्ट में टॉप कर रहा है. हर गाने के लिए मुश्किल होता है जगह बनाना. कुछ गाने अपनी वायरलिटी के चलते, कुछ गाने अपने व्यूज के चलते, कुछ गाने कंट्रोवर्सी के चलते, कुछ गाने अपने हुक लाइन के चलते, कुछ गाने इसलिए क्योंकि आपको पसंद थे, कुछ गाने हमें पसंद थे इसलिए लिस्ट में आ गए. मगर अगला जो गाना है ये लिस्ट में आया है, और लिस्ट में भाई सब सीधा पहले पायदान पे है अपने नॉस्टैल्जिया के चलते. एक और गाना ऐसी मूवी का मैंने लिस्ट में उसे नहीं रखा, बिकॉज दैट इज क्वाइट अ डिफरेंट ट्रैक. उसको मैं अगले हफ्ते लिस्ट में शामिल करूंगा. उस गाने को ये मत सोचिएगा कि लिस्ट से बाहर कर दिया, यूं समझ लीजिए कि उस गाने के लिए नंबर नहीं मिल रहा था. वो गाने का नाम अभी नहीं लूंगा, वो भी कॉकटेल से ही है. मगर ये गाना एट नंबर वन, इट इज बंधु 2.0. कॉकटेल 2 का ये गाना प्योरली बेस्ड ऑन नॉस्टैल्जिया. बड़ा जरूरी था कि कोई गाना हमारे नॉस्टैल्जिक दिमाग के अंदर जो है थोड़ी सी खुजली पैदा करे, हमें वो चीजें याद आए. अब मूवी से तो याद आएंगी नहीं, बिकॉज अपेरेंटली बॉलीवुड के नॉट क्रिएट सीक्वल्स अगेन. कितना क्रिटिसाइज करोगे कबीर साहब, बट द फैक्ट रिमेन्स, मूवी भले आपको नॉस्टैल्जिया ना दे पाए, ये गाना आपको नॉस्टैल्जिक जरूर फील कराएगा. यू रिमेंबर दोस डेज जब आपने कॉकटेल की शायद टिकट बुक करेंगे. मैं अपना बता देता हूँ, आई बुक माई टिकट फॉर कॉकटेल सुबह के वक्त, तकरीबन 9:30 बजे का शो था. 65 रुपए का टिकट आता था हमारे यहाँ, ठीक है, सुबह सुबह के शोज का जो अर्ली मॉर्निंग हुआ करते थे 11 बजे से पहले पहले वाले. मैंने भाई जाके ये इसका शो देखा था कॉकटेल का अपने 3 दोस्तों के साथ, और हमने जो पार्टी करे थे भाई, मौज आ गई थी उस मूवी को देख के. और जब ये गाना आया था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रैक देन एंड नाउ. तो बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2 इज एट नंबर 1 ऑन द लिस्ट, एंड वेरी वेल डिजर्व्ड बाय द वे. पर इसी के साथ साथ इजाजत तो लूंगा आपसे, पर आप भी अपने गाने बताइए. आपको लगता है कोई गाना ऐसा है जो लिस्ट में आना चाहिए, एंड एनी सॉन्ग दैट यू फील के लिस्ट में आने के लायक है, या मिस आउट हो गया हमसे? क्योंकि एक गाना है वो मैंने जानबूझ के मिस आउट किया है, क्योंकि मुझे उसके लिए पायदान नहीं मिल रहा है. गाना बहुत अच्छा है, तो गाने का नाम ले देता हूँ, वल्लाह वल्लाह गाने का नाम है, ब्यूटीफुल ट्रैक. ये मत सोचिएगा कि लिस्ट से बाहर है वो, अभी उसको मैंने साइड में रखा हुआ है वो बहुत बढ़िया ट्रैक. बट आपके जहन में कोई ट्रैक हो, या आपके आसपास कोई सुनता हो जो आपको कैच हो गया, आपके कान में लगा, अरे भाई ये कौन सा ट्रैक है, तो बताइएगा जरूर. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, हम इस नाम से मौजूद हैं. अगर आप मुझे ढूंढना चाहें, आवाज और शक्ल को मिलाना चाहें, सो दोहा वाला कबीर इस नाम से आपको मिल जाऊंगा. प्लीज प्लीज प्लीज मुझसे भी जुड़े, मुझसे भी बतिया लिया करें, अच्छा लगेगा मुझे भी. एंड दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मां सलाम.
0: FM 107 Top 10 Number 1.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और वाइब्रेंट और फेस्टिव एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी को पसंद होता है, यानी कि फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस और खुशियों के मौके। लेकिन इस बार हम इसे थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं साथियों। सोचिए, ईद है या कोई नेशनल डे है या कोई बड़ा फेस्टिवल, घर डेकोरेट हो रहा है, लाइट्स लग रही हैं, बलून्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, प्लास्टिक डेकोरेशंस और गिफ्ट्स का सिलसिला चल रहा है। सब कुछ बहुत कलरफुल और एक्साइटिंग होता है ना फेस्टिव सीजन में। लेकिन फेस्टिवल के बाद जब डेकोरेशन उतारी जाती है तो एक बड़ा सा पाइल ऑफ वेस्ट नजर आता है। हमारे टोन बलून्स, प्लास्टिक रैप्स, लेफ्ट ओवर फूड एंड डिस्पोजेबल आइटम्स, और ये सब सिर्फ कुछ दिन की खुशी के बाद एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं साथियों। देखें, फेस्टिव्स का एनवायरनमेंटल इंपैक्ट अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। डेकोरेशंस, पैकेजिंग, फूड वेस्ट और एनर्जी यूजेज मिलकर एक सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सेलिब्रेशंस स्टॉप कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम स्मार्टर सेलिब्रेशंस क्रिएट करें। अब इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में? भाई, आइडिया बड़ा सिंपल सा है, फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली तरीके से सेलिब्रेट करना। मतलब खुशी भी हो और एनवायरनमेंट का ख्याल भी रखा जाए। सुनने में भी अच्छा लग रहा है ना। देखिए, अब बात करते हैं कि इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है साथियों, इसका मतलब होता है कि रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करना, फूड वेस्ट कम करना, प्लास्टिक से बचना और सस्टेनेबल चॉइसेस अडॉप्ट करना। यानी सेलिब्रेशंस का मजा भी रहे और वेस्ट भी मिनिमम हो। अच्छा, अब बात करते हैं कि इको फ्रेंडली फेस्टिवल से क्या फायदा होता है। भाई, सबसे पहला फायदा है वेस्ट रिडक्शन। कम डिस्पोजेबल आइटम्स यूज होंगे तो कम लैंडफिल प्रेशर होगा। दूसरा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए भाई, प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम होने से पोल्यूशन रिड्यूस होता है ना। तीसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। देखिए, रीयूजेबल डेकोरेशंस और प्लान्ड शॉपिंग से अननेसेसरी खर्चा कम होता है, आपकी जेब ज्यादा

0: नहीं पड़ता जेब पे ही। चौथा फायदा है अवेयरनेस स्प्रेड होना। जब आप इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस करते हैं तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। साथियों आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देती हूँ, जरा सोचिए आप अपने घर में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स और बलून्स यूज करते हैं तो पार्टी के बाद एक बड़ा सा वेस्ट पाइल बन जाता है। लेकिन अगर आप रियूजेबल प्लेट्स, क्लॉथ डेकोरेशंस और मिनिमल वेस्ट अप्रोच यूज करें तो सेलिब्रेशन सेम रहती है लेकिन क्लीन अप बहुत इजी हो जाता है। साथियों दोहा जैसे सिटी में फेस्टिवल्स और कम्युनिटी इवेंट्स बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किए जा सकते हैं। यहाँ मॉल्स, पार्क्स और रेजिडेंशियल एरियाज में डेकोरेटिव सेटअप्स कॉमन है जो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। अच्छा अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देती हूँ जो आप इजिली फॉलो कर सकते हैं। नंबर वन, रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करें। फैब्रिक बैनर्स हो गए, एलईडी लाइट्स हो गई और रीयूजेबल डेकोर आइटम्स प्रेफर करें। दूसरी चीज, प्लास्टिक से अवॉइड करें ना। डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी के बजाय रीयूजेबल आइटम्स कभी यूज करके देखें। नंबर थ्री पर आता है हमारे पास, फूड प्लानिंग करें। देखें एक्स्ट्रा खाना बनाने की बजाय एक्यूरेट एस्टिमेशन करें ताकि वेस्ट कम हो। नंबर फोर पर है, गिफ्ट रैपिंग सिंपल रखें। न्यू प्लास्टिक रैपिंग के बजाय न्यूज़पेपर या क्लॉथ रैपिंग यूज करें। अच्छा पांचवें नंबर पर हमारे पास आता है, वेस्ट सेग्रीगेशन। देखिए करना ये चाहिए कि फेस्टिवल के बाद वेस्ट को प्रॉपरली सेपरेट करके डिस्पोज करें। अच्छा इसका एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताऊं आपको, दुनिया भर में अब ग्रीन सेलिब्रेशंस का ट्रेंड बढ़ रहा है जहां लोग इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स को प्रमोट कर रहे हैं। कई इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स अब सस्टेनेबिलिटी को अपनी प्लानिंग का मेन पार्ट बना रहे हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं साथियों कि फेस्टिवल एक ही दिन का होता है इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल में उस एक दिन का इम्पैक्ट कई दिनों तक एनवायरमेंट में भरा पड़ा रहता है। अब थोड़ा सा अगर बिहेवियर चेंज एंगल से देखें ना, तो भाई जब आप इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी सेलिब्रेशन स्टाइल को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं। आप सिर्फ एंजॉय नहीं करते बल्कि कॉन्शियसली सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई इसी नोट के साथ आज का इको स्विच सिंपल सा है, अपनी फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाएं। आज का चैलेंज ये है कि भाई आज या नेक्स्ट अपकमिंग सेलिब्रेशन में कम से कम एक इको फ्रेंडली चेंज इंट्रोड्यूस करें, जैसे रीयूजेबल डेकोर या प्लास्टिक फ्री सेटअप। और अगर आप ऑलरेडी इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस कर रहे हैं तो किसी और को भी इंस्पायर करें भाई। साथियों खुशी का मकसद सिर्फ एंजॉय करना नहीं होता बल्कि लम्हों को यादगार बनाना होता है। जब हम इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स क्रिएट करते हैं तो हम सिर्फ खुश नहीं होते बल्कि अपनी जमीन को भी खुश कर रहे होते हैं। इसी नोट के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे मोहम्मद सुलेमान के बारे में। मोहम्मद सुलेमान कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं कि कतर की खेल की तारीख के सबसे अजीम एथलीट्स में से एक हैं और कतरी एथलेटिक्स के असल पायनियर अगर कोई है तो मोहम्मद सुलेमान है। उनकी पैदाइश 23 सितंबर 1969 को हुई और बता दूं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पायनियर है कतरी एथलेटिक्स में। उन्होंने 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में कतर के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतकर तारीख कायम। सो दैट्स द रीजन मोहम्मद सुलेमान इज सो इम्पोर्टेंट इन कतरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री। मेंस 1500 मीटर दौड़ में मोहम्मद सुलेमान ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और कतर को पहली मर्तबा ओलंपिक मेडल टेबल पर जगह दिलाई। So that was occasion when Qatar पहली मरतबा ओलंपिक प्लेटफॉर्म में पहला अगर कोई मेडल लेके आया होगा तो यही बंदा था जिनका नाम है मोहम्मद सुलेमान। ओलंपिक कामयाबी से पहले भी सुलेमान एशिया के बेहतरीन मिडिल डिस्टेंस रनर्स में शुमार होते थे। उन्होंने एशियन गेम्स और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप समेत कई इलाकाई और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के मुकाबलों में मेडल जीते। वो अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी, जबरदस्त स्टैमिना और दौड़ के आखिरी लम्हों में तेज रफ्तारी के लिए मशहूर थे। 1990 की दहाई में उन्होंने दुनिया के बेहतरीन रनर्स को सख्त मुकाबला दिया। मोहम्मद सुलेमान ने कई ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कतर की नुमाइंदगी की जिससे गल्फ रीजन में एथलेटिक्स को फरोख मिला। उनकी कामयाबियों ने कतरी नौजवान एथलीट्स को इंस्पायर किया और साबित किया कि कतर दुनिया के बेहतरीन खेल मुकाबलों में मुकाबला कर सकता है। दोस्तों आज मोहम्मद सुलेमान को सिर्फ कतर का पहला ओलंपिक मेडल विनर नहीं बल्कि मुल्क के खेलों की तरक्की की बुनियाद रखने वाले हीरो के तौर पर भी याद किया जाता है। उनकी विरासत आज भी कतर के लिए फख्र का बायस है और नए एथलीट्स को कामयाबी के लिए मोटिवेट करती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One step to 2030.
1: आज मैं बात करने वाली हूँ रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन की. देखिए, रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D इनोवेशन के हार्ट हैं, दिल. जैसे अगर दिल रुक जाए धड़कना तो फिर तो हमारा जीना मुश्किल है. इसका मतलब ये है कि जो नए आइडियाज डेवलप करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट करना है और एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, ये सारा काम R&D के तहत ही किया जाता है. खतर का नेशनल विजन 2030 का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है कि खतर नॉलेज बेस्ड और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाए. इस पर हमने बात भी की. और R&D की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी कॉम्पिटिशन पर चलती है. जो कंट्रीज और कंपनीज इनोवेशन करती हैं वही मार्केट में लीड करती हैं. तो R&D के जरिए न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप की जाती हैं जो बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बनाती हैं. R&D इकोनॉमी को मल्टीपल वेज में बेनिफिट करता है, फिर चाहे प्रोडक्टिविटी हो, चाहे जॉब्स क्रिएट करना हो या फिर न्यू इंडस्ट्रीज को डेवलप करना हो. जब इनोवेशन होती है तो न्यू मार्केट्स क्रिएट होती हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल होती है. जिया कतर रिसर्च सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज और इनोवेशन प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट लगातार कर रहा है और ये स्टेप फ्यूचर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल है. स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी सेक्टर में R&D का रोल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्च और इनोवेशन फ्यूचर की गारंटी होती है. जो कंट्रीज R&D में इन्वेस्ट करती हैं, मेरा मतलब है जो कंट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन में इन्वेस्ट करती हैं वो सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करती हैं. देखिए, कतर का नेशनल विजन जो है 2030, वो सिर्फ

0: इसी टीम वर्क की मिसाल है। विजन 2030 का ये फोकस कतर को एक नॉलेज ड्रिवन और फ्यूचर रेडी नेशन बनाता है और इस मुल्क के साथ हमारी ढेरों दुआएं हैं। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
6: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Scam alert. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे। देखिए, फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी को टारगेट करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बंदा ऐप से मैसेजेस से नहीं फंस रहा है तो क्या किया जाए। अब एक और स्कैम सुनिए। ये स्कैम होते हैं चैरिटी स्कैम्स। कैसे दिखते हैं ये चैरिटी स्कैम्स? देखिए, चैरिटी स्कैम्स में होता है ये है कि आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है। कोई भी करंट इशू चल रहा है, कहीं पर चैरिटी की ज़रूरत है, खबरों में है, और आप खबर देखते हैं तो एल्गोरिथम उसे फौरन पकड़ लेता है और फिर ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और आपको बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट जिनके आगे ब्लू टिक लगा होगा आपके सामने आएंगे, जिनमें मॉर्फ्ड करके अलग अलग इन्फ्लुएंसर की शक्लों को मॉर्फ्ड करके दिखाया जाता है और आपको लगता है कि इस इन्फ्लुएंसर पर मुझे भरोसा है, ये कह रहा है कि चैरिटी करें और कॉज भी अच्छा है तो मुझे कर लेनी चाहिए। और यहीं आपके इमोशंस आप ही का शिकार करते हैं। पर यहां से भी निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर जब आप चैरिटी ऐसी कर देते हैं तो आप भी यही सोचेंगे ना कि चलो मेरी नियत तो साफ थी, अब गए तो गए। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ज्यादा चैरिटी करते हैं। अब ये जरूरतमंदों के पास ना पहुंच के अगर आपकी रकम उन लोगों के पास जा रही है जो उसका बिल्कुल भी सही इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो फिर आपकी और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चीज को रोका जाए। अक्सर ही चैरिटेबल जो स्कैम्स होते हैं चैरिटी वाले, ये आपको कोई इशू नहीं बताएंगे, सीधा बोलेंगे, एक वीडियो दिखाएंगे और उसमें आपको ऑडियो वगैरह बिल्कुल अब्रप्ट सा लगेगा और फिर आपसे सीधा कार्ड डिटेल्स मांगी जाएंगी। एंड टू मेक इट मोर जेन्युइन, आजकल ये एड्रेस भी मांगने लगे। प्लीज इनसे बच के रहें। अब अगर आप फंस गए, मान लीजिए आपने कर लिया, यू नॉट श्योर कि क्या मैंने सही चैरिटेबल ट्रस्ट पे ट्रस्ट किया है, तो इसका भी एक तरीका है। अगर आप फंस गए और आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको एक मैसेज आएगा सडनली जो आपको बोलेगा कि 10 रियाल प्रोसेसिंग फीस और 15 रियाल यहां पे, इतना उतना। और तुरंत आपसे अगर कोई कार्ड मांग रहा है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, आपको तुरंत कार्ड नहीं देना है। ना ना ना ना ना, कुछ लोग एक लंबा प्रोसेस फॉलो करते हैं। दे गिव यू अ सर्वे और उस सर्वे में आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है रादर देन द एक्चुअल सिचुएशन। So be very careful, आपको इससे फौरन कट जाना है एंड फौरन अपने अकाउंट को रीसेट कर देना है। अगर आपने कार्ड अपना पंच इन कर दिया है, जस्ट ब्लॉक योर कार्ड, देयर इज नो अदर वे। आपके हाथों से अगर सिचुएशन और भी बाहर जा चुकी है और आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो चुकी है, तो सीधा साइबर पुलिस से कॉन्टेक्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें, साइबर पुलिस पर पूरी तरह से भरोसा रखें, यू विल कम आउट ऑफ इट। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ जो आप खुद कर सकते हैं वो है रीसेट योर पासवर्ड एंड रीसेट योर अकाउंट, एंड प्लीज इन चीज़ों से ज़रा बच के रहें। अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है, कुछ तो मैंने बता दिया, कुछ और मैं चीज़ें बता देता हूँ। सिंपल और इफेक्टिव वे सिर्फ यही है कि आपने अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ना है, यू अबाउट टू डू चैरिटी, आप फिलिस्तीन में, सीरिया में, कहीं पर भी आपको चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ना है, वहां पे पहुंचाना है, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप कुछ श्योरिटी नहीं है तो अथॉरिटीज से कॉन्टेक्ट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछें जो ऑनलाइन चैरिटीज करते रहते हैं और जो श्योर हैं इन चीज़ों के बारे में, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का फोन नंबर है, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो जेन्युइन लग रहे हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लें। टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको लगता है कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट इसका नंबर ही बड़ा अजीब सा है, तो बहुत ही बाहर का लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट वर्किंग आउट, तो फौरन उससे दूर हो जाए। और सिंपल तरीका ये, इफ़ यू रियली वांट टू डू चैरिटी, बड़ा ही नेक कॉज है, अल्लाह ताला हम सबको इतनी तौफीक अता फरमाए कि हम चैरिटी कर सकें। सो कतर में तो बहुत आसान है, कतर चैरिटी की ऐप है, कतर रेड क्रेसेंट सोसाइटी की ऐप है, इसके जरिए आप अलग अलग चैरिटी से जुड़ सकते हैं एंड डू योर डीड। ये है तरीका टू आइडेंटिफाई एंड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड सेफ। बस अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से इस अवेयरनेस को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना है, औरों तक भी पहुंचाइए। बी सेफ एंड दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि ख्वातीन की जो सेहत है वो किस तरह से बरकरार रखी जा सकती है या उसमें जो बाकायदा तिबी मुआयना है उसकी अहमियत क्या हो सकती है। बहुत सी बीमारियां इब्तदाई मराहल में अलामत अपनी जाहिर नहीं करती, इसलिए बाकायदा जो मेडिकल चेकअप है वो बहुत अहम है। वक्त पर डायग्नोसिस बहुत सी बीमारियों के मौसर इलाज में मदद देती है। खवातीन को ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वजन की बाकायदगी से जो जांच है वो करवानी बेहद ज़रूरी है और ये इकदाम दिल की जो बीमारियां हैं और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचाव में मददगार साबित होते हैं। माँ बनने की उम्र में खवातीन के लिए हमल से पहले और दौरान हमल तिबी मशवरा और चेकअप इंतहाई ज़रूरी हैं। इससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत बेहतर रहती है। इसी तरह बोन्स की जो हेल्थ है या हड्डियों की सेहत पर तवज्जो देनी बेहद जरूरी है, खास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर गिजा और मुनासिब एक्सरसाइज बोन्स को मजबूत बनाने में मदद देती है। खवातीन को अपने जिस्म में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों पर भी नजर रखनी है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए और बीमारी की जो बरवक्त तशखीस इलाज को आसान और मौसर बना देती है, तो इसके लिए आपने सालाना जो मेडिकल चेकअप है वो

0: जरूर कराइए, ब्लड प्रेशर और शुगर के टेस्ट जो हैं वो रेगुलर करवाते रहिए, हड्डियों की सेहत का खास ख्याल रखिए, हमल के दौरान बाकायदा चेकअप करवाइए, किसी भी गैर मामूली अलामत को कभी भी नज़रअंदाज ना कीजिए। तो ख़वातीन, एहतियात इलाज से बेहतर है, अपनी सेहत को तरजीह दीजिए और बाकायदा तिब्बी मुआयने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। सेहतमंद ख़वातीन सेहतमंद मुआशरे की जमानत हैं।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें और अलग इराज हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा? Generation Talk, दोहा वाले कबीर के साथ, सिर्फ FM 107 पर।
2: So, अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं बहुत खास हैं, बहुत ज्यादा खास हैं। हमारी बातचीत बहुत टाइम से हो रही है और मैं कब से बुला बुला के थक गया इनको, पर हमेशा मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं सर मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भरा बैठा था, मैं इन्हें कॉल करने ही वाला था आज कल परसों में, एंड देन इट हैपेंड। फिर हमारी बातचीत हुई तो हमने डिसाइड किया वन फाइन डे कि क्यों ना चलो कोई बातचीत कर ली जाए, और बातचीत करने के लिहाज से आज पूरी फैमिली मौजूद है मेरे साथ, आई एम रियली रियली हैप्पी। वो जो फैमिली वाली फील है सर, आपसे पहले से आते रहिए, वेलकम टू आवर स्टूडियो।
3: थैंक यू सो मच, थैंक यू, बढ़िया हूँ। और ये जो आपसे बात हुई
2: जी सर,
3: ये भी मेरे जहन में बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं कबीर से थोड़ा बात करूं।
2: सर झूठ बोल रहे हैं सर आप।
3: नहीं नहीं बिल्कुल, ये मैं एक्चुअली मैं आपको कैसे समझाऊं कि बातें करना और लोगों को जानना
2: जी,
3: ये एक मतलब एक अलग ही चीज होता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है।
2: और आपका डिपार्टमेंट में कुछ कुछ वैसे ही, राइट?
3: बिल्कुल।
2: अच्छा, आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, आप अपने आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आप जो है घर का मतलब मेन चिराग हैं। आप बताइए आपका नाम बताइए।
4: तो मैं हूँ शिमंती और मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे आई हूँ आज। पापा ने जैसे कहा कि लोगों के साथ बात करना जानना, मेरा भी डिग्री वो ही है।
2: अच्छा, वेरी नाइस। तो आप एक लौती हैं या फिर कोई और भी है इनके साथ? एक लौती हैं आप, अरे वेरी गुड, मेरा वाला सीन है इनका, वेरी गुड। ये हमेशा तुम्हें सुनने को मिलता है वैसे कि क्या कहते हैं भाई बहन होने चाहिए, एंड और क्यों? मुझे सुनने को मिलता है। हाउ डू यू रिप्लाई टू दीस पीपल?
4: I was getting to each tip to their own.
2: अब ये अंग्रेजी बोल तो सब शांत हो जाते हैं। तो देखिए हमारा शो थोड़ा जनरेशन से जुड़ा हुआ है, एंड सिंस यू आर आल्सो यू नो लिविंग आउटसाइड और आना जाना लगा रहता है इनका, अभी तो आप घर में रहकर और शुरुआत से इनका जो इतना बड़ी जर्नी रही है यहाँ तक की, आपने क्या सीखा है आज की जनरेशन से, आपको क्या लगता है?
3: पहली तो चीज है कि जनरेशन आजकल जहाँ पहुंच गया है
2: जी जी जी,
3: वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, ये तो मान लो।
2: ओके,
3: फर्स्ट थिंग इज दैट एक्सेप्ट योर डिफीट,
2: ठीक है
3: ना? अब जब ये एक्सेप्टेंस आ जाता है तब अपने आप को ना अपने जैसा महसूस होता है।
2: okay.
3: और ये जनरेशन भी वैसे ही चाहता है, दे वॉन्ट टू बी ऑन देयर ओन एंड बी देयर सेल्फ।
2: ओके, ठीक है।
3: तो ये एक सीख है कि बी योर सेल्फ, डोंट बॉदर कि दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में।
2: ओके,
3: आप अपना देखो, अपना सोचो।
2: ओके,
3: लेकिन हाँ, दूसरे के लिए थोड़ा जियो, दैट्स व्हाट वी हैव लर्न्ड, क्योंकि ये फ्रेंड्स के लिए बहुत जीते हैं।
2: ओके,
3: तो दूसरों के लिए भी जियो, अपना देखो, और तीसरा है मस्त मौला रहो।
2: हाँ,
3: ये चीज हमें सीखने को मिला है, अपनी बेटी से ही सीखने को मिला।
2: अच्छा, ओके। आप मस्त मौला थे वैसे अपने टाइम पे, थे क्या जब बच्चे थे?
3: मैं मस्त मौला तो नहीं था,
2: ओबीडिएंट थे काफी,
3: बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा ओबीडिएंट था।
2: ओके,
3: लेकिन जब से मैंने घर छोड़ के बाहर नौकरी करने गया एट हर एज ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 20 and a half 21,
2: ओके,
3: उस समय से मुझे पता चला कि मैं कितना ओबीडिएंट था।
2: ओके,
3: जो मुझे नहीं चाहिए था।
2: टॉपर वॉपर थे क्या?
3: आपको कैसे मालूम चला ये सर?
2: सर वो बातों से पता लग रहा है, इतना आर्टिकुलेट वे में आप बात कर रहे हैं तो आई कैन गेस।
3: हाँ, मतलब स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग हर जगह पे टॉप पे रहे।
2: अरे माशाल्लाह। ओके, सो ये तो देखिए अलग डिपार्टमेंट है। नाउ तुम्हारी जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द प्राइमरी चीज जो हमारे या इनके समझ में नहीं आने वाली है, या फिर एक एक अच्छी बात जो तुम्हें लगता है तुम्हारे जनरेशन के, विच यू फील के बाकी पहले जनरेशन में नहीं थी?
4: I think पहली बात तो ये है कि we're all about self-expression.
2: हाँ, okay.
4: We're very happy with the way we are.
2: Okay.
4: तो हम सोचते नहीं कि लोग हमें देख के क्या कह रहे हैं, हमारे दिमाग में उतना नहीं आता, हम कहते हम जी रहे हैं, हम खुश हैं।
2: हाँ, okay.
4: So we live that way. और
2: कोई ऐसी शिकायत है इस जनरेशन तुम्हारा रहता है कुछ के, यार मैं कैसे समझाऊं, छोड़ो नहीं समझाती?
4: बीच बीच में कम्युनिकेशन एक तो बात होती है, क्योंकि अभी एसेंशियली हमारे जनरेशन के लिए कम्युनिकेशन चेंज हो गया था जब कोविड हो गया था, दैट्स व्हेन कम्युनिकेशन चेंज्ड, क्योंकि तब सब कुछ स्क्रीन के ऊपर था. सो एसेंशियली वी क्रिएटेड आवर ओन लैंग्वेज. एंड ऑफन टाइम्स क्या होता है, मम्मी पापा के साथ बात कर रही हो जाता है, बीच बीच में एक दो नया वर्ड यूज कर दिया तो पूछते क्या कह रही हो, समझाना पड़ता है. तो पूछते क्यों ऐसे, यही तो कह सकते सर. पर वही एक नया लैंग्वेज अभी हुआ जो उनको समझाना, टू बी फेयर मेरे मम्मी पापा ने दे ऑलमोस्ट क्वाइट दे अंडरस्टैंड इट क्वाइट
2: वेल. आई कैन क्लियरली सी दैट
4: दे अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल. सो मैं बीच बीच में बोल भी लेती हूँ, दे अंडरस्टैंड, दे रेसिप्रोकेटेड बैक.
3: मालूम नहीं है और मालूम नहीं है,
2: ठीक है.
3: हाँ
2: ठीक है,
3: इट्स एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि एन एम्प्टी कप इज एन अपॉर्चुनिटी.
2: डेफिनेटली,
3: इसलिए मैं चाय वगैरह नहीं पीता हूँ जो आपको बता देते हैं.
2: तो मेरा ये अगला जो सवाल है ना थोड़ा सा अलग है. देखिए आजकल ना सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजें होती हैं, एंड बहुत सारे यहाँ पे आए हैं जो आज की जनरेशन के, एंड दे से कि वी आर वेरी एक्सप्रेसिव एट टाइम्स, यू नो, दे पोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट. क्या आप सोशल मीडिया पे, पहले तो ही बताइए आप.
3: हाँ जरूर है.
2: ओके, सो आप एडेड हैं दोनों की एक दूसरे के ऊपर. Were you like initially uncomfortable?
4: Absolutely not.
2: No problem at all.
4: I have nothing. Like, I'm
2: do you express
4: open.
2: That much or no?
4: Yes.
2: Like, okay.
4: Everything.
2: Which is really cool. It doesn't happen. So, आपको क्या लगा था? मतलब मैं, do you like comment on whatever she's expressing or you just let it go and बाद में बात कर लेंगे?
3: आपको थोड़ा बताते हैं ऐसा कि जब वो grade 11, 12 में थी.
2: Yeah, yeah.
3: तब हम लोग उससे पूछते थे कि तेरे फ्रेंड्स लोगों को ऐसा है के पास ऐसे सोशल हैंडल्स हैं.
2: Yeah, yeah.
3: And they maintain that kind of a profile.
2: Yes.
3: इन्होंने एक चीज कहा था, बोले डैडी अभी नहीं करते, व्हेन आई विल गो टू यूनिवर्सिटी उस समय आई विल डू इट एंड आई विल डू इट राइट.
2: ओके,
3: तो जब वो यूनिवर्सिटी गई देन शी स्टार्टेड हर सोशल हैंडल्स.
2: अरे वेरी नाइस.
3: एंड तब जाके एंड वी वर कनेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे.
2: ओके,
3: और यहाँ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग, वी डोंट, बोथ ऑफ अस, लाइक वी डोंट फील कि वी आर एनक्रोचिंग अपॉन प्राइवेट स्पेस.
2: व्हिच इज नॉट,
3: वो चीज एक्चुअली हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फैमिली,
2: बिकॉज़ आई हैव सीन सच इंस्टेंसेस. हां,
3: जो जिनके, जो लोग एक्चुअली अपने बच्चों के सोशल मीडिया में है नहीं,
4: है नहीं, एग्जैक्टली,
3: दे आर नॉट देयर. तो हमें थोड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसा हमने कर दिया कि हम हैं वहां वो नहीं है. बट द फैक्ट इज दैट द एक्सेप्टेंस लेवल,
2: एब्सोल्युटली
3: एक्सेप्टेंस लेवल,
2: एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप अगर इस चीज से भागेंगे तो दूसरी प्रोफाइल बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं है.
3: Obviously.
2: है ना?
3: It's, you would it's obviously easy, do that. Yeah. It's so easy. You can always have another one.
2: Yeah.
3: लेकिन जिसमें है, and second thing जो very important है, कि trust in your genes.
2: Yeah,
3: ये
2: absolutely.
3: मैं सभी parents को बताता हूँ.
2: Yeah.
3: So when we have such sessions, जब मैं, हम लोग बैठते हैं parents के साथ, मैं कभी कभार counseling sessions करता हूँ.
2: अच्छा.
3: तो उस समय मैं ये कहता हूँ कि trust your genes. You have brought them up in a certain way. और उस वे को, वो आप ही का वे है, ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे अलग कुछ है. दैट मींस ट्रस्ट देम. और अगर वो ट्रस्ट सुपरलेटिव डिग्री तक है, जो मतलब यहाँ सामने बैठ के ऐसा नहीं है, व्हेनेवर शी इज देयर आल्सो वी ट्रस्ट व्हाट शी इज डूइंग, ऐसा.
2: काफी लेवल हेडेड,
3: सारे पेरेंट्स का अगर
2: काफी लेवल हेडेड मामला है ना आपका, इसलिए इट बिकम्स इजीियर फॉर यू. जिद करते हैं वैसे आप, मतलब पहले कभी जिद करी? नाउ यू आर लाइक काम डाउन.
4: कोई जिद नहीं,
2: क्या बात है ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. वेरी नाइस. ओके, तो ये कहाँ से आया, ये कहीं कुछ देखा, इन्फ्लुएंशियल कहाँ से हुआ?
4: बचपन से घर पे भी लाइक चर्चा होती थी कि शर्लक होम्स के बारे में.
2: ओह नाइस.
4: देयर वाज ऑलवेज टॉक.
2: या ओके.
4: हम लोग बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, क्राइम सीरीज देखते थे, एंड बचपन से मैं जो भी बुक्स पढ़ती हूँ, एवरीथिंग इज क्राइम रिलेटेड, एवरीथिंग इज अ थ्रिलर.
2: ओके,
4: दैट्स सॉर्ट ऑफ अ
2: हाई फाइव ऑन दैट. वेरी गुड.
3: सिर्फ यही नहीं, मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ.
2: ओके,
3: प्रीनेटल स्टेज जब था प्रेगनेंसी का,
2: हाँ हाँ,
3: उस समय शर्लक होम्स को फिर से दोबारा पढ़ी इन्होंने.
2: अरे अच्छा.
3: हाँ.
2: अच्छा, ये इन्फ्लुएंस पहले से चल रहा है क्या?
3: बहुत कुछ पता नहीं, बट इनको पसंद था.
2: वेरी नाइस.
3: तो इसलिए इन्होंने पूरा पढ़ा.
2: हाँ हाँ.
3: और मैनेजमेंट के सारी किताबें पढ़ ली फिर से जो MBA में किए, और फिर जब रास्ते पे चलते थे वॉक लेते थे तो उस समय भी हम लोग चर्चा करते थे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स वगैरह.
2: अच्छा,
3: तो ये सब चर्चे होते रहते थे. पता नहीं उसी का शायद इट वुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट.
2: नहीं सर, इतना चमत्कार तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपने मेहनत बहुत करी है तो उसका क्रेडिट लीजिए आप प्लीज. ये आपकी मोहब्बत, आपको भरोसा है जो यहाँ तक लेके आया है.
3: हाँ, लेकिन इसकी जो मतलब चाह है टू हैव दैट क्रिमिनल साइकोलॉजी, ये अभी तक डगमगाया नहीं.
4: क्योंकि नहीं डगमगाया था मिडिल स्कूल में एक बार जब कहा था मुझे डांस करना है, केपॉप आइडल बनना, एक फेस था.
2: अच्छा, वही फेस था.
4: वही फेस था. और फिर न्यूरोसर्जन भी बनना था एक बार.
3: बीच में आते रहते हैं,
2: ये वाला चीज जरूरी है.
4: और फिर एक दिन लगा कि नहीं, इंग्लिश लिटरेचर साइकोलॉजी के बीच में रख था, और फिर मैंने कहा नहीं साइकोलॉजी पढ़ूंगी.
2: ज्यादा सही है ना. ओके, बिकॉज साइकोलॉजी मेरा भी सब्जेक्ट था, तो आई कैन अंडरस्टैंड. आई शेयर द सेम लव फॉर ऑल दीज थ्रिलर्स एंड क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टफ. क्योंकि मैंने सुना अभी आप दोनों से ही है ना, आई रियली लव द फैक्ट कि आप लोग इसको मतलब यू डोंट टेक इट अदरवाइज. लेकिन कई मरतबा आजकल देखने में आता है, मैंने पेरेंट्स से बात करी है, देयर लाइक कि बड़ा वो कोशिश करते हैं, डरते हैं इस बात से कि दो तीन चीजें, वीडियो गेम से थोड़ा दूर रखना है, ये चीज नहीं दिखानी है, हॉरर से दूर रखना है, थ्रिलर से दूर रखना है, इसका ये इंपैक्ट हो जाए, एंड इट इज टू मच नाउडेज, है ना. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाउ डू यू लाइक, हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग? आपके सहन में कुछ ना कुछ होगा, राइट?
3: जरूर, बिल्कुल. क्योंकि इस मामले में हम दोनों का एक कॉमन प्रोजेक्ट था.
2: ओके,
3: forced by me possibly, because again during my bachelor days
2: okay
3: I mere ko Abdul Kalam sahab se bahut sara inspiration mila.
2: okay,
3: to Abdul Kalam sahab ek aise insaan the jinhone ek conference mein, hum log tab young engineers the,
2: okay.
3: he was there as a speaker, to humko sunne ka bhi mauka mila tha. unhone bataya tha ki dekhiye main to scientist hu, us samay wo president nahi the,
2: okay,
3: scientist the, department of atomic energy and ISRO in ja. to उन्होंने बताया था, आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन एंड आई डोंट हैव अ टेलीविजन एट होम.
2: ओके,
3: आई डोंट सी इट, आई डोंट नीड इट. मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ.
2: ओके,
3: दैट्स ऑल.
2: ओके,
3: तो वो जो जहन में आ गया कि टेलीविजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, फ्रॉम हर बर्थ शी डिडंट सी अ टेलीविजन.
2: ओके,
3: बट शी यूज टू हैव एक टाइम रहता था, डेडिकेटेड टाइम फॉर वॉचिंग वॉट इज रेलिवेंट ऑफ दैट एज.
2: ओके,
3: तो हमारा जो कंट्रोल था वो था टाइम ड्यूरेशन पे और एज रेलेवेंट व्यूइंग.
2: प्लीज एक्सप्लेन एज रेलेवेंट. मतलब
3: एज रेलेवेंट मतलब जो बच्चे जब हैं एकदम छोटे बच्चे,
2: उस एज में क्या
3: उस समय जैसे बारबीज के
2: ओके.
3: लेकिन ऐसा भी कार्टून्स नहीं जो एजिटेट करता हो, बट सूदिंग मेलोडियस. तो उसके चलते क्या हुआ, शी यूज टू उसी में बह गई. तो हम पूरा यू कैन से इट वाज अ डायरेक्टिव वे ऑफ पुटिंग द चाइल्ड इनटू अ फेस.
2: और कौन सी एज में आपको लगा कि दिस इज द राइट टाइम, चलो ठीक है ये हमारे साथ बैठ के ये क्राइम थ्रिलर भी देख सकती है.
3: सो दैट वाज कब आया वो एज?
4: मिडिल
3: स्कूल पे हम लोग किताबें पढ़ते तो उस समय डिस्कस भी करते.
2: नाइस, ओके.
3: तो जितना फॉर्मेटिव इयर्स पे था, मतलब 6 इयर्स 7 इयर्स से नीचे, उस समय शी यूज्ड टू सी वीडियोस बट डेडिकेटेडली ओनली फॉर सच काइंड्स ऑफ थिंग्स.
2: ओके,
3: हां. फिर जैसे फॉर्मेटिव आया, नॉर्मेटिव आया, नॉर्म सेट करना होता है, तो उस समय से देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग विद हर एंड सीइंग दोस काइंड्स ऑफ थ्रिलर्स व्हिच आर रिलेटेड टू क्राइम्स एंड सीरीज एंड.
2: ये बेस्ट आंसर मिला है मुझे इस चीज का. अभी तक मुझे इसका जवाब अच्छे से मिला नहीं था, बट आपने इस तरह के सॉर्टेड जवाब दिया है, समझ में आ रहा है, टॉपर है आप.
1: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन FM 107.
2: Let's talk about mental health, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है. हमने कल परसों ही बात करा था, and जो word मैंने अपने time में भी नहीं सुना, I'm not that old, उसके बावजूद मैंने कभी school में नहीं सुना depression, anxiety, पता नहीं क्या क्या.
3: Exactly.
2: And मैं जब देखता हूँ 12 साल का बच्चा परेशान है, इसको क्या क्या ये बात की परेशानी है, and that you know that's like an एक समझ में नहीं आता इसको क्या कैसे लिया जाए, क्या बोले. What do you think is the main reason of this?
3: मैं बोलने के पहले अपनी बेटी से बोलूं.
2: हाँ, you go ahead, because you
3: पढ़ाई भी वो कर रही
2: है. हाँ. I think तुम्हारे before I let you speak, sorry for interruption by the way, तुम्हारे दोस्त भी होंगे, no? Not everybody can be as level-headed as you would be or you would want to be. What do you see these days that really bothers you?
4: Absolutely nothing, because the first and foremost thing is everyone's different.
2: That's
4: as simple as that. So whatever behavior someone is exhibiting, I look at it.
2: Okay.
4: I try to find the cause of that behavior, and I simply accept it.
2: Okay.
4: And then I change my way of interacting with that person.
2: Okay.
4: Do whatever suits them best.
2: Okay. It doesn't bother you if the thanks change. Some people change.
4: Because there are circumstances you're not aware of.
2: Yeah. And that's the best way to deal with it, I think.
4: That's the easiest. Because you never know what someone's going through.
2: Actually, what do you
3: ये जो चीज है ये हम लोग जब when we started our life together उस समय भी हम जब बाहर निकलते थे लोगों में देखते थे लोग कैसे हैं क्योंकि हमारा दोनों का पढ़ाई एक ही फील्ड में है
2: अच्छा
3: in the field of human resources
2: क्या बात
3: तो उस समय human behavior was something which we used to closely observe कहीं भी जाएं बच्चे का उनके parents का उनके grandparents का सब we normally try to look at that It has become a habit for us. Like it's a way of life.
2: Yeah,
3: yeah. So this is not different that we are seeing them like we are trying to be magnifying glass. But it's
2: not his chachi.
3: Correct. Observation.
2: Yeah.
3: So when we go there, we have both of our approaches.
2: Yeah.
3: That maybe this person needs help.
2: Okay.
3: Anybody who used to have a different kind of an approach towards life.
2: Yeah.
3: Suppose वो थोड़ी सी anger में बात करे.
2: Yeah.
3: Suppose वो बहुत मतलब ऐसे disgusted हैं, frustrated हैं.
2: Yeah.
3: मतलब उसके इस frustration के पीछे एक story है, कहानी है.
2: Yeah.
3: हर एक इंसान का एक कहानी होता है.
2: Mm-hmm.
3: आज आप यहाँ जिस मूड पे आए हैं उसके पीछे कहानी है
2: ऑब्वियसली
3: आप घर पहुंचेंगे तो उसके पीछे भी एक कहानी है तो यही हमारी मतलब दिस इज व्हाट आवर टेक ऑन दिस की वी बिलीव दिस इसलिए क्या होता है लोगों से इंटरेक्शन करने में इट बिकम्स इजियर बिकॉज देन वी आर एबल टू अप्रिशिएट

0: कैरेक्टर दैट एम्पथाइज कि वो तो इस डायमेंशन से ही बात कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा
1: अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एज वेल एंड दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट
0: थिंग दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट
1: और एक चीज हम कल भी डिस्कस कर रहे थे ऑफिस में एंड वी वर डिस्कसिंग जितने भी लोग आते हैं बहुत सारे ऐसे भी आए हैं जिनके जो बच्चे हैं वो 16 17 18 साल 20 साल तक है एंड उनका क्या है कि उनसे कुछ पूछो कि क्या करना पसंद है तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई उसके बाद ये एंड दे डोंट डू जो हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ सॉर्ट्स बिकॉज दे आर टू स्केयर्ड टू मेक देम इंडल्ज इन स्टफ जैसे कि स्टफ क्या बोलूं वीडियो गेम्स एंड ऑल अब वो थोड़ा एक डर है कि पता नहीं क्या इन्फ्लुएंस हो जाएंगे पता नहीं क्या देख लेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा क्या सजेशन है आपका हाउ टू लाइक लेट देम बी या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दे आर मिसिंग देयर होल टीनेज वाला जो पार्ट है जहां पर ना थोड़ा सा फ्री रहना चाहिए मतलब इतना क्या
0: देखिए जैसे मैंने कहा कि एक कप एम्प्टी है तो उसमें अपॉर्चुनिटी है हमारा माइंड भी वैसा ही है हम अगर कहते हैं कि ही इज एन एम्प्टी माइंडेड पर्सन तो उसको नेगेटिव से भी बहुत लोग लेते हैं कि उसके दिमाग में है नहीं कुछ लेकिन दिमाग में ना होना भी जरूरी है ना होना कुछ सेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो खाली होने चाहिए एंड हाउ डू वी मेक इट खाली इज दैट वी हैव टू गिव सम स्पेस फॉर दैट पर्सन टू
1: वो जगह नहीं है समझ रहे
0: वो जगह नहीं है
1: तो उनको
0: वो जगह बनानी जरूरी है
1: या एग्जैक्टली जैसे अभी मैंने तुमसे पूछा ना बहुतों से पूछा मैंने एंड दे विल बी स्केयर्ड टू से हम क्राइम थ्रिलर्स देखते हैं उससे ये हो जाता है उससे हो जाता है पीपल बिकम अग्रेसिव एंड ऑल एंड आई हैव हर्ड दैट सो मेनी टाइम्स एंड आई डोंट गेट इट बिकॉज आई लव इट मैं शुरू से तुम्हारी तरह मैं भी देख रहा हूँ एंड आई प्ले वीडियो गेम्स ठीक है उसमें शूटिंग एंड एवरीथिंग इज देयर बट दैट डजंट मेक मी एंग्री मतलब दरवाजा थोड़ी तोड़ो
0: तो इसलिए ये जो सारे एक्टिविटीज हैं दीज आर देयर टू फ्री अप योर स्पेस हाँ
1: एग्जैक्टली
0: लिमिटेशन होना जरूरी
1: वो
0: है
1: तो हर
0: चीज में है
1: वो तो हर
0: अब बियॉन्ड तो नहीं जाएंगे
1: ऑब्वियसली
0: तो इसलिए जो भी करना है इवन इफ इट इज एन एग्जाम टाइम इट शुड नॉट स्टॉप इसकी डांस और सिंगिंग क्लासेस
1: ओके
0: हम मतलब अभी भी इसको जब पढ़ाई लिखाई होगा बट दैट शुड नॉट स्टॉप बहुत लोग करते हैं एग्जाम के टाइम पे चलो अभी डांस क्लास नहीं है तो बहुत पढ़ाई है एग्जाम है नहीं करना है बट वी नेवर बिलीव्ड दैट बोथ ऑफ अस वी नेवर बिलीव्ड दैट बिकॉज़ दैट वाज एन ऑक्सीजन फॉर हर
1: वो स्पेस ब्रीदिंग स्पेस है
0: हाँ और वो ऑक्सीजन से जो एनर्जी मिलता है उससे आप और ज्यादा फोकस कर सकते हो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो
1: हाँ राइट एक लौता होने पता ये एक बहुत बड़ी बात है ये लोग समझते नहीं है लोगों को लगता है एक लौता है अरे इनको तो बात करना इनके दोस्त
2: नहीं
1: है
2: भाई बहुत लोनली होंगे
1: या आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक दैट वी आर लोनली वो डेफिनेशन लोग बदल देते हैं
2: बहुत लोग ने मुझे पूछा तू लोनली नहीं थी बड़े होते तो
1: हाँ पता नहीं क्यों लोगों तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा एक भाई होना चाहिए अरे भाई नहीं होना चाहिए ठीक है एंड इट्स फाइन बट पीपल वो लेबल दे देते हैं लोनली हो जाते हैं वो होगा अच्छा क्या क्या पसंद आया वहाँ पे जो मतलब यू स्टे कनेक्टेड टू दैट या द बेस्ट थिंग अबाउट इट
2: वेदर एंड फूड
1: हाँ हाँ हाँ
2: Amazing.
1: कुछ अभी वो होता था ना बाहर जाके थोड़ा मेरे को मेक्सिकन पसंद है ऐसे कुछ आया तुम्हारे अंदर
2: नहीं नहीं वहाँ पे जाके बहुत चाइनीज खाना मलेशियन सिंगापुरियन
1: दैट इंडियन चाइनीज वर्जन
2: ऑफ नहीं नहीं नहीं
1: The typical no, Chinese.
2: I'm not into Indian food at all.
1: Huh?
2: So I don't like Indo-Chinese as well.
1: Okay.
2: I need like original Chinese food.
1: okay.
0: ये Chinese खाती है.
1: अच्छा.
0: और उसके चलते हम भी Chinese, Vietnamese.
2: Korean.
1: Very nice.
0: Korean.
1: No, I love Korean food. Huh? Korean.
0: ऐसा हम लोग खाना start कर दिया हमने. मतलब तब से बहुत अच्छा लगता है
1: सर आपकी एडेप्टेबिलिटी बड़ी खतरनाक है इसकी तारीफ करनी पड़ेगी
0: हम तो अमीबा हैं जैसा शेप में डालो हो गए
1: ओके एंड बिफोर आई लेट यू गो क्या आपका मैसेज है इन्हीं की एज के जितने भी लोग हैं
0: मैसेज बताए तो
1: नॉट रियली ज्ञानव्यापी
0: बट इट्स अ वेरी कूल थिंग जब मम्मी पापा फोन करें तो उठा लिया करो
1: ये बात मैं 10,000% एग्री करता हूँ ये तो ताना मारा है आपने बहुत शानदार
0: ये एक एडवाइस है
1: okay.
0: कि मम्मी पापा बहुत दूर रहते हैं
1: हाँ.
0: अगर फोन उठा लेते हो हाँ. तो कुछ नहीं जाता है
1: हाउ ऑफन डू यू कॉल बाय द वे जब ये बाहर होती थी
0: हम लोग वो छूट देके रखे हैं उतना भी नहीं कॉल करते हैं
1: अच्छा
0: okay. मतलब एक कुछ ऐसा होता है कि 4-5 दिन लगातार हम इसको देखते भी नहीं
1: अच्छा
0: हाँ बात मतलब व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू डे इज फाइन एंड ऑफ द डे हाउ वाज योर डे कूल
1: ओके
0: तो ऐसा
1: सॉर्टेड
0: है तो हाँ तो फिर कुछ ऐसा जिफ लगा दिए तो वो कुछ ऐसा ये बना दिया तो ये सब चल गया खत्म
1: यू शेयर मीम्स एज वेल अरे बहुत बढ़िया ये हुई बात
0: वो सब है तो वन थिंग इज देयर जब भी थोड़ा फोन करें वो ना फोन उठा लिया करें ये इस जनरेशन का एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है

0: है.
1: Agreed, agreed.
0: और दूसरी चीज है कि आगे चल के लाइफ थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव और भी ज्यादा होने वाली है.
1: Yes.
0: Which is there for each generation.
1: होना भी चाहिए सर.
0: होना भी चाहिए.
1: होना भी चाहिए.
0: तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो अच्छे तरीके से. कोर कॉम्पिटेंसी पे ध्यान दो. जो लोग इधर उधर मत भटको. कोर कॉम्पिटेंसी अच्छे से पढ़ाई कर लो भाई. लाइफ सेट हो जाएगी.
1: अपनी जनरेशन को क्या मैसेज दोगी? सिंस देखो मैं आई रियली प्रे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट बिकॉज एक तो मेरी फेवरेट फील्ड्स में से एक तुमने चूज किया है. सो आई रियली वांट टू शाइन इन दैट एंड आई प्रोबब्ली विल. बट व्हाट इज योर मैसेज टू योर जनरेशन?
2: सिंपली दैट वी आर डूइंग वेल. लेट्स डू इवन बेटर.
1: तो कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस यहाँ आने का? बोथ ऑफ यू कैन शेयर. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग हियर? इससे पहले कोई स्टूडियो में जाने का मौका
2: मिला? इसके पहले एक बार गए.
1: ओके नाइस.
2: एक वर्कशॉप के लिए गए थे.
1: आई होप इट्स बेटर.
2: Absolutely, it's more fun. तो इस पर उस दिन ऐसे बातचीत नहीं होती. Just like you know, audio controls, ये सब देख रही थी वहाँ पे. Mic कैसे काम कर रहा है.
1: Okay.
2: Just all of that. Music कैसे, DJing का एक experience हुआ था तब. तो वो सब देखने गई थी. पर आज बहुत मजा आया.
1: Thank you so much. क्योंकि बाहर actually में आर्जेस को DJ ही कहते हैं. मतलब यहाँ पे भी देख रहे DJ लिखा हुआ है. Yeah, that's why. वो disc jockeying को ना, पर हमने फिर वो देसी, एक तरीके से देसी word है ये. कि रेडियो है तो रेडियो जॉकिंग करें. सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
0: मेरा तो हर समय मन था कि मतलब रेडियो स्टेशन मुझे देखना है.
1: अच्छा,
0: कैसा होता है ये, फील कैसा होता है ये माइक्स.
1: सर पहले ही दिन मैसेज कर देते आप सर. तो किया नहीं आप लोग?
0: ये तो था मन में था.
1: अच्छा.
0: लेकिन धीरे धीरे यू नो ऐसे तो बोल नहीं सकते कि मुझे आना है.
1: अरे आप बोल रहे सर, इतना तो
0: जब मैं मुझे एक्चुअली वो ना वाइब्स आना चाहिए.
1: अच्छा ओके.
0: तो मुझे कबीर से वो वाइब्स आया.
1: अरे थैंक यू सर.
0: तो तब जाके मुझे ऐसा लगा कि नो आई शुड एक्सप्रेस माय फीलिंग. तो यहाँ आके जो लगा मैंने इसको कहा और हम लोग आते थे बात कर रहे थे. ये पूछ रही थी वहाँ क्या लिखा रहेगा FM 107. हाँ जरूर लिखा रहेगा.
1: बिफोर आई लेट यू गो साइन ऑफ करने से पहले सर आपको सारी लैंग्वेज में कमांड है जहाँ जहाँ आप रहे हैं? लाइक बंगाली एंड मराठी बोथ?
0: हाँ, क्योंकि जन्मा हूँ उड़ीसा में.
1: अच्छा, कहाँ से कहानी शुरू है?
0: हाँ
1: ओके.
0: ओडिया भी कही होची, बुझे होची, लिखी होची, देन बंगाली इज द मदर टंग.
1: ओके,
0: सो वी स्पीक बंगाली एट होम.
1: अच्छा, तो कमांड अभी सबकी है. ओके,
0: सबकी है लिखना पढ़ना. मेरा फर्स्ट जॉब था तमिलनाडु में, लेकिन वो बॉर्डर था कन्याकुमारी दैट इज केरला का.
1: ओके,
0: तो वहाँ एक लैंग्वेज चलती है उसको कहते हैं तलयालम. तमिल प्लस मलयालम तलयालम. अदो नल्ला तरियों, एलुदु तरियों, पडिक्कु तरियों, पेस तरियों.
1: ठीक है सर, जो भी कह रहे हैं
0: जो भी है. तो वो वहाँ से शुरू होके फिर यहाँ जहाँ महाराष्ट्र में आए मुंबई में, तो मराठी समझ में आ जाती है. कुछ कुछ वर्ड्स बोल लेते हैं.
1: अच्छा,
0: लेकिन वहाँ बोले नहीं इतना बोल के. आई कैन नॉट रीड और राइट.
1: अच्छा ओके,
0: बट दैट इज फाइन. और यहाँ आके तो थोड़ी सी अरबिक, थोड़ी सी
1: कुछ काम चला मतलब निकलने बढ़ने के लिए काफी लगने. ठीक है सर, आई एम टोटली इंप्रेस्ड बाय द होल फैमिली, नॉट जस्ट बाय यू, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. इट्स बीन अ प्लेजर. ये फॉर्मली भी कह रहा हूँ लेकिन आई रियली मीन दीज वर्ड्स बिकॉज आई थिंक बहुत कम ऐसा होता है कि जब कोई मिलने के लिए आए एंड आई फील लाइक ये बात हम काश और कर सकते. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर. यू बीइंग सो स्वीट मैम, थैंक यू सो मच. आप तो मतलब घर की सीईओ हैं तो जाहिर सी बात है, ये तो एम्प्लॉई है तो लोग.
0: थैंक यू सो मच
1: एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट.
2: थैंक यू.
1: जब वो अचीव कर लो ना देन कम बैक फॉर एन इंटरव्यू प्लीज. मुझे फेवरेट टॉपिक है.
0: आप भी
1: जी सर. प्लीज सर, प्लीज बोलिए.
0: आप भी
1: जी सर.
0: हम तीनों की तरफ से
1: जी सर,
0: ये जो हमारी मतलब दिल से दुआ है आपको
1: जी सर,
0: कि आप इसी तरह लोगों से कनेक्ट कीजिए.
1: थैंक यू सो मच.
0: और ऐसे ही सुमधुर जो आपकी भाषा है और जो आवाज है
1: जी सर,
0: इससे लोगों के दिल तक पहुंचते रहिए.
1: थैंक यू सो मच.
0: दिस इज यू, लेट यू स्पीक टू देयर हार्ट्स.
1: थैंक यू सो मच सर. बहुत प्यार सर, हमेशा हमेशा के लिए आपके. थैंक यू सो मच.
3: ख्याल रखिए अपना क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मां सलाम.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107, 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है हदीस टू हैबिट। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। हदीस टू हैबिट में हम हर हफ्ते एक ऐसी आदत पे बात करते हैं जो सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बल्कि हमारे रिश्तों, हमारे घरों और हमारे दिलों को भी बेहतर बना सकती है। और आज हम बात करेंगे गुस्से पर काबू पाना। गुस्सा एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कभी गुस्सा ना आता हो। कभी किसी की बात बुरी लग जाती है, कभी किसी का अंदाज, कभी घर के हालात, कभी थकन, कभी जिम्मेदारियां, और कभी सिर्फ एक छोटी सी बात हमारे अंदर आग लगा देती है। लेकिन सवाल ये नहीं कि गुस्सा आता है या नहीं, असल सवाल यह है कि गुस्सा आने के बाद हम करते क्या हैं। बाज लोग खामोश हो जाते हैं, बाज चीखने चिल्लाने लगते हैं, कुछ तो चीजें उठा के फेंकने लगते हैं, और कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो बाद में

0: हर वो गुस्सा चीखना तंज ये सख्त ले जाओ तो आहिस्ता आहिस्ता घर सिर्फ एक इमारत रह जाता है, सुकून नहीं रहता। बच्चे खास तौर पे गुस्से से बहुत मुतासर होते हैं। अगर बच्चा हर रोज वालिदैन को गुस्से में देखे चीखते हुए सुने तो वो यही सीखता है कि मसला हल करने का तरीका गुस्सा है। फिर वही बच्चा स्कूल में दोस्तों के साथ और बाद में अपनी जिंदगी में यही अंदाज अपनाता है। इसी तरह बाज लोग अपने गुस्से को सच बोलने का नाम दे देते हैं। वो कहते हैं मैं भाई सीधी बात करता हूँ, लेकिन सच अगर सख्ती बेइज्जती और तकलीफ के साथ बोला जाए तो वो कभी इस्लाह नहीं करता, दिल तोड़ देता है। इस्लाम हमें हक बात के साथ अच्छा अंदाज भी सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे लोग भी आए जिन्होंने बदतमीजी की, सख्त लहजा अपनाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नरमी से जवाब देते। यही वजह है कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासर होकर बदलने लगते। गुस्सा वक्ती तौर पे इंसान को ताकतवर महसूस करा सकता है, लेकिन उसके बाद अक्सर शर्मिंदगी होती है। कभी खामोश पछतावा, कभी रोना धोना, कभी ताल्लुकात में दूरी और कभी बरसों की नाराजगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान खुद को बदल सकता है। अगर आज किसी को महसूस होता है कि वो जल्द गुस्सा करता है, आवाज ऊंची हो जाती है या बात करते हुए तकलीफ दे देता है, तो यह एहसास ही तब्दीली की पहली सीढ़ी हो सकती है। क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी पहचान ले वो उसे बेहतर भी कर सकता है। और याद रखिए, नरम होना कमजोर होना नहीं, खामोश रह जाना हार जाना नहीं, बल्कि बाज़ औकात खामोशी एक टूटा हुआ रिश्ता बचा लेती है। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता बल्कि रवैया भी सिखाता है। और शायद बेहतरीन मुसलमान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा इल्म हो, बल्कि वो है जिसके अखलाक लोगों को सुकून दें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि गुस्सा सिर्फ एक आदत है या सिर्फ बदतमीजी की वजह से आता है, लेकिन हकीकत यह है कि गुस्सा कई जज्बात का नतीजा होता है। बाज़ औकात इंसान असल में गुस्से में नहीं होता, वो थका हुआ होता है, दुखी होता है, या कभी कभी अपने आप को नज़रअंदाज महसूस कर रहा होता है, या अंदर से टूटा हुआ होता है। मगर ये सब जज्बात आखिर में गुस्से की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसीलिए अगर हम गुस्से को वाकई समझना चाहते हैं तो हमें इसके पीछे छुपी हुई कैफियत को भी समझना होगा।
1: आप सुन रहे हैं हदीब टू हैबिट,
2: हदीब टू हैबिट
1: आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107।
0: बहुत से लोग पूरा दिन खामोशी से बोझ उठाते रहते हैं। कोई माली परेशानी में है, कोई अपनी जिम्मेदारियों से थक चुका है, कोई अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं, कोई खुद को अकेला महसूस करता है, और कोई सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसकी बात समझ ले। फिर एक छोटी सी बात होती है, चाय देर से मिली, किसी ने जवाब नहीं दिया, बच्चा शोर कर रहा था, किसी ने थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया और इंसान फट पड़ता है। असल गुस्सा शायद उस बात पर नहीं होता बल्कि उन तमाम दबी हुई कैफियतों पर होता है जो दिल में जमा थी। आज के दौर में इंसान की जिंदगी बहुत तेज हो गई है, लोग जिस्मानी तौर पर भी थके हुए हैं और जहनी तौर पर भी। हर वक्त जल्दी, दबाव, मुकाबला, जिम्मेदारियां और तवक्कात। सोशल मीडिया ने भी इंसान के अंदर बेचैनी बढ़ा दी है। लोग एक दूसरे की खुशियां देखते हैं और अपनी जिंदगी से मवाजन शुरू कर देते हैं। किसी को लगता है सब खुश हैं, सिर्फ वही परेशान है। किसी को महसूस होता है कि उसकी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। और जब इंसान के अंदर सुकून कम हो जाए तो बर्दाश्त भी कम होने लगती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर भी बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। घर के माहौल का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। अगर कोई इंसान हर वक्त तनकीद सुनता रहे, उसकी बात ना सुनी जाए, उसकी थकन ना समझी जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होने लगता है। एक माँ जो पूरा दिन घर संभालती है, अगर बदले में उसे सिर्फ शिकायतें मिले, तारीफ ना मिले, तो वो जज्बाती तौर पर थक जाती है। एक बाप जो रोजगार की फिक्र में हो, अगर उसे घर में सुकून ना मिले, तो वो जल्द गुस्सा करने लगता है। एक नौजवान जिसकी बात कोई ना सुने, वो जिद्दी या सख्त मिजाज हो सकता है। बाज लोग बचपन से गुस्से वाले माहौल में बड़े होते हैं, उन्होंने हमेशा यही देखा होता है कि मसला चीख कर हल किया जाता है। घर में आवाजें ऊंची होती थी, इसलिए उन्हें ये नॉर्मल लगने लगता है। फिर वो बड़े होकर भी वही अंदाज अपने रिश्तों में ले आते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात इंसान जानता भी है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसका रिएक्शन एक आदत बन चुका होता है। कुछ लोग गुस्से को छुपाते रहते हैं, वो खामोश रहते हैं, कुछ नहीं कहते, मगर दिल में बातें जमा करते रहते हैं। फिर एक दिन मामूली सी बात पर बहुत बड़ा रद्देमल आ जाता है। इसीलिए जज्बात को सेहतमंद तरीके से बयान करना भी जरूरी है। इस्लाम हमें तवाजुन सिखाता है, ना हर बात पर फट पड़ना दुरुस्त है और ना हर तकलीफ को दिल में दबाए रहना, दफन करते रहना। इंसान को अपने जज्बात समझने भी चाहिए और उन्हें बेहतर अंदाज में बयान करना भी सीखना चाहिए। कभी कभी इंसान खुद अपने साथ भी बहुत सख्त होता है, वो अपनी गलतियों को माफ नहीं करता, अपने आप से नाराज रहता है और फिर अंदर की यही सख्ती दूसरों के साथ रवैये में भी आ जाती है। इसीलिए गुस्सा कम करने के लिए सिर्फ जबान नहीं, दिल को भी सुकून देना जरूरी है। एक और अहम बात, जब इंसान अल्लाह से दूर होने लगता है तो दिल की बेचैनी बढ़ने लगती है। नमाज में सुकून कम हो जाए, दुआ कम हो जाए, दिल हर वक्त दुनिया की फिक्र में लगा रहे, तो इंसान के अंदर सब्र भी कम होने लगता है। जिक्र, दुआ, कुरान और खामोशी के चंद लम्हे इंसान के दिल को नरम करते हैं, क्योंकि सुकून सिर्फ हालात से नहीं, सुकून दिल के ताल्लुक से आता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मैं नहीं बदल सकता, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, इंसान बदल सकता है। अगर गुस्सा सीखी हुई आदत बन सकता है तो सब्र भी सीखी हुई आदत बन सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि तब्दीली एक दिन में नहीं आती, पहले इंसान सिर्फ बाद में पछताता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्से के दौरान खुद को पहचानने लगता है, फिर कभी कभी खुद को रोक लेता है और एक वक्त आता है जब वो पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून हो जाता है। ये सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन मुमकिन है, और शायद गुस्से को कंट्रोल करने का पहला कदम यही है कि इंसान अपने दिल से पूछे, मैं असल में किस बात से थका हुआ हूं, मुझे किस चीज ने अंदर से बेचैन किया हुआ है, क्या मुझे सिर्फ खामोशी नहीं समझने वाले की भी जरूरत है। क्योंकि बाज़ औक़ात गुस्से के पीछे सिर्फ एक तकलीफ होती है जो कभी अल्फाज में बयान ही नहीं हो पाती। गुस्सा सिर्फ एक जज्बा नहीं, ये एक ऐसी कैफियत है जो अगर काबू से बाहर हो जाए तो इंसान के अल्फाज, रवैये, फैसले और ताल्लुकात सबको मुतासर करती। बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि उसके एक जुमले, एक चीख पुकार और एक सख्त किस्म के रद्द अमल ने सामने वाले के दिल में कितनी गहरी चोट लगा दी। लोग आगे से अक्सर ये कह देते हैं

0: वक्त जहां पे हमने ये समझना है कि हमने इस हदीस को कैसे अपनी हैबिट बनाना है. तो सबसे पहले तो गुस्से के लम्हे में खुद को संभालना. गुस्सा अक्सर चंद सेकंड में आता है, लेकिन इन्हीं चंद सेकंड में इंसान या तो अपना ताल्लुक बचा लेता है या उसे नुकसान पहुंचा देता है. इसलिए आपने ये चंद लम्हे खामोश रहना है, अपने अल्फाज को रोक लेना है, फौरन जवाब नहीं देना. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को खामोश रहने की तालीम दी, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर वो बोल देता है जो हकीकत में नहीं कहना चाहिए. इसलिए अब की दफा जब भी गुस्सा आए तो थोड़ा सुकून से एकदम से जवाब देने की जरूरत नहीं है. पानी पी लीजिए, अपनी जगह बदल लीजिए, वजू कर लें. खड़े हैं कमरे में तो कहीं बाहर चले जाएं चंद मिनट के लिए, गहरी सांस लें और दिल में आहिस्ता से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें. ये छोटे अमल इंसान के दिल की रफ्तार को बदल देते हैं. बाज लोग कहते हैं कि मुझे गुस्से में कुछ समझ में नहीं आता. उन्हें चाहिए कि अगर वो खड़े हुए हैं बैठ जाएं, बैठे हैं लेट जाएं, थोड़ी देर सुकून से कोई बात ना करें. फिर सोचें क्या वो बात वाकई इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर इतना गुस्सा बनता भी है. फिर आपको शायद एहसास हो कि जिस बात के ऊपर मैं बहुत ज्यादा एकदम से गुस्से से फटने वाला था वो बात तो इतनी बड़ी थी ही नहीं कि उसे इतना बढ़ाया जाए. अब वक्त आ गया है इस हफ्ते के चैलेंज का और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस हफ्ते उन बातों पर जिन पे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता, जैसे ही आपको गुस्सा महसूस होने लगे अपने माइंड को डाइवर्ट करें, पानी पी लें, घर से बाहर निकल जाएं, ऑफिस में है तो ऑफिस वालों से उस वक्त बात करने से इज्तनाब करें. थोड़ी देर कह दीजिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता. इस तरह से होगा ये कि आपकी वो बात जो बहस थी या कुछ भी जो एक बहुत बड़ी लड़ाई बन सकती थी, आपके ताल्लुक को ख़त्म कर सकती थी, वहाँ आपका ये थोड़ी देर खामोश रहना आपको कमज़ोर नहीं साबित करेगा बल्कि आपके रिश्ते को बचा लेगा. और याद रखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपको बताई थी, ताकतवर इंसान वो नहीं जो कुश्ती में किसी को पिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर इंसान तो वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखता है. चलिस्टर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड. में उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप भी अगर गुस्से में उबतला रहते हैं तो अपने गुस्से को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश जरूर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस गुस्से की आदत से बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे इंशाल्लाह. आमीन. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक एक और अच्छी सी हदीस के साथ. तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का. आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान. बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है. आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ी की रूफटॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद

0: मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो
1: and he's hooked that away. That's four runs.
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
3: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
4: ऑन FM 107, दिल से देसी।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

सब गर्क हो गए। वो लड़का फिर बच गया और सही तंदुरुस्त बादशाह के सामने जा खड़ा हुआ। बादशाह ने फिर सवाल किया और लड़के ने फिर वही जवाब दिया और इस मरतबा वो कहने लगा, बादशाह इस तरह आप हरगिज मुझ पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अलबत्ता जो तरकीब मैं बताऊंगा अगर उसको इख्तियार करेंगे तो बेशक आप मुझको कत्ल कर सकेंगे। बादशाह ने लड़के से वो तरकीब दरियाफ्त की। लड़के ने कहा, तो शहर की तमाम मखलूक को बुलंद जगह पर जमा करें, जब सब जमा हो जाए तो उस वक्त मुझको दरख्त पर सोली देना और मेरे तुर्किश से तीरे लेकर ये पढ़कर मेरे सीने पर मारना, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम पर जो इस लड़के का परवरदिगार है, तब मैं मर सकता हूँ। बादशाह ने लड़के के कौल पर अमल किया और जब तमाम शहर जमा हो गया तो लड़के को सूली पर लटका कर और लड़के की बताई हुई इबारत पढ़कर उसे तीर मारा और लड़का तीर खाकर जा बहक हो गया। लोगों ने यह देखा तो सब ने एकदम बावाज बुलंद नारा लगाया, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम लड़के के परवरदिगार पर ईमान ले आए, और सब मुसलमान हो गए। दरबारी कहने लगे, बादशाह जिस बात का आपको खौफ था आखिर वही होकर रही और ये तमाम रियाया मुसलमान हो गई। बादशाह ने देखकर हुक्म दिया कि शहर के हर एक महल्ला और गली कोचे में खंदकें खोदो और उनमें खूब आग दहकाओ और फिर हर महल्ला के लोगों को जमा करो और उनसे कहो कि वो इस दीन से बाज आ जाएं, जो बाज आ जाए उसको छोड़ दो और जो उनका करता जाए उसको दहकती आग में डालते जाओ। लोग चौक दर चौक जमा होते थे और दीन हक से बाज न रहने का इकरार करते और दहकती आग में बखुशी डाले जाते थे। और इस होलनाक नजारे को बादशाह और उसके मुसाहिबीन मसरत के साथ देख रहे थे कि एक औरत लाई गई जिसकी गोद में शीरखार बच्चा था। औरत बच्चे की मोहब्बत में झिझकी। फौरन बच्चा ने कहा, माँ सब्र से काम ले और बेखौफ खंदक में कूद जा, इसलिए कि बिला छुबा तो हक पर है और ये जालिम बातिल पर है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: और कुछ नहीं देखता। तब एकाएक गैरत हक को हरकत होती है और वो उसको इस तरह बुलंदी से गिरा देती है कि पस्ती व जिल्लत के तारीख के गार के अलावा उसके लिए और कोई जगह बाकी नहीं रहती और वो ऐसी सख्त गिरफ्त में आ जाता है कि फिर कायनात की कोई ताकत उसके काम नहीं आती। मजीद इस किस्से में एक सबक ये भी है कि इंसान इंसानियत के इम्तियाजात और खसाइस से बचता है, यानी इंसान इसी वजह से कि उसमें कुछ अलग थलग कोई बात है, अगर वो बात ही उसमें नहीं रही तो वो हैवान से भी बदतर है। और इंसानियत का तकाजा यह है कि जब इंसान को हमा किस्म की दौलत हिशमत और सामान्य आयश मुयसर हो और सत्वत और ताकत भी बेअंदाजा नसीब हो तो उस वक्त भी खुदा और खौफ खुदा से हरगिज बेगाना ना हो। मजीद इंसान जब खुदा ताला पर यकीन महकम कर लेता है और हलावत ईमानी से फैजियाब हो जाता है तो फिर कायनात की बड़ी से बड़ी ताकत और आलम का होलनाक जुल्म भी उसको हक सदाकत से मुतजलजल नहीं कर सकता और वो कूह इस्तकामत बनकर इसारो कुर्बानी का पैकर साबित होता है। चुनांचा साहबे हुदूद का वाकया उसकी जिंदा शहादत है। तो सामिन किराम आज के प्रोग्राम में हमने अस्हाबुल उखदूद खंदक खोदने वालों का वाकया सुना। ये कहानी ये वाकया हमें ये सबक देता है कि ईमान की राह कुर्बानी मांगती है लेकिन उसका अजर जन्नत और अल्लाह की रजा है। आज का हमारा ये हलका अपने अख्ताम को पहुंचा है। अगले एपिसोड में हम एक नया वाकया लेकर हाजिर खिदमत होंगे, सुनेंगे लुकमान और उनके बेटे की नसीहतें। और अब आप मेजबान तलहा शफीज़ुज़्ज़मान और नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आइंदा हलके में। मा सलामा।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारते दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
4: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियत खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: Midnight Melodies only on FM 107 Dil Se DC।

अरे मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत से काम हैं जो इससे लेता हूँ। फरमाया, फेंक दे इसको मूसा। उसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप थी जो दौड़ रहा था। फरमाया, पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी। और जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब तू फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे से एक वजीर मुकर्रर कर दे, हारून जो मेरा भाई है, उसके जरिए से मेरा हाथ मजबूत कर और उसको मेरे काम में शरीक कर दे ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। फरमाया, दिया गया जो तूने मांगा है मूसा, हमने फिर एक मर्तबा तुझ पर एहसान किया। याद कर वो वक्त जबकि हमने तेरी माँ को इशारा किया, ऐसा इशारा जो वही के जरिए से ही किया जाता है, कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे, दरिया उसे साहिल पर फेंक देगा और उसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी और ऐसा इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए। याद कर जब तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है, मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो। और यह भी याद कर कि तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, हमने तुझे उस फंदे से निकाला और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा और तू मदियन के लोगों में कई साल ठहरा रहा, फिर अब ठीक अपने वक्त पर तू आ गया है। ऐ मूसा, मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है, जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ और देखो तुम मेरी याद में तकसीर न करना। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास कि वो सरकश हो गया है, उससे नरमी के साथ बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए।